किरण नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लंच बॉक्स शो में। मेरा नाम केतन है और आप बने रहिए अभी से लेके 3 बजे तक। जी हाँ, बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत सारी गपशप होने वाले हैं। सो यस, आप बस बने रहिए, कनेक्टेड रहिए। अभी शुरुआत करेंगे ऐसे गाने से, तू नहीं, ये तो कुछ और है, तू जानता नहीं। पेरी जी, सीजर और आरिफ खान के योगदान से ये गाना बना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। आप बस सुनते रहिए और आपके लिए मैं लेके आऊंगा होमसिक रेमेडीज के लिए वो सारे टेक्स्ट जो आप मुझे अभी भेजेंगे। तो फोन उठाइए और होमसिक रेमेडीज के लिए मुझे टेक्स्ट भेज दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। बचाओ क्या?

होमसिक रेमेडीज में आपका स्वागत है इस सेगमेंट में। वेल यस, सबसे पहला मैसेज है राकेश। आई मिस हियरिंग पीपल स्पीक हिंदी एवरीवेयर। द मोमेंट आई हियर समवन स्पीकिंग इट इन अ सुपरमार्केट आई ऑटोमेटिकली स्माइल। रियली? कहाँ पे हो भाई? अच्छा, मतलब जहाँ रहते होंगे शायद वहाँ पे ऐसा होता होगा, बाकी यहाँ पे तो है यार। लाइक यू नो, व्हेन आई गो एनीवेयर, वहाँ पे तो हिंदी में देखने वाले बहुत मिलते हैं। जैसे मैं साउथ में रहता हूँ तो वहाँ पे ऑफ कोर्स सुपरमार्केट काफ़ी हैं, जो जहाँ पे इंडियंस क्या एक्चुअली फीजी इंडियंस हो गए या फिर तरह तरह के लोग आते हैं वहाँ पे शॉपिंग करने, विच इज़ ग्रेट यार। वैसे मैं यहाँ पे जानना भी चाहूँगा कि लाइक यू नो ऑफ कोर्स अभी तो खैर मार्केट हर जगह, बट हाउ डू यू फील, लाइक फीजी इंडियन से पूछना चाहूँगा कि उन्हें कैसा लगता है व्हेन दे सी दैट, क्योंकि लास्ट टाइम हो सकता है शायद आप इंपोर्ट करवाते हो कुछ सामान, आप एक्सपोर्ट करवाते होगे टू इंडिया, बट यहाँ पे इन शॉप्स की वजह से आपको हर एक चीज़, स्पेशली टू अस एज वेल, व्हेन हमें बीइंग इन इंडिया हमें ये चाइनीज़ मसाला और ये सब नहीं मिलता, तो यहाँ पे हर चीज़ इजीली मिल जाती है। तो क्या थॉट्स आपके, आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे। वैसे अनिल कहते हैं टाकनिन से, आई मिस संडे आफ्टरनून्स व्हेन एब्सोल्युटली नथिंग वाज प्लान्ड, फैमिली वुड जस्ट सिट अराउंड एंड समहाउ द होल डे डिसअपीयर्ड। ये पहले होता था, आजकल वो कहाँ मिलता है। लाइक नो वी वीकेंड पे तो ऐसा लगता है कि भाई घर बैठे रहो, मूवी देखो, चिल करो, चाय पियो, बाहर जाओ घूमने, बस यही प्लान होता था। और अभी तो ये लगता है कि भाई छुट्टी आती है, छुट्टी भी हो आती किसके लिए, हमारे पर्सनल काम के लिए, यानी कि काम अब रुकता नहीं है। कुमार, फीजी कुमार, इन्होंने फीजी कुमार लिखा है ओटारा से, आई मिस द सेंस ऑफ कम्युनिटी इन फीजी, इफ समबडी नीड हेल्प 10 पीपल वुड शो अप बिफोर दे इवन आस्क्ड। राइट, ये तो यार काफी डीप मैसेज है ये। मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा यार, लाइक यू नो व्हेन आई टेल एनीथिंग टू देम दे ऑलवेज, लाइक नॉट जस्ट वन और टू बट मेनी पीपल कम्स अप एंड दे हेल्प मी लाइक व्हाटएवर वे दे कैन। नीलम कहती है, आई मिस हियरिंग माई पेरेंट्स डिस्कसिंग व्हाट टू कुक फॉर डिनर, आई नेवर थॉट आई वुड मिस दैट कन्वर्सेशन सो मच एंड नाउ वी आर डूइंग द सेम थिंग। तो यस ऑफ कोर्स, अब लगता है कि हमारे बच्चे ऐसे कर रहे होंगे दैट दे विल बी थिंकिंग, ओह मेरे मॉम डैड वो टॉकिंग अबाउट क्या बनाना है। बट मेरे घर पे ऐसा नहीं होता था, मतलब मेरे घर पे तो मम्मी खुद ही बना लेती और पापा खा लेते थे, लाइक विदाउट एनी मच कन्वर्सेशन, एज इन लाइक ये डिस्कशन नहीं होता था, भाई जो मन करे बना ले, ऐसा होता था। आखिरी मैसेज संजय का, माई होम सिक रेमेडी इज वॉचिंग ओल्ड फैमिली वीडियोज वेयर एवरीवन इज टॉकिंग, किधर क्या, एवरीवन इज टॉकिंग ओवर ईच अदर, इट्स क्योटिक बट कम्फर्टिंग, दैट्स सो कूल यार। वेल थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेज के लिए, आप बस बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। मैं लेके आऊंगा और भी ऑफिस वाले शाउट आउट की बातें जो आप मुझे भेजेंगे अभी 5599 पे। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हम कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drugdriving.
3: Sounds like you've got a bloody busy week. Well, here's one more thing to add to your calendar. Don't worry, it's all good. It's an invite to a bloody important meeting. This National Blood Donor Week, get your blood group together and lock in a time to give blood or plasma. Each one of you could save lots of lives. Go to nzblood.co.nz to see if you can donate and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
4: Rebel Sport has winter sorted. Layer up with deals on puffers, jackets, sweats and fleece, built to keep you warm when the temperature drops. Plus, global football fever is kicking off. Grab your fan gear and get game day ready. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
8: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways travel deals are on now. Fly to Fiji from just $329 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations, like Canada from just $999 one way, Japan from $685, Hong Kong from $739, Samoa from $305, or Vanuatu from $365 one way. Book now at fijiairways.com or call your local travel agent. Conditions apply.
9: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
10: Lunchbox with Ketan.
11: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
10: Hum. Office shout out.
12: ऑफिस शॉट आउट के सेगमेंट में आपका स्वागत है. सबसे पहला मैसेज है, आई बॉट अ सैलेड फॉर लंच एंड देन इमीडिएटली बॉट अ ब्राउनी एज वेल. सारा ने ये मैसेज भेजा है न्यू मार्केट से. थैंक यू सारा फॉर योर मैसेज. लवली, होप यू एंजॉय योर ब्राउनी आफ्टर हैविंग योर सैलेड लंच. लिसनिंग फ्रॉम द वेयर हाउस, समवन ब्रॉट होम मेड मैंगो पिकल एंड नाउ एवरी वन वॉन्ट्स द रेसिपी. वाओ, दैट्स कूल यार, दैट्स कूल. हाँ, मे बी आप बताना. उसके बाद, टुडेज लंच इज लेफ्ट ओवर फ्रॉम माई डॉटर्स बर्थडे पार्टी, केक काउंट्स एज लंच राइट? आई डोंट थिंक सो, बट कुड बी अगर आपकी एपेटाइट कम है तो. बट एंजॉय द केक. यस, डब्ल्यू एफ एच यानी कि वर्क फ्रॉम होम टुडे एंड माई मम कीप्स आस्किंग एवरी आर इफ आई हैव ईटन येट. रवि भाई कहते हैं ये मैसेज. And that's all. Thank you. Thank you so much for your messages. आप बस बने रहिए, मैं लेके आऊँगा लेटेस्ट. आज की क्या ताज़ा हिस्ट्री है न्यूजीलैंड की, उस पर चर्चा करेंगे.
9: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

Well, आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड रेलवे हिस्ट्री का एक बड़ा ही ट्रेजिक चैप्टर है, क्रॉमवेल डनेडिन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेजेडी, जो एक्चुअली उस ब्रॉडर रेलवे एरा का पार्ट है जब ओटैगो सेंट्रल रेलवे पर पैसेंजर एक्सप्रेस सर्विस चलती थी। इस रूट पर चलने वाली क्रॉमवेल डनेडिन एक्सप्रेस ट्रेन 1930 से 1940s में डेली सर्विस देती थी, जो रिमोट सेंट्रल ओटैगो को डनेडिन से कनेक्ट करती थी। लेकिन इसी रेलवे नेटवर्क पर 1943 में एक बहुत ही बड़ा और डेडली एक्सीडेंट हुआ, जो न्यूजीलैंड की वर्स्ट रेल डिजास्टर्स में काउंट किया जाता है। हाइड रेलवे डिजास्टर इंसिडेंट क्या था? वैसे 4 जून 1943 यानी कि 1943 को क्रॉमवेल से डनेडिन जा रही एक्सप्रेस हैंड ट्रेन हाइड के पास एक शार्प कर्व पर डरेल हो गई और ट्रेन रिपोर्टेडली बहुत हाई स्पीड पर थी और बेंड को सेफली क्रॉस नहीं कर पाई। और इस एक्सीडेंट में 21 लोगों ने अपनी जान खोई और कुछ लोग इंजर्ड भी हुए। इट वॉज एट दैट टाइम दैट न्यूजीलैंड को वर्स्ट रेलवे एक्सीडेंट में इंक्लूड करना पड़ा। एंड इन्वेस्टिगेशन भी हुई और जिससे कुछ पता चला है, जैसे इंक्वायरी में कि ट्रेन अनसेफ स्पीड पर चल रही थी और ड्राइवर की जजमेंट सिवियर इम्पेयर्ड थी ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। इस वजह से डिरेलमेंट हुआ और ड्राइवर को लेटर मैंस लाफ्टर के लिए जेल भी भेजा गया। इस स्ट्रेटजी के से न्यूजीलैंड रेल सेफ्टी रूल्स को और स्ट्रिक्ट बनाने में रोल प्ले किया और लेटर डिकेड्स में रेलवे ऑपरेशन को मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम की तरफ पुश भी किया गया। जी हाँ, तो ये थी आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूज।

वेल जस्ट टू गिव एन अपडेट, आप फट से रोवा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके जरिए आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कि म्यूजिक स्टेशन मिल जाता है, पॉडकास्ट मिल जाता है, इसकी बात हम थोड़ी देर में आगे करेंगे। कम्युनिटी न्यूज, इसके बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे थोड़ी देर में। बट यस, रोवा के जरिए आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन भी आते रहते हैं। चर्डल हुआ तो अभी थोड़े दिन पहले, उसके विनर्स काफी लोग रहे हैं, काफी लोगों ने जीता भी है, और अभी आगे भी और कॉम्पिटिशन आएंगे। बट आपका काम यह है कि रोवा डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू आप डेफिनेटली बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। म्यूजिक स्टेशन की अगर बात करें तो जैसे हम रिवाइंड जो कि 60s 70s नंबर वन रोवा का म्यूजिक स्टेशन है, नंबर टू म्यूजिक स्टेशन रोवा पे 80s जुक्स बॉक्स है, फिर फीजी भजन और फीजी कीर्तन जो कि दुनिया के पहले 24/7 चलने वाले कीर्तन, फीजी कीर्तन और फीजी भजन है, राहत फतेह अली खान, ये भी इनकी कवालीज और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसके साथ ऑफकोर्स चढ़दी कला जो कि पंजाबी गाने चलाते हैं बहुत से, एक से बढ़कर एक, ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं। लंच बॉक्स विद केतन, इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं। इसके पीछे हम

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी।
1: है जवानी तो इश्क होना है। In theaters near you
2: on the 5th of June.
3: Distribution partner Forum Films. Rated M.
4: Wow.
5: Lunchbox with Ketan.
6: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
7: हम चटनी शॉट्स।
8: वेल अभी की जो फटफट चटनी शॉट्स की जो न्यूज़ है वो ये है कि ओटैगो में एक स्केलेटन रिकवरी केस सामने सॉल्व हो गया है, जहां फोरेंसिक मैचिंग से कंफर्म हुआ है कि ये एक ईयर से मिसिंग चल रही थी आदमी की रिमेंस है और ये डिस्कवरी फैमिली क्लोजर को लेकर आई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन गोइंग है। एनर्जी सेक्टर्स में कंसर्न बढ़ रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड के डीजल स्टॉक लेवल गिर कर रिसेंट मंथ्स में लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है जब से यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ऑफिशियल सप्लाई चेन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। लेबर इश्यूज में एक कंपनी पर सीरियस एक्सप्लॉयटेशन चार्जेस लगे हैं, जहां एक माइग्रेंट वर्कर से एलिजिबली जॉब दिलाने के नाम पर $45,000 चार्ज किया। अथॉरिटीज इसे ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन केस के तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट अपडेट, इसराइल ने लेबनन में एयर स्ट्राइक्स किए हैं जिसमें 11 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है और डिस्पाइट अर्लियर क्लेम्स दैट फाइटिंग वर्ल्ड रिड्यूस, टेंशंस रीजन में अब भी हाई है। टेक न्यूज में एनवीडिया ने एआई पीसीज के लिए एक पावरफुल न्यू सुपर चिप अनाउंस की है जो विंडोज लैपटॉप्स को नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दे सकती है। स्पोर्ट्स की दुनिया में मोआना पैसिफिका के लिए एक पोटेंशियल न्यू सेवियर इन्वेस्टमेंट पार्टनर इमर्ज हुआ है जो टीम के फ्यूचर को स्टेबलाइज कर सकता है। और साथ ही पॉलिटिक्स लीगल में ट्रीटी क्लोजेस को लेकर गवर्नमेंट प्रपोजल्स अब वाइटांगी ट्रिब्यूनल हियरिंग के सेंटर में है, जहां डिबेट्स और स्क्रूटिनी दोनों इंटेंस हो रही है।

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback.
2: Well, ये काफी इंटरेस्टिंग और फनी भी है एंड मजा तो आएगा सुन के. आपके जवाब बस भेजिए आप मुझे 5599 पे. What is the funniest auto correct fail you have ever sent? ऐसा कौन सा शब्द है जो आप लिख तो कुछ और रहे थे लेकिन ऑटो करेक्ट की वजह से हो कुछ और गया और आपने भेज दिया. सो यस 5599 नंबर जहां पे आप मुझे भेजिए और बताइए जल्दी से. मजा आएगा.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हालचाल, 21 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 16 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 50% चांस है बारिश के आज, 1.1 mm हो सकती है, क्लाउडी एट नाइट, मॉडरेट नॉर्दर्ली विंड्स, आज का सनसेट होगा 5:13 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेल, मेरा नाम केतन है, आप मुझे 12 बजे सुन रहे हैं, एंड अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड कीप लिसनिंग टू मी अंटिल 3। बहुत सारी बातें होने वाली है, बट यस, अभी के लिए आप बस ऐसे ही आप एंजॉय करते रहिए। सबसे पहले गाना है कस्तूरी, वो चलाएंगे अरिजीत सिंह की आवाज में, वो सुनिए। मैं लेके आऊंगा लेटेस्ट खबर बहुत ही जल्द, लेकिन अभी यस, इस आर में आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में।
0: बचाओ क्या,

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox ABBG. Udit Narayan ki awaaz mein aapne ye gaana suna tha, bahut hi badhiya tha. But yes, is hour mein aapko lunch time rent line ki baatein hone wali hai. Saath mein aapse baat hogi ki bhai Bollywood se related aur saath mein of course latest khabar bhi main is hour mein batane wala hu. To aapko bas enjoy karte rehna hai, sunte rehna hai aaj ka mera show until 3. Uske baad Sandy judengi for the coffee break and then drive show mein Rusbe unka saath denge. But tab tak ke liye मैं फटाफट से न्यूज लेके आता हूँ ढूंढ के.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे
3: हम.
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
5: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज कर रहा
6: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
5: मेरे को समझ में नहीं. एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है. एक दिन और इन्होंने
6: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
3: है.
1: 6 to 10 AM.
7: Save karo Mitre 10 Mega Westgate or Henderson mein with 25% off Pink Stuff Cleaning or Novu Wire Wardrobes or 50% off Selected Sistema. Plus spend $20, enter online and go in the draw to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
8: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
9: Showerdome.co.nz.
10: Okay, everyone, I'm calling an important meeting for next Tuesday afternoon.
11: Sounds important.
10: It's bloody important. It's a bloody important meeting.
11: A bloody important meeting?
10: Bloody important. We're giving blood and plasma as a blood group.
11: Oh, I've always wanted to be in a group.
12: This National Blood Donor Week, get your blood group together to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz now to see if you can donate, book, and then send that bloody important meeting invite. Give blood. Give plasma. Save lives.
13: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
14: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
13: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
14: Available at selected branches. T's and C's apply.
15: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Cool. Getting to work? Easy. Coffee with friends? Just go. The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
16: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?
1: Lunchbox with Ketan.
17: मुझे पसंद है लड़का.
1: हम. Lunchtime Rent Line.
0: Well, Lunchtime Rent Line के सेगमेंट में आपका स्वागत है. बात करते हैं फटाफट से. ये जो मैसेज आया है Deepa from Takanini, Fiji. Indian aunties can spot a fake smile from 200 meters. अबे यार ये मेरे को लगता है ये टैलेंट तो मेरे में भी है यार. मतलब मैं भी कर सकता हूँ. मेरे को 200 मीटर दूर जाने की जरूरत नहीं है. मैं पास से भी आके कर सकता हूँ. आई मीन जैसे हम बात करते हैं मुझे पता पड़ता है सामने वाले को इंटरेस्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, ये भी मुझे पता पड़ जाता है. आपको पता चलता है? बताइए मुझे 5599 पे. Ketan bhai, Kunal from Avondale. People who says quick call always means 45 minutes minimum. We have one person over here in Radio Hum. Ji haan, kaun hai wo? Guess karo. 5599 pe mujhe bataiye kaun sa hai. Agla message. Hi Ketan, Sneha from Newland. Indian parents thinks resting means you are sick and need treatment immediately. Thoda to lagta hai yaar, thoda to lagta hai. और एक्चुअली काफी हद तक वो होता भी है, काफी मैं ऐसे जनों को जानता हूँ जो यूजली सोते नहीं दिन में, लेकिन इफ दे आर टेकिंग अ नैप दैट मींस दे आर नॉट परफेक्टली फाइन, दैट्स व्हाट दे से, जो काफी हद तक सही भी होता है। जी हाँ, अर्जुन कहते हैं एल्बनी से, एवरी जिम इन जनवरी इज फुल, बाय मार्च इट्स जस्ट एम्प्टी ड्रीम्स एंड वाटर बॉटल्स। सामान लेके आ जाते खरीद के, बड़े बड़े ये पहनूंगा वो पहनूंगा, फिर निकलता है नहीं बैग से। नेहा फ्रॉम सैंडिंगम, उबर ईट्स डिलीवरी फी इज नाउ बेसिकली अ सेकंड मील। वाओ, दैट इज ग्रेट। थैंक यू फॉर ऑल द मैसेजेस। आप बस बने रहिए, सुनते रहिए, बॉलीवुड की भी खबर लेके आएंगे थोड़ी देर में।
1: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: चलिए बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो मैंने पूछा था और उसका जवाब आ चुका है फाइनली काफी लोगों का। तो यस, माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज द फनीएस्ट ऑटो करेक्ट फेल यू हैव एवर सेंट। उसका पहला जवाब तो ये रहा कि रवि भाई कहते हैं आई मेंट टू टेक्स्ट आई एम ऑन माय वे ऑटो करेक्टेड सेंट आई एम अनियन सूप। दैट्स फनी। प्रिया कहती हैं आई ट्राई टू से सी यू सून but it became see a spoon and now my friend still call me spoon। ये भी funny है, ये भी सही है। देव भाई कहते हैं flat bits I typed I will call you later and changed to I will cry you later honestly felt accurate that day। ये भी सही है आपका, चलो ठीक है, ऑटो करेक्ट से सही तो हो गया। अंजलि कहती हैं sent good morning but it became good morning to my boss। oh must be बोल रहे हैं भाई अंग्रेजी नहीं आती, स्पेलिंग नहीं आती। करण कहते हैं माउंट रॉस्कल से रोट आई एम एट वर्क बट ऑटो करेक्ट मेड इट आई एम अ शार्क। ओके, नाइस नाइस। नेहा कहती हैं ट्राई टू से थैंक यू एंड इट बिकेम टैंक यू। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है एंड नाउ आई एम अ व्हीकल अपेरेंटली थैंक यू। सही है। विक्रम भाई कहते हैं टेक्स्टेड आई एम बिजी बट इट सेंट आई एम बिस्किट। अरे वाह क्या बात है। श्रेया कहती है रोट आई एम कमिंग नाउ बट इट बिकेम आई एम कमिंग नाउ। करी मोड एक्टिवेटेड। थैंक यू फॉर ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग क्रिएटिव मैसेजेस जो आपने मुझे भेजे हैं। सुनते रहिए, अभी लेटेस्ट खबर लेके आता हूँ थोड़ी देर में।

0: अभी की लेटेस्ट खबर ये है कि तोरंगा के 28 ईयर्स ओल्ड हेली श्रिम्पटन को नवंबर 2023 में एलिजली किडनैप करके एक रिमोट प्रॉपर्टी ले गए और क्राउन के मुताबिक उन्हें एग्जीक्यूशन स्टाइल गोली मारकर मर्डर कर दिया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद एक 23 ईयर्स ओल्ड आदमी पर मर्डर, किडनैपिंग और रिलेटेड चार्जेस लगाए गए हैं। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि ये केस पैसे के डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ हो सकता है और हाल ही की बॉडी बाद में पोरी पोरी रोड पर मिली, जिसके बाद होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुआ। केस अब कोर्ट में चल रहा है और अभी तक वैसे तो कुछ अपडेट आया नहीं है, बट जैसे ही आएगा डेफिनेटली वी विल लेट यू नो।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: हाँ।

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
2: Oh no, we'll be late.
3: We'll be all right. I'll call the AA.
4: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
0: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
7: At Big Save, we work hard every day to keep our whiteware prices low, so you can always get New Zealand's best value, washing machines, dryers, fridges and dishwashers. And today we have big whiteware deals. Get a Robinhood 6.5kg washing machine only $3.98, or a Samsung 310-litre fridge only $8.99. Need it today? No worries. We have heaps of stock. Take it home today. Only at Big Save.
8: Lunchbox with Ketan.
9: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
8: इसके पीछे
9: हम
8: लंच के मंच पे
10: बॉलीवुड से खबर लेके आया हूँ। बॉलीवुड फैंस के लिए एक काफी एक्साइटिंग न्यूज है। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 की शूटिंग ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल रैपअप पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पूरे कास्ट और क्रू को शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि दृश्यम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उनकी टीम की दुनिया रही है। वैसे दृश्यम फ्रेंचाइजी ने अपने ग्रिपिंग सस्पेंस स्टोरी और विजय सालगांवकर के इंटेलिजेंट कैरेक्टर के जरिए ऑडियंस का दिल जीता है, और अब तीसरे पार्ट के साथ फैंस को उम्मीद है कि कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट और सस्पेंस देखने को मिलेंगे। शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म अब पोस्ट प्रोडक्शन फेज पे एंटर कर चुकी है, जहां एडिटिंग और फाइनल टचेस का काम होगा। वेल ये सब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि विजय सालगांवकर एक बार फिर केस कैसे मुश्किल हालातों से निकलते हैं और कहानी किस मोड पर खत्म होती है। दृश्यम 3 को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। एंड आई एम पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी दिस फिल्म, बिकॉज मैंने पहले और दूसरे पार्ट दोनों देखे हैं, अमेजिंग लगे मुझे। एंड लेट्स सी कैसे, मतलब मैं अनपढ़ हुआ एक तरह से, वो कैसे अनपढ़ बंदा इतना स्मार्ट हो सकता है, और वो एक्चुअली सीख भी है। दैट किताबी चीज़ें ही आपको पढ़ाए लिखाए ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस भी बताता है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लिटरेसी, दैट्स व्हाट आई फील। लिटरेसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू बी एजुकेटेड अगेन। यस,
8: दिस

बताइए मुझे 5599 पे इसका टेक्स्ट भेज के वुड लव टू हियर योर फीडबैक ऑन दिस या योर रिस्पॉन्स ऑन दिस 5599 इज द नंबर।

0: सतगाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। कैसे जा रहा है आपका दिन? आई एम प्रीटी श्योर बहुत ही बढ़िया जा रहा होगा। अभी शुरुआत करेंगे बहुत ही बढ़िया गाने से, उस गाने को एंजॉय करो। मैं फटाफट से एक चटपटी खबर लेके आता हूँ, उसे थोड़ा सर्च करता हूँ, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू वेरी वेरी सो शॉर्टली। आप बस बने रहिए। वैसे कॉफी मन कर रहा है अभी मेरा हाल फिलहाल, तो बस आप बने रहिए, सुनते रहिए आज के लंच बॉक्स में। उसके बाद सैंडी जुड़ेगी फॉर द कॉफी ब्रेक, और कॉफी ब्रेक के बाद रुजगुन का साथ देंगे इंद्र ड्राइव शो।
1: बचाओ क्या,

0: वेल, अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि ऑकलैंड के रॉयल ओक एरिया में एक बार फिर ऐसी ही ग्राफिटी मिली है जो रेशियल वायलेंस को बढ़ावा देती है, जिससे लोकल कम्युनिटीज में चिंता बढ़ती नजर आ रही है। ये मैसेज एक पब्लिक टॉयलेट में पाया गया है और इसे पहले पापाटोटे के एक स्कूल के बाहर भी इसी तरह का हेट फिल्ड ग्राफिटी दिखा गया था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और इसे हेट मोटिवेटेड इंसिडेंट के रूप में देखा जा रहा है। वैसे कम्युनिटी लीडर्स और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि न्यूजीलैंड जैसे डाइवर्स और इंक्लूसिव देश में रेसिज्म और किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने वाले बातों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लोगों से अपील भी की गई है कि अगर उनके पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी हो तो पुलिस से आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि ऑनलाइन और पब्लिक स्पेसेस में हेट स्पीच और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए और मजबूत कदम उठाने जाने की जरूरत है। अथॉरिटीज का कहना है कि कम्युनिटी की सेफ्टी और हार्मोनी उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है।
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना,
1: और गानों में

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip your replay.
3: आपके लिए बहुत सारे पॉडकास्ट लेके आते हैं, प्लेलिस्ट लेके आते हैं। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि आप रोवर डाउनलोड करेंगे तो उसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे अभी एक पॉडकास्ट भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, WWE सुपरस्टार, वो यहाँ आए थे और उन्होंने अनफिल्टर्ड ड्राइव सैंडी एंड रोजबे के साथ इंटरव्यू किया था और बहुत ही बढ़िया बातें की हैं। इतना एंटरटेनिंग था, इतना मजा था कि खुद एडिटर को, यानी कि मैं जिसने एडिट किया है वीडियो, उसे भी एंटरटेनिंग लगा। यूजली मैं करता हूँ बट सारी अलग चीज़ होती है, बट ये वो चीज़ें हैं जो नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड है। यानी कि हम बचपन से देखते आए हैं कि WWE मैचेस होते रहते हैं, खुद अपन ने भी ट्राई किया अपने कजिन्स के ऊपर, दोस्तों के ऊपर। तो यस, रेसलिंग सही है, नी है, ये क्या है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। मैं बात कर रहा हूँ शैंकी सिंह की, WWE सुपरस्टार, जो खुद एक 7 फुट टॉल है। जी हाँ, उन्होंने बॉलीवुड के बारे में बात की है बिकॉज वो भी एक फिल्म में रोल कर चुके हैं सलमान खान की, जो कि है भारत मूवी में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया है। आपको दिख जाएंगे, वो इकलौते लंबे आदमी हैं और उन्हीं के साथ इंटरव्यू भी हुआ है यहाँ पे। सो इट इज़ ग्रेट ग्रेट पॉडकास्ट जो हमने रिकॉर्ड किया है। बहुत सारी बातें की है बॉलीवुड से लेके WWE तक, अंडरटेकर, देन जॉन सिना एंड एवरीथिंग ही हैज स्पोकन अबाउट। तो आपको ये पॉडकास्ट अगर सुनना है तो हमें ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए। सबसे बड़ी बात पता है क्या, WWE ये सचमुच में रियलिटी है या फिर फेक है, ये बातें भी उन्होंने बताई है। तो आप बस बने रहिए और सुनते रहिए।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेल, एक ऐसा इंसिडेंट होने जा रहा है जहां पे एक इंडियन इंक थिएटर कंपनी आप सभी के लिए लेके आए हैं बलून डॉग, एक ऐसा प्ले जो आप बहुत ही बढ़िया एंजॉय करेंगे. रिटन बाय जैकब राजन एंड जस्टिन लेविस, डायरेक्टेड बाय जस्टिन लेविस एज वेल. अवार्ड विनिंग परफॉर्मर जैकब राजन फिर से आ रहे हैं स्टेज पर, वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ बलून डॉग, अ डीपली मूविंग एंड टाइमली न्यू प्रोडक्शन इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर्स बिलव्ड स्टोरी काबुलीवाला. जी हाँ, ये इस पे होने 21st सेंचुरी के हिसाब से इन्होंने काफी अच्छे तरीके से बनाया है. आपको आना चाहिए बिकॉज काफी ब्लेंड्स ह्यूमर, हार्ट्स, लाइव ओरिजिनल म्यूजिक, डांस एंड प्योर थिएट्रिकल मैजिक, ये सब आपको देखने को मिल सकता है. इनके पुराने जो शोज होते हैं वो भी काफी फुल सोल्ड आउट हो गए थे, तो आप भी टाइम से टिकट ले लीजिए iticket.co.nz पे जाके. एंड ऑफकोर्स ये क्यू थिएटर इन ऑकलैंड हो रहा है, ये 3rd से लेकर 20th जून यानी कि कल से शुरू हो चुका है, आज भी चल रहा है, तो आप क्यू थिएटर में पहुंच जाइए. लेकिन उससे पहले टिकट लेना ना भूलिए iticket.co.nz पे. आप अभी हाल फिलहाल मुझे BD बोले तो बलून डॉग का इनिशियल है उसे लिख के मुझे 5599 पे भेज दीजिए, ताकि अगर आप ड्रॉ में जीतते हैं तो आप ड्रॉ में शामिल होने के बाद अगर जीतते हैं तो यू कुड विन 1 double pass फ्रॉम देयर टू अटेंड दिस शो. बट iticket.co.nz पे जाइए और इंडियन इंक थिएटर कंपनी प्रेजेंट्स बलून डॉग ये आप देखिए, बहुत ही बढ़िया.

0: Well, अगर आप अपने ग्रोसरी बिल को कम करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि पास्ता सॉस को रेडी मेड जार्स खरीदने बंद करके काफी पैसे बचा सकते हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड की फूड राइटर एलिस टेलर के मुताबिक ड्राइड पास्ता एक सस्ता और भरपेट मील ऑप्शन होता है और घर पर सिंपल सॉस बनाना मार्केट के जार खरीदने से काफी इकोनॉमिकल पड़ता है। वेल, आर्टिकल में कुछ इजी कुकिंग टिप्स भी शेयर की गई है, जैसे पास्ता वाटर में नमक डालना फ्लेवर और टेक्सचर दोनों को इम्प्रूव करता है, जबकि ऑयल डालने से सॉस पास्ता पर अच्छी तरह चिपक नहीं पाता। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पास्ता का थोड़ा स्टार्ची वाटर बचाकर सॉस में मिलाने से रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी टेक्सचर मिल सकता है बिना एक्स्ट्रा क्रीम के। क्या बात है। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ते प्रेशर के बीच होममेड मील्स और बेसिक पेंट्री इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल फैमिलीज को अच्छी खासी बचत करने में मदद कर सकता है। वेल यस, मैसेज यहाँ पे सिंपल है, थोड़ी सी कुकिंग स्किल्स और प्लानिंग के साथ आप टेस्टी खाना भी खा सकते हैं और ग्रॉसरी का बिल भी कंट्रोल में रख सकते हैं। सो दिस इज अमेजिंग आर्टिकल, आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए।
1: मुझे पसंद है
2: 80s के रेट्रो गाने।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
4: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.

0: Powers through Mess with Morning Fresh.
1: Please use your imagination for the following ad.
2: If I won Powerball, the first person I'd tell would be and would surprise all our friends by
1: imagine winning $4 million this Saturday. Play in store or online.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: Stretch your budget further at Mitre 10. Clean up with a Bosch 15-litre wet and dry vacuum cleaner, now just $129. And score 20% off Cordtech work lights. T's and C's apply. Grab these great deals and more at Mitre 10.
6: This is a message on preparing for earthquakes from the Natural Hazards Commission.
7: Whoa!
8: Whoa!
7: Whoa!
6: When it comes to earthquakes, a bit of prep can make a big difference. Things like securing tall or heavy furniture or making your risky chimney safer can turn a
7: whoa
6: into a
9: whoa.
6: Don't wait for the whoa. Protect your whānau. Search Quake Safe Your Place to learn more.
10: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
11: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
10: इसके पीछे
12: हम
10: TikTok.
13: Well, such a great news. सबसे पहले तो आपका स्वागत है लंचबॉक्स में और ये न्यूज़ बहुत ही बढ़िया है because ये मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट भी है टेक फील्ड का especially for of course न्यूजीलैंडर्स. मैं फटाफट से एक बार चेक कर लेता हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकंड. मैं अभी दिखा रहा था एकदम से वो रीलोड हो गया. बट यस, दिस इज द ट्विन जो है उन्होंने जीता है. ऑकलैंड में रहते हैं और एक कंपटीशन जीता है एप्पल की दुनिया में. जी हाँ, ऑकलैंड के एक टैलेंटेड टीनेजर की बात कर रहा हूँ जो दुनिया भर में न्यूजीलैंड का नाम रोशन कर रहे हैं. और इस यंग इनोवेटर ने एक यूनिक स्टार गेजिंग ऐप बनाकर एप्पल की दुनिया एप्पल की ग्लोबल कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की है. ये ऐप यूजर्स को रात के आसमान में स्टार्स, प्लैनेट और कॉन्स्टेलेशंस को आसानी से आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं और एस्ट्रोनॉमी को बिगनर्स के लिए भी इंटरेस्टिंग और एक्सेसिबल बनाते हैं. एप्पल को प्रेस्टीजियस स्टूडेंट कंपटीशन में दुनिया भर से हजारों एंट्रीज आई थी, लेकिन ऑकलैंड के इस स्टूडेंट को आइडिया, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को परफेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से स्टैंड आउट रहा. ऐप का जो मकसद था लोगों को स्पेस और साइंटिस्ट के प्रति इंस्पायर करने का, खासकर यंग जनरेशन को जो टेक्नोलॉजी के जरिए लर्निंग को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं. ये अचीवमेंट सिर्फ एक पर्सनल सक्सेस नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के यंग इनोवेटर्स की टैलेंट और पोटेंशियल का भी सबूत है. एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ प्रोजेक्ट आज ग्लोबल लेवल पर पहचान बना चुके हैं और ये दिखाता है कि पैशन और इनोवेशन के साथ कोई भी सपना सच हो सकता है. सो मेनी कंग्रेचुलेशन टू दीज these teenagers, yaar. Amazing job.
10: Dil se it's the

0: Lunchbox with Ketan.
1: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी. हम
0: Throwback.
2: And that's all for today, guys. बहुत ही बढ़िया आज का समय, आज की बातें और आज आपके जो मैसेजेस हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप बस बने रहिए एंड देन वी विल सी यू इन द मॉर्निंग टुमारो. जी हाँ, तो आप बस बने. एक्चुअली मैं कल सुबह आ रहा हूँ 6 बजे, तो उसके बारे में बात होगी. आप कहीं मत जाइएगा. मेक श्योर कि आप ट्यूनिंग करें और मेरा शो सुने, ब्रेकफास्ट शो कल. होपफुली देखते हैं पूजा आती है नहीं आती है, बट आई डेफिनेटली गोइंग टू सी यू इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो में सुबह 6 से 10 के बीच. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू.

0: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: The red hot sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
3: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
4: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
3: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
5: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
6: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code Big Switch. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
7: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
8: MediaWorks complaints. How can I help?
9: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
8: Thank you.
9: It's all I can think about.
8: What does it sound like?
9: Yeah, I'd rather not.
8: Go on, why don't you have a crack?
9: Okay, got a plumbing problem.
8: Oh, I need a bit more than that.
9: They've got your back.
8: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
9: Oh, okay.
10: There's no better plumber to give it a crack.
8: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
9: No, I want a plumber.
11: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
12: Hum. Time check. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good afternoon, I'm KM Adams with the latest at 3. Foreign Minister Winston Peters is seeking an explanation after China banned 4 of our MPs from travelling there for a year. National's Maureen Pugh, Labour's Duncan Webb, ACT's Laura McClure and New Zealand First's David Wilson have been sanctioned after they visited Taiwan in May. Dairy NZ is keeping an eye on global turmoil as fertiliser costs tick up. Its new report predicts that pressure from the Strait of Hormuz will be at the farm gate come spring. Head of Economics Mark Storey with this advice.
14: We recommend that farmers seriously look at some more pessimistic scenarios and that they use their fertiliser selectively and build some flexibility into their summer feed strategies.
13: Part of the Waikato Expressway is blocked northbound after a crash. Two vehicles collided near the Gordonton Road on-ramp just after 2. Drivers are asked to avoid the area and expect significant delays. And the Prime Minister is Australia-bound to strengthen ties with our only formal ally. Economic growth, trade, business and the 2032 Olympics are on the agenda. Christopher Luxon says it's critical to continue working closely in a more volatile and uncertain world. Chiefs wing Leroy Carter is out of Saturday's Super Rugby Pacific qualifying final against the Reds with a hamstring injury. And in terms of fan engagement, the Crusaders won't be using fireworks again in their new home after last weekend's display left reminders of the famous fog ridden Gorillas in the Mist final 20 years ago. In game one of the best of 7 NBA final, the final quarter, the New York Knicks lead the San Antonio Spurs by 6.
12: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari good brands bhi
12: hai. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
0: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का ऑलमोस्ट लाइक 17 डिग्रीज आप फील कर सकते हैं, लेकिन आज को ओवरनाइट 15 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। सनसेट आज का होगा 5:12 पर। कॉफी ब्रेक विद सैंडी। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू चुका है, यू हमिंग अलोंग विद सैंडी। और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है कॉफी ब्रेक में। और 4 बजे यहाँ पे ड्राइव शो शुरू हो जाएगा, मेरा साथ यहाँ पे हो जाएगा रुजबे के साथ। सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है, हाउ इज इट गोइंग सो फार, यहाँ पे आप जरूर शेयर कर सकते हैं। आज 4th June, इट्स क्वाइट अ इम्पॉर्टेंट डे। मेरा आज का जो दिन है ये बहुत ही खास दिन है, स्पेशली हमारे लिए आज यहाँ पे। एनी आइडिया किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ? आज का दिन खास दिन क्यों है? अगर कल का शो आपने सुना था ड्राइव शो, तो आपको आइडिया होगा किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। 5599 पर मैसेज करके आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं।

0: कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं, यू हैविंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ। थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि किस चीज के लिए आज का जो दिन है ये खास है। काफी लोगों ने सही गेस कर लिया, इट इज अवार्ड्स नाइट टुडे गाइस। एंड नॉमिनेशंस में हमारा पॉडकास्ट भी नॉमिनेटेड है अनफिल्टर्ड फॉर द बेस्ट एशियन पॉडकास्ट। एंड हमारा ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़वे इज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एशियन लैंग्वेज शो ऑन रेडियो। सो आज न्यूजीलैंड रेडियो एंड पॉडकास्ट अवार्ड्स है, सो हमें बेस्ट विशेज दीजिएगा। एंड वहाँ पे अगर हम जीतते हैं तो आपके साथ ऑफकोर्स कल एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के साथ यहाँ पे आएंगे। वेल, एक और न्यूज़ है मेरे पास अबाउट दिस प्रोडिजी। आपका मैथ कैसा था, मैथमेटिक्स आपका कैसा था? इस मैथ प्रोडिजी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसने रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया।
1: कॉफी ब्रेक विद सैंडी।
2: उससे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछते, गुस्सा हो जाती है और सब बस कर देते सर।
3: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।

0: कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है आर्यन शुक्ला ने. आर्यन शुक्ला जिसे मेंटल कैलकुलेशन प्रोडिजी बोला जाता है, ही गॉट दिस अचीवमेंट इन दिस ईयर 2026 में. वैसे मल्टीपल गिनीज रिकॉर्ड है फॉर रैपिड मेंटल कैलकुलेशन के लिए. सो ही इज़ फ्रॉम इंडिया. टू टाइम मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप चैम्पियन जीत चुके हैं. ह्यूमन कैलकुलेटर किड इसे बोला जाता है. He actually represented India globally with extraordinary feat and he was among the youngest figure to dominate the competitive calculation. Nasik, Maharashtra se hai Aryan Shukla and inhone 2022 mein bhi ek title jeeta, 2024 mein bhi jeeta. As of 2026, he is holding 6 Guinness World Record. 6 record hai is bachche ke paas. सो सिग्नेचर फीट, ही 16 ईयर ओल्ड बाय द वे, एंड सिग्नेचर फीट क्या है इसका, ही एडेड 55 डिजिट नंबर्स मेंटली इन 25.19 सेकंड्स में. मतलब जितना टाइम हमें उंगलियों में टोटल वो गिनने में हो जाता है, उसने रिजल्ट ही बोल के वहाँ पे बोल दिया. सो शुक्ला बिगेन हिज प्रैक्टिस मेंटल मैथ एट एज ऑफ 6, जहाँ पे ही यूज टू कैलकुलेट द बेसिक अरिथमेटिक. देन एडवांस कैलकुलेशन में इंटरेस्ट जागा. देन पेरेंट्स को समझ में आया कि यार ये बच्चा मैथ में बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा और इनक्रेज करना चाहिए, और इनक्रेज किया. देन बाय 12 ही वॉज रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली फॉर हिज स्पीड एंड एक्यूरेसी एज वेल. वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अचीवमेंट्स इस बच्चे ने बाद में हासिल की एंड देन इवेंचुअली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम शामिल किया. शुक्ला वैसे आर्यन शुक्ला ही डिस्क्राइब मैथमेटिक्स एज अ प्रोसेस नॉट टू बी फियर्ड. जितना डरोगे उतना आप उसमें हगोगे बेसिकली. सो एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आपको डरना नहीं चाहिए. सिर्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे एक्चुअली में काम करता है एंड कंसंट्रेशन. राइटली सेड एक्चुअली. वेल आर्यन शुक्ला 16 ईयर ओल्ड के बारे में यहाँ पे शेयर कर रही थी. आपका मैथ हमेशा से कैसा था आउट ऑफ 10 अगर आपको रेट करना हो? मुझे अगर आउट ऑफ 10 रेट करना हो तो माय मैथमेटिक्स वाज 5. व्हाट अबाउट यू? आपकी रेटिंग क्या रहेगी? 5599 पर आप शेयर कर सकते हैं.
1: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
3: मैं लाऊं अपना ए गेम.
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Skill check.
1: वेल ट्रेल चेक में आज भी मेरे पास नॉर्थ शोर की एक ट्रेल है, एक हाइक है. सो कल भी मैंने आपको ऑकलैंड नॉर्थ के बारे में, एक ट्रेल के बारे में बताया था. एंड मेरे पास एक्चुअली में एक मैसेज आया था जिन्होंने इस ट्रेल के बारे में मुझे बताया. सो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. इट्स कॉल्ड स्कैंड्रेट रीजनल पार्क. स्कैंड्रेट रीजनल पार्क जो है ये आपको पड़ेगी वॉकवर्थ के पास. सो नॉर्थ ऑफ ऑकलैंड की अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं, इट्स एनी वे ब्यूटिफुल. वॉकवर्थ की ओर अगर आप जाते हैं तो वहीं पर ये कोस्टल पार्क आपको मिलेगा, स्कैंड्रेट रीजनल पार्क. सो इसके पास ही ये आपको हाइक मिलेगी. इट्स अ ब्यूटिफुल कोस्टल फार्म पार्क नियर मेटकानाम. हेडलैंड्स, बीचेस, हिस्टोरिक होमस्टेड है वहाँ पे, सी व्यूज़ है, काफ़ी चीज़ें आपको मिलेगी. तो ये जो साइट थी, इट्स अ सेंचुरी ओल्ड फैमिली फार्म विच वॉज एस्टेब्लिश बाय द स्कैंड्रेट फैमिली, जिस नाम से ये पार्क का नाम है, इन 1860s. द पार्क प्रिजर्व करता है बहुत सारी रिस्टोर्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स को, जहाँ पे वूल शेड भी है, मिल्किंग शेड भी है. तो दीज स्ट्रक्चर्स इलस्ट्रेट पहले का यूरोपियन सेटलमेंट एंड फार्मिंग लाइफ उस समय पर जो माहौरंगी कोस्ट पे थी. सो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे एक वॉक है जो कि एक्चुअली में आप इंजॉय कर सकते हैं, एंड कावुआ बे के पास. सो ये जो पूरी की पूरी वॉक है स्कैंड्रेट रीजनल पार्क में, इट्स अ वेरी नाइस वॉक एंड मॉडरेट कह सकते हैं, ईजी नहीं है. बीच में आपको थोड़ा ऐसा स्लोप भी मिलेगी जो कि ऊपर की ओर जाती है. तकरीबन 2 hours की ये वॉक है अगर आप ये करना चाहते हैं. सो अगर आप नॉर्थ ऑफ ऑकलैंड की ओर जाने वाले हैं, वहाँ पे आप एक ड्राइव इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे जाके आप वॉक करना चाहते हैं, सो स्कैंड्रेट रीजनल पार्क इज़ वन पार्क जो कि अपनी लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं.
0: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywoods.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: At Bunnings, we've got a wide range of rugs to make your home cozier this winter. From plush rugs to hard-wearing styles for busy areas and fun designs to brighten the kids' rooms. We make cozy easy this winter. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
2: Schools use fibre to study in virtual reality, whereas Kim used it to study her family's genealogy to discover she has a long-lost relative in Taupo who streams true crime podcasts about missing people that often begin with an ad from Chorus saying New Zealand runs on fibre.
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
4: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
4: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
5: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
6: This is an announcement from Civil Defence. Between 6 and 7 p.m. on June the 14th, we're testing the emergency mobile alert. Therefore, we advise against partaking in hide-and-seek and other hiding-centric activities. For more, here's Barry Kane from Hidden Arts New Zealand. Barry? Where did Barry go? Anyway, on June the 14th, between 6 and 7 p.m., listen out for the emergency mobile alert.
7: Yeah! What was that?
6: Oh, Barry, you were behind that curtain. Very devious.
8: At Big Save, we work hard every day to keep our furniture and bed prices low, so you can always get New Zealand's best value, furniture and beds. And today, you can save big. Save big on lounge suites. Lounge suites now from $19.99. Save big on sofas. Sofas from $6.99. Save big on beds. Get the snow bed. Queen, king or super king, only $9.99. Save big on recliners. Get two recliners for $6.99, only at Big Save.

कॉफी ब्रेक फिलहाल आप सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने एक आपको ट्रेल के बारे में बोला कि आप एक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ये ट्रेल भी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यू नो व्हाट आई डू, जो भी चीज़ें, जो भी ट्रेल्स मुझे करनी होती है, जो भी हाइकिंग्स वॉकिंग मुझे करनी होती है, मेरे पास एक ऐप है जिसका नाम है ऑल ट्रेल्स। ऑल ट्रेल्स ओपन करके वहाँ पे बहुत सारी हाइक्स ट्रेल्स ये सब आपको मिल जाएगी जो मैं आपको बताती हूँ, तो वो सब जाके मैं अपने एक फोल्डर में ऐड कर देती हूँ। तो वो मैं सर्च करके उनको एक फोल्डर में ऐड करती हूँ, एंड जब वो कर लेती हूँ तो उसके ऊपर मैं कंप्लीटेड ऐसा क्लिक कर देती हूँ। वहाँ पे ऑप्शन होती है कंप्लीटेड की, तो वो आप क्लिक कर सकते हैं। सो कई बार ये आप कर सकते हैं कि वहाँ पे वो जो लिस्ट बनी होती है वो आप ये सारी की सारी ट्रेल्स अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, सो दैट जब भी आपको टाइम मिले ये जो ट्रेल्स है, हाइकिंग्स वॉक्स जो है, ये आप कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर अ फैमिली बॉन्डिंग एज वेल, फॉर फ्रेंड्स बॉन्डिंग एज वेल। इन फैक्ट यू नो ये चीज़ें आप अपनी टीम के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज करनी है, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, बिकॉज जब आप एक वॉक ट्रेल के लिए जाते हैं, अ टीम वर्क इज़ रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। सो कोई किसी को संभाल रहा होता है, कोई किसी को गाइड कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई खाने के लिए लेके आता है। सो इट्स अ क्वाइट नाइस टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज एज वेल, जो आप अगर फैमिली फ्रेंड्स के साथ नहीं तो टीम के साथ डेफिनेटली कर सकते हैं।

थ्रोबैक का गाना आप यहाँ पे सुनने वाले हैं जो कि 2000s की मूवी का है, लेकिन अगर आपको 80s के गाने सुनने हैं, 70s के, 60s के, 50s के गाने सुनने हैं तो रिमेंबर आप हमारी रोवा ऐप पे भी जा सकते हैं, ROVA इज अ स्पेलिंग। हमारी रोवा ऐप को डाउनलोड कीजिए। वैसे भी जीतने के लिए बहुत मौके आपको मिलते हैं, ढेर सारे चांसेस होते हैं कुछ ना कुछ जीतने के लिए, सो मेक श्योर कि रोवा ऐप को आप डाउनलोड ज़रूर कर रहे हैं। सो वहाँ पे आप जब हम पे क्लिक करेंगे तो वहीं पे म्यूज़िक स्टेशंस आप पाएंगे। म्यूज़िक स्टेशन में एक म्यूज़िक स्टेशन है 80s जुकबॉक्स, जो आप इन्जॉय कर सकते हैं 80s के गाने। देन वी हैव रिवाइंड जिसमें आप 60s, 70s, 50s के गाने इन्जॉय कर सकते हैं। देन वी हैव राहत फतेह अली खान जो कि सुपर सिटी में आके परफॉर्म भी करने वाले हैं, तो इनका म्यूज़िक स्टेशन भी आप वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं टू गेट अ फील ऑफ राहत फतेह अली खान सॉन्ग्स। एंड ऑल्सो वी हैव चढ़दी कला पंजाबी हिट्स। चढ़दी कला पंजाबी हिट्स में आपको बैक टू बैक पंजाबी हिट गाने जो है, पंजाबी बीट्स जो हैं, ये आपको सुनाई देंगी। सो ये सारे म्यूज़िक स्टेशंस भी आप सुनिएगा एंड बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये म्यूज़िक स्टेशंस कैसे लगे।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज है 4th of June और आज अभी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है. शावर्स हो सकते हैं क्योंकि क्लाउड कवर भी इंक्रीज हो रहा है. नॉर्दर्ली इज डेवलपिंग एंड जो सनसेट है वो 5:13 पे होगा, लेकिन ओवरनाइट टेम्परेचर गोइंग टू बी एज लो एज 15 डिग्रीज ओनली टुनाइट.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paad denge.
1: Good afternoon, 4th of June. Aaj aapka swagat hai Drive Show mein. सुपर से ऊपर ये शो शुरू हो गया आपके लिए. मैं हूँ रुस्बे.
4: हाय, मैं हूँ सैंडी. कैसे हो आप?
1: बहुत ही बढ़िया सैंडी. मेरे को पूछा आपने आप करके.
4: मैंने तो वैसे लिसनर्स को बोला था. अच्छा. कैसे हो आप? तुम कैसे हो?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ. आप स्ट्रेस में लग रहे हो क्या?
4: मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ.
1: स्ट्रेस नहीं है
4: क्या? नहीं. अच्छा, ऐसा क्यों लगा तुम्हें?
1: नहीं, वो साइन दिख गया मेरे को आपके स्ट्रेस का साइन.
4: अच्छा, ऐसा क्या?
1: हर किसी के स्ट्रेस का एक साइन होता है.
4: नहीं, सैंडी
1: के स्ट्रेस का साइन मुझे पता चल गया क्या है.
4: या फाइन. okay. ऐसा हाँ,
1: बट होता है ना, हर किसी के स्ट्रेस का एक साइन होता रहेगा ना.
4: स्ट्रेस होता है या फिर मे बी कुछ भी हो सकता है ना. जल्दबाजी भी हो सकती है, ऐसे वो भी हो सकता है, हड़बड़ी
1: भी हो सकती है.
4: इट्स बेसिकली जब वो चीजें होती है, too much to do, मतलब वही हो गया ना,
1: तो स्ट्रेस. हाँ, मतलब
4: इट्स द सेम थिंग ना.
1: लेकिन आपको पता है एक मूवी थी 99 नॉट आउट, जिसमें कुणाल खेमू एंड साइरस ब्रोचा और बमन ईरानी थे. पता नहीं,
4: आपने सीन द मूवी?
1: यू हैव सीन द मूवी? क्लास मूवी है वो.
4: आई लव्ड इट मैन.
1: इट इज एक्चुअली अ वेरी क्या बोलते हो, अंडररेटेड काइंड ऑफ मूवी है, बट बहुत क्लास मूवी है.
4: मेरे को अच्छी लगी थी.
1: उसमें ना बमन ईरानी एक चीज बोलता है कि हर एक का ना एक साइन होता है ब्लफ करने का, और वो मैं बहुत बिलीव करता हूँ. इट्स वेरी ट्रू एक्चुअली.
4: वाओ, ब्लफ करने का साइन. ओ, ब्लफ करने का साइन होता है.
1: ब्लफ करने का एक साइन होता है, लाइक जब वो ब्लफ कर रहे हैं तो उनका एक कोई साइन होगा, मतलब दे विल अनइंटेंशनली डू.
4: एक्चुअली यू आर राइट.
1: हां,
4: आई हैव नोटिस्ड दैट ऑफ वन पर्सन.
1: अच्छा.
4: एंड दैट वन पर्सन, उसका मैं जब भी वो साइन मैंने हमेशा देखा है ब्लफ करते समय.
1: हाँ.
4: और जब मैं, अब क्या हो चुका है कि जब भी मैं वो देखती हूँ, वो तो, साइन देखती हूँ, तो आए मेरे को ऐसा हंसी आती है. सो या,
1: अच्छा, वाओ,
4: कांट शेयर मच.
1: या एब्सोल्युटली, क्योंकि फिर वो पर्सन चेंज कर देगा ना वो. हाँ. प्रॉब्लम हो जाएगा फिर. एनीवे, आज आपके साथ ढेर सारी बातें करेंगे और आपको मस्त मस्त गाने भी सुनाएंगे. अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस घंटे की विद दिलजीत दोसांझ.
5: Mixing in the house.

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे एक से गाने लेकर आएंगे और प्लस क्या हो रहा है हमारे लोकल अराउंड टाउन उसके बारे में भी डिटेल्स देंगे.
1: या अभी टैक्स रिफंड के बारे में काफी बातें हो रही है रुजबे कि सो इट्स अ टाइम फॉर अ टैक्स रिफंड और अ बिल एक्चुअली में या टैक्स रिफंड होगा या बिल होगा ना दोनों में से एक चीज हो सकती है. सो यू आर गेटिंग अ टैक्स रिफंड यू पेड टू मच टैक्स और यू ओ अ टैक्स बिल मतलब यू पेड टू लिटिल टैक्स.
0: या सो इंडियन रेवेन्यू का ये खास है कि वो खुद से ही खुद में सब कैलकुलेट कर लेते हैं मोस्ट टाइम्स और फिर उसके बाद अचानक से आपके बैंक में पैसा आ जाता है या फिर आपके मैसेज फोन पे मैसेज आ जाता है
1: बिल आ जाता है.
0: नहीं नहीं मैसेज आता है कि हमने आपको एक मैसेज भेजा है जाके पोर्टल पे जाके चेक कीजिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनलैंड रेवेन्यू डायरेक्टली आपको कभी बिल नहीं भेजता है
1: वो कभी नहीं आता. ईमेल पे भी उनका जो मैसेज होता है वो नहीं आता है.
0: नहीं
1: वहाँ पे सिर्फ यही होता है कि आप अपना आईआरडी पे लॉग इन करो देन यू कैन चेक योर मैसेज विच इज ग्रेट थिंग एक्चुअली में बिकॉज इससे क्या होता है कि स्कैम के लेस चांसेस होते हैं नॉट इलिमिनेट बट लेस चांसेस हैं.
0: But yeah, it's going to be quite a challenging time, I think, for a lot of us.
1: So, aapko refund ho sakta hai if too much tax was deducted from your pay, you worked part-time or changed jobs, and you had tax credit you are eligible for.
0: Ji, aur ye sab isliye hota hai agar aapne sahi se aapka tax code nahi select kiya hoga to. To isliye make sure kijiyega ki agar aapko zyada bill aaya pay karne ke liye, then make sure that you are selecting the right tax code. क्योंकि उसके हिसाब से आपके आपका जो टैक्स डिडक्शन होता है वो होता है. एंड काफ़ी बार अगर आप PAYE पे हो मतलब अगर आप एम्प्लॉयड हो तो काफ़ी बार इतना हैसल नहीं होता है बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो देन यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स.
1: या बिल आता है इफ़ यू आर चेंजिंग जॉब्स एंड यू हैव मल्टीपल जॉब्स योर टैक्स वही अच्छे से डिडक्ट नहीं हुआ है करेक्टली and you earned extra income as well side hustle है कुछ.
0: So most times आपको पे करना पड़ता है जब भी आपका let's say अगर सॉरी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर अगर आपका एक लो इनकम मतलब लोअर इनकम पे है कंपेयर टू द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर तो काफी बार यू हैव टू पे टैक्स.
1: वैसे एवरेज रिफंड देखा गया है लास्ट ईयर वाज अबाउट $472 दैट वाज एवरेज
0: रिफंड ऑलराइट.
1: या सो अबाउट 2.3 मिलियन पीपल गॉट रिफंड अराउंड मोर देन 300,000 पीपल ओड टैक्स. या ये था लास्ट ईयर का रिपोर्ट.
0: सो इस साल का रिपोर्ट अब तक आया नहीं है लेकिन अगर अब तक आपको अगर पता चल गया कि आप टैक्स भरने वाले हो या टैक्स आपको बचत मिलने वाली है उसका रिफंड मिलने वाला है तो बताइए हमें यहाँ पे 5599 पे मैसेज करके.

विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
2: Kyun? Kya hua?
1: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne documents mange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
3: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424. Save karo Mitre 10 Mega Westgate or Henderson mein with 25% off Pink Stuff Cleaning or Novu Wire Wardrobes or 50% off Selected Sistema. Plus spend $20, enter online and go in the draw to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
5: मुझे भी।
4: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
6: Snooze and save at the Beds RS Winter Sale on now with up to 50% off selected sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds RS Manukau and Pukekohe where dreams begin.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favourite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
9: Are you ready to go home?
3: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
10: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hit. Super Se Upar, this show is coming for you. And now is the time we share this with you. फैक्ट ऑफ द डे में आज का जो फैक्ट है ये आपके साथ हम शेयर करेंगे व्हाट इज योर फैक्ट फॉर द डे सैंडी क्या है आज का फैक्ट
11: मैंने न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ा है कि इज अ होम टू वर्ल्ड्स ओनली एल्पाइन पैरट द किया
10: ओह
11: या जो कि अपनी इंटेलिजेंस मिस्चीवियस एंड समटाइम्स डिस्ट्रक्टिव चीजों के लिए भी जाना जाता है स्पेशली विद कार्स
10: ओके
11: सो या तो दुनिया का ओनली एल्पाइन पैरट द किया is in only in New Zealand.
10: Oh wow, that's pretty cool. Yeah,
11: matlab, pretty cool. But yahan pe waise dekha gaya hai because over the long weekend also I was doing the hiking with Nushin. So humne ye baatein kar rahe the ki jab wo jo bush walk wagera jo bhi hoti hai, kitni achhe way se usko preserve karke rakhte hain yahan pe. They don't commercialize things. चीज़ों को कमर्शलाइज नहीं करते हैं कि इसको थोड़ा और ब्यूटीफुल बना दें जैसे एक अगर बेंच रस्ते में थोड़ा वैसा है ओल्ड है तो वो ओल्ड है क्योंकि उसके आसपास की चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे हैं वहाँ पे लेकिन इट वाज वेरी नाइस मेरे को लगता है कि चीज़ों को बहुत प्रिजर्व करके रखते हैं एंड इवन द वाइल्ड लाइफ या फिर ये जो है नेचर में बर्ड्स वगैरह इनकी लाइफ को भी
10: मुझे ये चीज़ यहाँ की एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है कि कमर्शियल नहीं किए काफ़ी सारी चीज़ों को और काफ़ी सारी चीज़ें फ्री है लाइक हाइक्स और ये सब ट्रेल्स
11: फ्री है
10: सब फ्री आप फ्री में
11: जा सकते हो यू एंटर यू हैव टू क्लीन योर शूज दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट क्या बाहर का कोई भी ऐसा कीड़ा अंदर नहीं लेके जा रहे जो अंदर के बुशेज वगैरह को हार्म कर सके
10: और अंदर का भी ऐसा कुछ बाहर नहीं लेके जा रहे हो क्योंकि आने के टाइम पे भी आप क्लीन कर रहे हो
11: आने के टाइम पे भी आप क्लीन कर रहे हैं हर एक पाथ में हर एक जगह पे ये बने होते हैं ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि whenever you enter a trail there is वहाँ पे shoes clean करने के लिए
10: yeah so it's really cool क्योंकि हम जब बाली भी गए थे तो वहाँ पे कोई भी temple आपको visit करना हो कुछ भी हो हर चीज़ को commercial कर दिया गया था मतलब उसकी entry fee होती थी फिर अंदर वहाँ पे आपको टूर गाइड मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, लाइक मतलब बहुत खिचकिच हो जाती है वहाँ पे.
11: या
10: कंपेयर टू यहाँ पे इट इज लाइक भाई सब अपने अपने काम में.
11: या
10: एंड आई थिंक दैट इज the beautiful part about New Zealand.
11: Yeah, so fact ये है. और ये भी fact मैंने notice किया उस दिन कि you are planning for a trail कि आपको वहाँ जाना है, पर रस्ते में आपको एक और trail नज़र आ रही है तो वहाँ पे रुक गए, जैसे हम दोनों ने किया वहाँ पे रुक गए. But that says कि रस्ते में हम पहाड़ी जब देख रहे थे ना, वो डैम से जब पहाड़ी देख रहे थे आगे हमारे, चार पांच पहाड़ियाँ सामने होगी, एंड वी वर वंडरिंग कि हर एक पहाड़ी की ट्रेल्स है ना, और मल्टीपल ट्रेल्स है जिसमें सो मच आप सिर्फ ऑकलैंड में ही, और वो भी वेस्ट में ही इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए.
10: या वेस्ट इज बेस्ट. ये मुझे लग रहा है एक सेगमेंट चालू करना पड़ेगा यहाँ पे हमें.
11: बेस्ट इज हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड. गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ. मैं लाऊं अपना ए गेम. ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hit. Super se upar mein ab time aa gaya hai. Tinseltown. Tinseltown mein Bollywood ki khabrein aapke saath hum yahan pe share karte hain. Fancy word for Bollywood news.
1: या फैंसी न्यूज़ के बारे में आपको बताते हैं क्या क्या हो रहा है. है जुमानी तो इश्क होना है आने वाली है. एंड इसके बारे में काफ़ी ट्रेडर्स का ये कहना है कि ये मूवी अच्छा खासा बिजनेस करने वाली है.
0: अच्छा
1: प्रेडिक्शन है. ट्रेड प्रेडिक्स की ओपनिंग तकरीबन 7 to 8 crore की हो सकती है.
0: ओह राइट.
1: हाँ,
0: क्योंकि वरुण धवन अलग अलग तरीके से प्रमोट कर रहे हैं. सोशल मीडिया उनका भरा पड़ा है अभी और वो अलग टाइप का प्रमोशन कर रहे हैं. ही इज नॉट प्रमोटिंग द मूवी, ही इज जस्ट प्रमोटिंग हिमसेल्फ. ही इज गोइंग एवरीवेयर. तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहे थे बच्चों के साथ. बच्चों
1: okay.
0: मतलब वो इन्फ्लुएंसर्स आजकल काफी लोग ना क्रिकेट खेलते हैं.
1: हाँ.
0: तो वहाँ पे वो क्रिकेट खेलने गए बिकॉज ही ऑल्सो लाइक्स क्रिकेट.
1: ओह ही इज वेरी फन गाय. तुमने देखी क्या स्टोरीज अभी रिसेंटली? सो वरुण धवन क्या करते हैं, लाइक आई थिंक आई शेयर्ड दिस बिफोर एज वेल, ही इज वन पर्सन जो ऐसा रियल लाइफ की स्टोरीज पोस्ट करता है. मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं यहाँ गया हूँ. मतलब यू नो कोई भी जैसा स्टोरी पोस्ट करता है ना, वरुण धवन वो काइंड ऑफ सेलिब्रिटी है.
0: राइट.
1: तो मुझे बहुत सही लगता है उसका कि वरुण धवन की पर्सनैलिटी दिखती है उसकी स्टोरीज में. जैसे बहुत सारी जो सेलेब्स है वो प्रमोशनल पोस्ट डालते हैं, वो कुछ ना कुछ डालेंगे. पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसा कई बार नहीं डालते हैं. बहुत कम लोग शेयर करते हैं. बट ही इज लाइक मोर रियल रियल गाय.
0: तो इनकी मूवी आने वाली है जवानी तो इश्क होना है. बट इसके साथ साथ कॉकटेल 2 भी बहुत अभी करंटली मार्केट खा रहा है ना.
1: 19 जून को वो आएगी, उससे पहले मैं वापस आऊंगा. आई थिंक 12th जून को आने वाली है.
0: ओह माय गॉड, सो जून इज गोइंग टू बी पैक्ड. या
1: जून इज पैक्ड विद अमेजिंग मूवीज आई गेस.
0: तो मतलब बहुत बार जाना पड़ेगा थिएटर में.
1: ये सही है ना, इट्स हैपनिंग. और मुझे ना अच्छा लगता है अभी वापस सिनेमा में जाके देखो. इट्स अ डिफरेंट फील.
0: यस,
1: टोटल डिफरेंट फील.
0: या Absolutely. So, चलो आपके लिए कुछ गाने
1: भी. अंधेरे जैसा भूत बंगला देखने गए.
0: Some messages for you and then उसके बाद एक प्यारा सा गाना.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Throwback.
1: Now listening to Humpling, Bollywood's biggest hits.
2: Yes, मैंने एक रील देखी है, मैंने searched about them रुजबे. तुम्हें इन एथलीट्स का पता है? So both are athletes, देव कुमार मीना and कुलदीप कुमार.
1: नहीं यार मुझे नहीं पता.
2: So actually मैं मुझे भी नहीं पता था. So कुलदीप कुमार and देव मीना, they are two athletes from मध्य प्रदेश. So इन्होंने गेम खेलने गए जहाँ पे मैन का वो पोल होता है ना बड़ा सा.
1: पोल वॉल्टर.
2: या वो है. वो इन्होंने किया. It's very weird. At one point and one side, बहुत सारी celebration हो रही है, जहाँ पे you know one team जो है वो जीती है, celebrate कर रहे हैं.
1: National record set किया ना इन्होंने 5.45 meters in pole vault.
2: Yes.
1: मध्य प्रदेश के athletes हैं ये.
2: मध्य प्रदेश के athletes हैं. जो reel मैंने देखी उसमें क्या हो रहा था कि इनको ये इन्होंने ई रिक्शा की हुई थी अपने जो pole है वहाँ पे adjust करने की कोशिश कर रहे थे दोनों घर लेके जाने के लिए. There was no help.
1: Oh my God.
2: That's, मुझे वो इसलिए सैड सिनेरियो लगता है कि एक जगह पे अभी आईपीएल खत्म हुआ है. देयर इज अ सेलिब्रेशन, देयर इज लाइक पेपरेजी एवरीवेयर. उनको यू नो निकलने नहीं दे रहे, ऐसे पेपरेजी है कि उनको सिक्योरिटी की जरूरत है. और जहाँ पे ये दो एथलीट्स हैं,
1: नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने
2: बनाया, ये एथलीट्स ई रिक्शा में अपने पोल्स को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो घर चले जाएं. मुझे ये बहुत ये लगता है कि मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इतने एथलीट्स आगे नहीं जा पाते हैं.
1: इट इज वेरी सैड यार. आपको पता है ना हम लोग ने जब भी दिलशेर शैंकी के साथ भी बात की थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि बस क्रिकेट ही है जिसको इतना फंडिंग मिला है या सब कुछ यू नो इतना सपोर्ट मिलता है, व्यूअरशिप भी मिलती है, बाकी सारे स्पोर्ट्स को नहीं मिलती. और मैं सोच रहा था
2: इसका मेजर रीजन ऑडियंस भी है.
1: नहीं नहीं मैं इसके बारे में सोच रहा था. मैं इंडियन चैनल देखता हूँ मेरे घर पे, ठीक है. और उसमें मैंने देखा कि यार 90s में जब मैं सोच रहा था मैं 90s में जब टीवी देखता था तो आई नो व्हाई गर्ल्स हैव नॉट बीन टू मच इनटू स्पोर्ट्स, बिकॉज सिर्फ मेन स्पोर्ट्स ही दिखता था. एटलीस्ट 90s में, 90s 2000 में सिर्फ मेन ही दिखता था, बहुत कम वुमेन. सिर्फ टेनिस में होता था वुमेन्स, बाकी सारे स्पोर्ट्स में इट यूज टू जस्ट बी मेन. अब तो फिर भी विमेन क्रिकेट अभी काफी आगे बढ़ गया है और काफी उनको भी
2: हॉकी अभी होने वाली है,
1: हॉकी को भी मिल रहा है, टेनिस काफी, टेनिस और खो खो को भी बीच में काफी ज्यादा

0: सेम फील. सो वहीं पे हमारे ये एथलीट्स है और ये कहानी नई नहीं है. शेंकी सिंह टॉक्ड अबाउट इट
1: आई थिंक
0: इन आवर पॉडकास्ट.
1: आई थिंक इफ वी स्टार्ट गिविंग कंपलसरी स्लॉट्स ऑन टीवी ना कि भाई ये इतना स्लॉट ये स्पोर्ट को जाएगा, इतना स्लॉट ये स्पोर्ट को जाएगा, अगर ऐसे स्लॉट्स डिफाइन हो जाएंगे ना टीवी पे फॉर स्पोर्ट्स, देन आई थिंक दैट इज व्हेन स्पोर्ट्स एटलीस्ट इन इंडिया विल इम्प्रूव. ओवर हियर देयर इज आई थिंक देयर इज नो वर्शिपनेस फॉर एनी, लाइक रग्बी के बहुत दीवाने हैं
0: लेकिन but, अभी हाँ इक्वल हो चुका है यहाँ पे. एथलीट्स को भी बहुत किया जाता है,
1: हर किसी को उतना मिलता है रिकॉग्निशन, या हर किसी को बिल्कुल भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता है यहाँ पे, ऐसे रख सकते हैं
0: एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ.
1: हर किसी को किसी
0: नो वन इज सेलिब्रिटी,
1: नो वन इज सेलिब्रिटी यहाँ पे.
0: मतलब अगर केन विलियमसन को हम बाहर देखेंगे मे बी हम में से कुछ लोग ऐसे क्रेजी हो जाएंगे कि केन विलियमसन है, लेकिन यहाँ के लोग नहीं होंगे.
1: यहाँ के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बट बस वही है कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी पॉलिटिशियंस को भी सेलिब्रिटी बना दिया है जहाँ जाते हैं,
0: हमारी कम्युनिटी ने बनाया है.
1: क्योंकि हमको यार हम लोग को आदत है कि हम किसी को भी ना ऐसे सर पे चढ़ा देते हैं. इट इज सम आर थिंग.
0: I agree 100%.
1: Yeah. So
0: इस आवर थिंग को मेरे को लगता है सही जगह पे यूज करना चाहिए. जैसे दीज काइंड ऑफ एथलीट्स मे बी जब इनकी वीडियोस देखते हैं शेयर अबाउट देम,
1: टॉक अबाउट देम,
0: लाइक वी आर टॉकिंग. और मे बी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उस पे.
1: हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. वी डोंट ओनली कवर अबाउट क्रिकेट एंड वी टॉक अबाउट अदर स्पोर्ट्स जो हमें काफी बार फीडबैक भी मिलता है. सो या दैट्स व्हाई सी आई डिडंट टॉक अबाउट आईपीएल कौन जीता कौन नहीं जीता.
0: ये तुमने देखा ही नहीं. आरसीबी जीती है.
1: आई नो इसलिए मैंने बात नहीं की ना मैंने उसके बारे में. बट एनीवे यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़्बे.

0: ऊपर से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Hum, accurate traffic.
2: 15% off airport parking.
3: Cloudy overnight for Auckland, a low of 15 degrees. Very heavy on the southern at the moment. Northbound from Princes Street to Green Lane and south from Newmarket to Papatoetoe. An R8 to get to Drury, 46 minutes to Manukau. 47 minutes from the city on the northwestern to Massey at the moment. It's heavy to Te Atatū. Heavy on the Harbour Bridge through to Tristram Ave.
2: 15% off Auckland Airport parking. Book now using promo code EARLYBIRD. Conditions apply.
4: Save karo my 10 mega Westgate or Henderson main with 25% off pink stuff cleaning or Novu wire wardrobes or 50% off selected Sistema. Plus spend $20, enter online and go in the draw to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
5: At Woolworths, whether it's casserole or stir-fry, we've got chicken for every occasion. Like our fresh chicken breast fillets, boneless, skinless, on special at just $12.90 a kg. Large tray only. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
6: TradeDepot.co.nz.
7: Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just $289. Heat pump dryer just $599. All-in-one washing machine and dryer $799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
6: TradeDepot.co.nz.
8: Stretch your budget further at Mitre 10. Clean up with a Bosch 15-litre wet and dry vacuum cleaner, now just $129. And score 20% off Cordtech work lights. T's and C's apply. Grab these great deals and more at Mitre 10.
9: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
0: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
10: Good evening, I'm KM Adams with the latest at 5. An intelligence expert claims Chinese spies take advantage of human nature. The Global Five Eyes partnership, which New Zealand is a part of, is warning about approaches being made on sites like LinkedIn for sensitive information. Paul Buchanan says they come across as friendly or innocuous.
11: They usually start out again in a very kindly manner. All of us will be flattered in response. You know, we like being liked. It's old tradescraft in new garb.
10: Donald Trump is assuring a ceasefire with Iran is still in place despite new strikes on both sides. The US president was asked how he defines ceasefire.
12: Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
10: ANZ has hiked some of its home loan rates. Its one-year fixed special is now 4.79% and 18 months is 5.19%. A black cat is being looked at after the death of seven native birds in Tauranga. The feline was picked up from Leisure Island but isn't confirmed to be responsible. The City Council's Josh Clark says the birds did have predation marks on them.
13: We can't say for sure, but the timing of the two events is very coincidental. It's definitely not a regular occurrence to find seven dead diving petrels in such a small area.
10: And the Black Caps are in action tonight, weather permitting, in the opening test of three against England. Some rain and overcast conditions are forecast for North London, which leans towards better conditions for the Seamers. Play scheduled to start at 10. In All Blacks and Chiefs wing, Leroy Carter was in but is now out of the squad to take on the Reds on Saturday evening. He hasn't fully recovered from that hamstring injury.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: आज है 4th of June और आज अभी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है. Showers हो सकते हैं क्योंकि cloud cover भी increase हो रहा है. Northerly is developing and जो सनसेट है वो 5:13 पे होगा, लेकिन ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 15 डिग्रीज ओनली टुनाइट.
16: आर यू रेडी टू गो होम?
0: द
4: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusby.
16: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
15: 5 बज चुके हैं. यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्बे. पावर ड्राइव एट 5 में आपका स्वागत है ऑन 4th ऑफ जून.
17: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. आपका आज का डे कैसा गया काम का, यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं. हाउ वाज योर डे टुडे? इट इज ऑलमोस्ट फ्राइडे, इट इज थर्सडे.
15: जी ऑलमोस्ट फ्राइडे. मेरा दिन बहुत ही बढ़िया गया सैंडी, बिकॉज आई एम ऑन अ हॉलीडे राइट नाउ. दिस इज माय हॉलीडे टाइम.
17: वाओ.
15: या आई विल बी ऑन हॉलीडे ऑन द रेडियो एज वेल.
17: ओ कब?
15: पता नहीं यार,
17: तुम्हें बताना पड़ेगा.
15: हाँ भाई बताना पड़ेगा.
17: हाँ लेकिन इट विल बी गुड टू,
15: बिकॉज़ आई थिंक इट इज गुड टू जस्ट हाँ हैव अ ब्रेक ना.
17: या
15: न तो फिर
17: क्योंकि उसके बाद फिर मैं ऐसा राइटफुली ब्रेक पे जा सकती हूँ. नाउ यू हैव टेकन द ब्रेक, आई एम गोइंग.
15: क्योंकि मैंने इस साल में ब्रेक लिया ही नहीं है.
17: हाँ क्योंकि तुमने दिसंबर में लिया है ना.
15: हाँ दिसंबर में दो हफ्ता का, दो हफ्ते का ब्रेक लिया है सैंडी यार. दो हफ्ते में बच्चे की जान लोगे क्या यार. बढ़िया. बट आई थिंक जून इज अ ग्रेट टाइम टू गो ऑन अ ब्रेक. व्हाट वुड यू से, लाइक वुड यू, डू यू आल्सो अग्री ऑन दैट, लाइक जून इज अ गुड टाइम टू गो ऑन अ ब्रेक?
17: वेल आप बताइए यहाँ पे 5599 पर. एंड आई एग्री, मुझे लगता है कि बिकॉज जून यहाँ पे ठंड रहती है, सो इट विल बी अ गुड टाइम टू एस्केप समवेयर. या फिर अगर ठंडी जगह पे भी जाना चाहते हो, अगर न्यूजीलैंड में भी घूमना चाहते हो, उसके लिए भी मेरे को जून परफेक्ट लगता है, बिकॉज जून में यू गेट रियली गुड डील्स.
15: दैट्स राइट. एक्चुअली फ्लाइट्स काफी चीप होती है साउथ आइलैंड के लिए, एंड अकोमोडेशन तो चलो महंगा होता है हमेशा.
17: अगर सर्दी देखनी है तो प्रॉपर सर्दी देख लो ना.
15: सर्दी देखनी है ना
17: तो बारिश, मतलब फिर ऑकलैंड की सर्दी क्यों देखनी है, प्रॉपर सर्दी देखो
15: जी. सो बताइए आपका क्या प्लान चल रहा है ट्रिप पे जाने का या जून में ब्रेक लेने का. काफी लोग क्या बोलते हैं उसको, जून में भी वो लोग मिड क्रिसमस या ऐसा कुछ सेलिब्रेट करते हैं, पता है आपको?
17: या आई नो
15: ऐसा कुछ तो भी विंटर क्रिसमस या कुछ बोलते हैं ना,
17: बिकॉज़ हमारी विंटर क्रिसमस नहीं होती ना न्यूजीलैंड में, तो वी सेलिब्रेट विंटर क्रिसमस जून में.
15: या सो एनीवे आपके क्या प्लान्स हैं, अगर कुछ है तो हमें शेयर कीजिए हमारे साथ यहाँ पे यार, बिकॉज मे बी योर प्लान विल मोटिवेट वन ऑफ अस एट लीस्ट.
17: नो एट लीस्ट मैं तो मोटिवेट उसी समय हो जाऊंगी. बी केयरफुल इसको करो.
15: नहीं, अभी मत शेयर करना फिर, क्योंकि अभी सैंडी मोटिवेट होगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा छुट्टी पे. तो अभी मेरे को जाना है लेकिन छुट्टी पे.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Power Drive at 5 में आपके लिए एक से एक गाने तो लेंगे लेकर ही आएंगे. प्लस क्या हो रहा है अराउंड टाउन, इसकी बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे.
1: Yes, क्या क्या हो रहा है आपके आसपास, ये बातें भी आपके साथ हम शेयर करते हैं. रुज़बे, तुम कुछ शेयर करने वाले थे ना अबाउट प्राइम मिनिस्टर.
0: इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे, तो प्राइम मिनिस्टर इज इन न्यूज. काफी जगहों पे वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, रिपोर्ट्स दे रहे हैं. काफी जगहों पे उन्होंने कहा है कि वो कंसर्न्ड है, और वो कंसर्न्ड है हॉस्पिटैलिटी फेलियर्स को लेकर. हॉस्पिटैलिटी बिजनेस काफी बंद हुए हैं. 49% इन अ ईयर कंपनीज फेल हुई है, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड कंपनीज. That's a huge number, yeah.
1: It is huge.
0: Means,
1: recently, मुझे लगता है कि last month में ही मैंने बहुत सारी news पढ़ी है. ये बंद हो रहा है, ये बंद हो रहा है. जो सालों से थे वो बंद हुए.
0: सालों से बंद हो रहे थे, वो सब बंद हो रहे थे, cafes and restaurants. मैंने तो recently एक सुना, एक बहुत ही popular cafe था सैंडी, उसको भी बहुत ही बुरा rating मिलकर वो भी बंद almost होने पे आ गया. मतलब बंदी हो गया. बंदी हो गया. So that is also quite shocking, quite surprising. क्योंकि बहुत पॉपुलर ये कैफे, बेकरी, जो भी बोलते हो आप इसको, ये था. लंबी लंबी लाइन्स, हाँ लंबी लंबी लाइन होती थी वीकेंड पे बाहर. सो या इफ यू नो व्हाट आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन. नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, नाम लेना मेरे को पता नहीं है सही रहेगा.
1: अभी बंद हो गया क्या?
0: अभी शायद ऐसा लग रहा है बंद हो गया है.
1: Okay.
0: तो बट फिर से खुल सकता है कभी भी.
1: तो अच्छा, हॉस्पिटैलिटी का बोला प्राइम मिनिस्टर.
0: तो प्राइम मिनिस्टर यही कह रहे हैं, अभी देखो यार इसका बिल उस पे फाड़ो. वो बोल रहे हैं कि हम मिनिमम इम्पैक्ट करना चाहते हैं, जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, और जो ग्रोथ है, इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं. बट हाँ, इन्होंने ये कहा है कि ये इकोनॉमी जो है ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ 2.7% over next 4 years. और ये कह रहे हैं this is faster than the UK, EU, Australia, Canada and many other countries, Japan included. और ये और दावा दे रहे हैं कि this is going to generate 220,000 jobs, whether that's in hospitality or other, in other sectors.
1: Wow.
0: So there are more jobs that might come up. But nothing substantial that is coming out of all these conversations. मतलब ये सारी ये claims है, बातें हैं, but कुछ action इसके around दिख रहा नहीं है. But for someone who is in the hospitality business, you know better. Let us know, क्या आपको लग रहा है कि कुछ change आ रहा है आपके hospitality business में?
1: Over the last few years, क्या changes आए हैं? आपने अगर dip देखा है, तो आपने उसको कैसे recover करने की कोशिश की है? Please do share. वैसे इससे याद आया रुज़बे, ओवर द वीकेंड हमारा यहाँ पे सुबह जो शो होता है ना, उसमें यूजली हम होम बेस्ड बिजनेसेस को भी प्रमोट करते हैं. सो जब आप यहाँ पे वीकेंड्स में मॉर्निंग्स सुनेंगे, तो मॉर्निंग शो में कई बार हम होम बेस्ड बिजनेसेस को शाउट आउट भी देते हैं टू हेल्प आवर कम्युनिटी आउट. तो मेक श्योर कि उस समय पर आप सुन जरूर रहे हैं, एंड मैसेजेस उसी समय पर आप भेजेंगे 5599 पर.
0: या सो इफ यू ऑपरेट फ्रॉम होम,
1: या
0: then do listen to Saturday subah.
1: Saturday subah, and Sunday.
0: And Sunday also. And yeah, do a message, kyunki aapko free shout out mil sakta hai on the radio.
1: Yeah, stay tuned.

0: हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate traffic.
2: The LifeWise Trust Big Sleep Out. Please donate now.
3: Cloudy overnight for Auckland, a low of 15 degrees. Very heavy on the southern at the moment. Northbound from Princes Street to Green Lane and south from Newmarket to Papatoetoe. An R8 to get to Drury, 46 minutes to Manukau. 47 minutes from the city on the northwestern to Massey at the moment. It's heavy to Te Atatū. Heavy on the Harbour Bridge through to Tristram Ave.
2: Support Auckland's homeless by donating at bigsleepout.org.nz.
0: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
4: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
5: There are days when you nail parenting, but with no food in the fridge, this isn't one of them.
6: Dash! Savior of the lunchbox!
5: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
6: Dash!
0: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
0: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.
9: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
10: Power Drive at 5.
11: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
12: Power Drive at 5, आप सुन रहे हैं only on हम playing Bollywood's biggest hits और Bollywood's most wanted आपके लिए लेकर आएंगे इससे बाद, लेकिन उससे पहले आपको बता दे एक बहुत ही धासु प्ले हो रहा है हमारे सुपर सिटी में।
13: इंडियन इंक थिएटर कंपनी आपके लिए बलून डॉग लेके आ रही है।
12: ये इंग्लिश में होता है ये प्ले, ये काफी इनके काफी प्लेज हो रहे हैं ओवर द इयर्स, और जेकब राजन जो एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मर है जिन्होंने मेंबर ऑफ न्यूजीलैंड मेरिट ये भी जीता है, एक बहुत ही प्रेस्टीजियस एक टाइटल होता है जो इनको मिला है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द क्राउन एंड द नेशन।
13: वैसे आप इनके इंटरव्यू सुनने वाले हैं कमिंग मंडे ब्रेकफास्ट शो में आफ्टर 9 AM।
12: इनका जो प्ले है बलून डॉग, ये एक नया प्रोडक्शन है जो इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर्स बिलव्ड स्टोरी काबुलीवाला, लेकिन ये सेटअप किया गया है इन द 21st सेंचुरी ऑकलैंड, तो आप काफी रिलेट करोगे इसके साथ।
13: सो एक 5 साल की बच्ची की फ्रेंडशिप होती है एक लोनली माइग्रेंट वर्कर के साथ, सो वहाँ पे अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आते हैं एंड मच मोर।
12: 3 जून से लेकर 20 जून को ये प्ले चलने वाला है एट द क्यू थिएटर, आप जरूर पहुंचिएगा ये देखने के लिए। आपको इसके टिकट्स मिलेंगे iticket.co.nz पे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे डबल पास जीतना है तो आपको BD लिखकर यहाँ पे भेजना है।
13: सो BD स्पेस अपना नाम लिख के आपको यहाँ पे भेजना है। जो ड्रॉ है ये वैसे 5 जून को होने वाला है ब्रेकफास्ट शो में, सो मेक श्योर कि आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कर रहे हैं बिकॉज डबल पास जीतने का मौका है इस थिएटर के लिए.
12: जी, दिस प्ले इज़ रिटन बाय जेकब राजन एंड जस्टिन लुइस एंड डायरेक्टेड बाय जस्टिन लुइस. तो इसको आप क्यू थिएटर में जाके देख सकते हैं लाइव.
11: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
14: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
15: मैं लाऊं अपना ए गेम.
11: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम यहाँ पे Power Drive at 5 लेकर आते हैं 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद Trend Makers.
1: Yes, ये भी आपके लिए हम लेके आते हैं. By the way, आपको बता दें कि आज जो अवार्ड्स नाइट है, न्यूजीलैंड रेडियो एंड पॉडकास्ट अवार्ड्स नाइट है, जिसके कारण हम यहाँ से थोड़ी देर में ऐसा गायब हो जाएंगे. बट स्टे ट्यून्ड ऑन आवर सोशल हैंडल्स.
0: अनफिल्टर्ड पीडी.
1: अनफिल्टर्ड पीडी में एक्चुअली में आपको सब कुछ मिलेगा.
0: या फिर अगर आप हमारे पे हमको भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो ऐसे.
1: रुजबे अंडरस्कोर द बाबा एंड सैंडी सेख हो, ये हैंडल्स है. लेकिन अनफिल्टर्ड पीडी में जाएंगे तो आपको दोनों मिल जाएंगे. सो अनफिल्टर्ड पीडी में हम कंटिन्यूस अपडेट करेंगे. तो थोड़ी देर में कुछ अवार्ड्स के अनाउंसमेंट जो है वहाँ पे होने वाले हैं, तो वी हैव टू बी देयर. सो इसके कारण क्या होगा कि हम यहाँ पे आपके लिए ट्रेंड मेकर्स में आज कुछ स्पेसिफिक ईयर के हिट गाने प्ले करने वाले हैं. इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी देर में, बट फॉर नाउ कम्युनिटी न्यूज.
0: कम्युनिटी में ग्रैंड कीर्तन संध्या फीचरिंग रोनल्ड सिंह रोनू एंड जैनेश सेवक इज हैपनिंग दिस फ्राइडे 5th जून को एट वैदिक सेंटर पापा टोयोटा 7:30 बजे. टिकट सिर्फ $20 की है जो जेएस फ्रेश मार्ट पे अवेलेबल है.
1: एंड ऑल्सो आप मुस्कान केयर ट्रस्ट न्यूजीलैंड की ओर से ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन है जहाँ पे यू कैन गो एंड डोनेट द ब्लड.
0: जी, तो यहाँ पे ग्लो रेड फॉर थैल एनजेड, ये इनका अभी कैंपेन चल रहा है जहाँ पे ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं मुस्कान केयर ट्रस्ट एनजेड एंड थैलेसीमिया के बारे में एंड सिकल सेल एनीमिया के बारे में ये बातें कर रहे हैं. अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है, अरे हमने ये पॉडकास्ट अब तक रिलीज़ नहीं किया है ना.
1: यस,
0: ये हमारा पॉडकास्ट अभी रिलीज़ होगा बहुत जल्दी. इसके ऊपर हमने पूरा एक लंबा पॉडकास्ट किया है एंड इट्स अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग वन. बट अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप muskancaretrust.org.nz विजिट कीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इसके बारे में थोड़ा समझे जाने. एंड अगर आप ब्लड डोनेट करने की उम्र में हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर ब्लड डोनेट कीजिए. एंड इनका ये जो कैंपेन है, ये होने ब्लड डोनेशन ड्राइव होने वाला है 20th जून को एट मनुकाव NZ ब्लड सेंटर.
1: यस, एंड आप ज़रूर वहाँ पे पहुँचेगा ब्लड डोनेशन के लिए. मेरा भी पेंडिंग है, मुझे भी जाना है. एज सून एज आई रिकवर आई विल डेफिनेटली गो. एंड और भी कुछ कम्युनिटी में इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि ब्राह्मण सभा न्यूजीलैंड आपको इन्वाइट कर रही है अधिक मास कथा एंड यज्ञा के लिए, जो कि संडे 7 जून को होने वाली है रामकृष्ण मंदिर में. तो आप भी वहाँ पे ज़रूर पहुँच सकते हैं.
0: जी, इसके साथ साथ श्रीमद भगवत कथा ये भी हो रहा है 25th एनिवर्सरी ऑफ श्री राधा कृष्ण मंदिर ऑकलैंड, और यहाँ पे 5th जून से 11th जून आप पहुँच सकते हैं. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट भी आपको इन्वाइट कर रहे हैं फॉर 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ रामकृष्ण मंदिर 25 ऑन्सलो एव मनुकाव में ये होने वाला है. तो आप वहाँ पे भी पहुँच सकते हैं फॉर ऑल दीज कल्चरल प्रोग्राम्स.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Good traffic.
1: Popeye's chicken, $5 deal.
2: Cloudy overnight for Auckland, a low of 15 degrees. We're getting reports of a crash on the southern just past the Sylvia Park interchange. Traffic banked up at the moment back to Green Lane. In the other direction, it's heavy heading north from Princes Street to Green Lane. On the northern, heavy from the city across the Harbour Bridge to Northcote Road and slow on the upper harbour around Greenhithe.
1: Three spicy wings for $5 this week at Popeye's. Love that chicken from Popeye's.
3: If you want a good restaurant, you look for a queue. If you're looking for a new show, you watch what everyone's talking about. And when you're choosing a KiwiSaver fund, you look for the smart money. With thousands of Kiwis switching to the ANZ KiwiSaver High Growth Fund, search ANZ KiwiSaver to see if it's right for you. ANZ New Zealand Investments Limited is the issuer and manager of the ANZ KiwiSaver scheme. Find a copy of our product disclosure statement at anz.co.nz.
4: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
5: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
4: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स पापा टोटो।
6: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
7: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
8: Rebel Sport has winter sorted. Layer up with deals on puffers, jackets, sweats and fleece built to keep you warm when the temperature drops. Plus global football fever is kicking off. Grab your fan gear and get game day ready. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
9: Oh my, oh my, Bray South Road, greater than ever.
10: South Auckland's buses just became a lot better.
9: Weymouth Road, way better buses.
10: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses and more.
9: Woody, no worries, MIT, A-OK.
10: Search AT Better South Auckland Buses for details.
9: Airport, got your transport.
10: Then turn up and go.
11: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
12: Power Drive at 5.
13: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernised, customised designs for your dream kitchen.
14: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. And now time aa gaya hai yahan pe for
12: Drive Through Confessions.
14: Drive-through confessions में आज हमारे पास ना एक confession आया है यहाँ पे
15: और एक message आया है इनका हम नाम तो नहीं बोलेंगे लेकिन इन्होंने जो confess किया है वो हम share करेंगे because he asked us to share it so that it's out there from his chest ऐसे
14: yeah so इन्होंने confess किया और मुझे लग रहा है ना काफी लोग इसके साथ बहुत relate करेंगे मैं तो काफी हद तक relate करता हूँ ये चीज से मुझे ये चीज से बहुत दिक्कत है इन्होंने कहा है कि ये corporate office में काम करते हैं और इनकी वाइफ जो है ये बहुत ही अमेजिंग खाना बनाती है इनक्रेडिबल खाना बनाती है और प्रॉपर इंडियन करी टाइप बनाती है उससे प्रॉब्लम एक ही हो रहा है कि मंडे सुबह इनको डर है कि इनके कपड़े बहुत स्मेल करते हैं ऑफ दैट फूड जो अपना करी होता है गार्लिक होता है वो सब उनका काफ़ी मसालों का स्मेल उनके कपड़ों में रह जाता है काफ़ी एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बॉडी स्प्रे और अलग अलग टाइप के च्युइंगम रखते हैं अपने पास ताकि वो थोड़ा अपने मतलब एम्बैरेसमेंट से बचे बट ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है
15: ये जेन्युइन है और ये आपने चलो इसका कन्फेस किया है एंड इन्होंने बोला कि इसलिए ये कई बार जब खाना भी कई जगह पे खाते या बैठते हैं काम पे उस समय पर आके तो दे ही फील बिट कॉन्शियस
14: हाँ
15: उस चीज़ को लेके
14: जी
15: बट आई थिंक इट्स वेरी ये कॉमन प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी लोग इसको एक्सपीरियंस करते होंगे एंड स्पेशली जब कुकिंग चल रही होती है व्हेन दे ड्रेस अप मतलब व्हेन दे ड्रेस अप और उसके बाद कुकिंग चल रही होती है तो वहाँ पे ज़्यादा होता है ये
14: या फिर काफ़ी बार क्या होता है मालूम है कि अगर आपने लाइक यू नो अभी मैं आयन करता हूँ कपड़े सो लेट्स से माय वाइफ इज कुकिंग एंड आई आयन इन द लाउंज वॉचिंग टीवी और समथिंग तो काफ़ी बार वो एरिया में ना स्मेल काफ़ी हो जाता है
15: तो वो रह जाती है
14: द अदर थिंग ऑल्सो दैट यू कैन डू इज मेक श्योर कि आप जब भी कुक कर रहे हो तो आपका जो रूम बाकी दरवाजे हैं उसको आप बंद कर दो
15: और मे बी डोंट आयरन द क्लोथ्स एट द सेम टाइम ना.
14: या डोंट आयरन आउटसाइड एंड बट आल्सो क्लोज द डोर्स, क्योंकि काफी बार वो स्मेल ना रूम्स तक चले जाता है और वो वार्डरोब में घुस जाता है वो स्मेल.
15: और एक और चीज वो ये कर सकते हैं कि आप ट्राई कीजिए कि कपड़े बाद में चेंज करो आप. काम पे आने के लिए वो जो कपड़े हैं आप एंड में चेंज करो. सो मेरे साथ ये होता है, आई मॉर्निंग में जो कुकिंग करती हूँ एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं काम पे आने से पहले जो रेडी होती हूँ तभी सिर्फ कपड़े चेंज करती हूँ,
14: right.
15: उससे पहले नहीं, क्योंकि देन ऑफकोर्स सुबह सुबह करी तो नहीं होती है, लेकिन कुछ भी है तो ऐसा वहम होता है कि वो रह जाएगा उसमें. या फिर मैं तो इसलिए करती हूँ कि कहीं कुछ ऐसा दाग वगैरह लग जाएगा,
14: बिकॉज नहीं लगना चाहिए
15: उन सब चीजों के कारण.
14: जी
15: बट या इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम. और मेरे को लगता है वहाँ पे सेम प्रॉब्लम एक वो भी रहती होगी, काफी लोगों को ऐसा उनकी जब आप घर जाते हो कपड़े नहीं चेंज करते हो तो करी की स्मेल तो नहीं लेकिन करी के दाग जरूर लग जाते हैं आपके कपड़ों पे.
14: यस,
15: वो भी निकालने बहुत मुश्किल होते हैं.
14: उसके लिए फिर वैनिश यूज करना पड़ता
15: है टू वैनिश इट,
14: नॉट एन ऐड. बढ़िया, थैंक यू सो मच यहाँ पे शेयर करने के लिए. अगर आप भी रिलेट करते हो इस चीज के साथ आप शेयर कीजिए आप क्या नुस्खा या टोटका ऐसा यूज करते हो,
15: वो भी आप बताइए यहाँ पे. एंड अभी वक्त तो चला है यहीं पे आपको टाटा बाय बाय कहने का रुजबे, बिकॉज हमें निकलना है, अनाउंसमेंट बस होने वाली है, वी हैव टू बी देयर. एंड आज आप ट्रेंड मेकर्स में 6 बजे के बाद यहाँ पे 2026 में मिड जून हो चुका है, मिड ईयर हो चुका है, इट्स जून, मिड ईयर होने वाला है ऑलमोस्ट. 2026 के जो हिट गाने यहाँ पे आपने सुने हैं ऑन हम की जो हिट ट्रैक लिस्ट रही है वो आज आप सुनने वाले हैं
14: फॉर 2026
15: या
14: सो फार
15: या.
14: तो या ये जरूर एंजॉय कीजिएगा, प्लीज हमारे लिए थोड़ी दुआएं करना, प्रे करना, होप
15: दो
14: करना
15: नॉमिनेशंस में है, होपफुली एक अवार्ड मिल जाए. नहीं भी मिलते तो कोई बात नहीं
14: यार, ये क्यों बोलती हो आप नहीं भी
15: अरे
14: मिलते
15: यार,
14: कोई बात नहीं.
15: अगर नहीं मिला तो फिर अभी लाइव करेंगे ना आप देखना, थोड़ी देर में हम बस आई थिंक 6:30 या उसके बाद से कुछ हम लाइव करेंगे. हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कीजिए unfiltedpd, सब अपडेट्स आपको वहां पे मिलेगी. लाइव अगर हम कर रहे होंगे किसी भी हाल में होंगे लाइव जरूर करेंगे हम रुजबे.
14: ओके,
15: वी गोना पोस्ट समथिंग ओवर देयर,
14: मतलब आज रोएंगे भी शायद लाइव नहीं, बट लेट्स बी पॉजिटिव यार, लेट्स ओनली पॉजिटिव दुआ है. बट या थैंक यू सो मच फॉर योर साथ, फॉर योर प्यार. अवार्ड जीते ना जीते आपका प्यार जरूर जीतेंगे एक दिन.
15: बाय.

0: वो डर गया।
1: कमऑन रिया,
0: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
1: मेरी
0: है।
1: भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: वाओ।
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: I'm not listening to
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा।
1: I'm not listening
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: Okay, I'm not with
0: her। तो इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: Okay, that's it।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
2: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
1: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
2: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: Moisture और ventilation का problem लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
6: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a shower dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every shower dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
7: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
8: Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just $289, heat pump dryer just $599, all-in-one washing machine and dryer $799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
2: बॉलीवुड
3: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Traffic.
3: Wardrobes Direct 30th birthday sale on now.
4: Cloudy overnight for Auckland, a low of 15 degrees. Reports through of a crash on the southern around Ellerslie affecting southbound traffic. It's heavy from St Mark's Road. 43 minutes to Drury, 31 to Manukau from the centre of the city. 33 minutes to Massey on the northwest and still heavy from the city to Te Atatū. And still a bit slow over the Harbour Bridge heading north to the Northcote Interchange.
3: Mega savings this month only at Wardrobes Direct 2 showrooms, Mount Wellington and Silverdale.
5: Fuel ke dam rose बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
6: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस।

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
2: Flooring Extra. Adore your floor.
3: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटेड एम
4: अरे सुनो मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला
5: फ्री कंटेनर तो अच्छा है लेकिन डोसा कैसा था
4: डोसा तो ठीक ही था लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं
6: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू
7: It's discount day at GAL today from 7 a.m. Fill up and save a whopping 16 cents off per litre. 16 cents? But get in quick because the birds are circling in hungry for savings. GAL, fuel savings for all Kiwis. Terms and conditions apply.
8: Hum, time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
9: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Ryan. Intelligence expert Paul Buchanan claims Chinese spies take advantage of human nature. The global Five Eyes partnership, of which New Zealand is a part, is warning about approaches being made on sites like LinkedIn for sensitive information. State Highway 1 is closed near Tahana Reserve near Auckland's northern boundary after a building fire this evening. There's a diversion through Mangawhai. 24 people now face charges after a nearly year-long investigation into alleged corruption within prisons. Those arrested include corrections officers, reintegration officers, and members of the public associated with prisoners. In sport, for any test cricket enthusiast, the first session of a first test in a new series brings a special sense of anticipation. However, there is rain in the forecast for the Black Caps England clash at Lord's overnight. And in football updates brought to you by Hisense, as if the fan experience at the World Cup isn't expensive enough. In a last-minute move, FIFA has banned fans from bringing refillable water bottles into the venues. It will force fans to pay for bottled water.
8: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
10: World's best, hamari good brands nahi hai.
8: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
11: Good evening everyone, welcome to the show. Aaj Thursday hai, 4th June hai aur main Krish aa gaya hu aapka saath dene ke liye. Aaj Thursday hai to rhythm and romance to hoga hi kyunki 8 to midnight aapke liye rahegi ye pyara sa program jisme bahut sare pyare gaane romantic songs pesh karenge, romantic baatein bhi karenge, sher o shayari ki mehfil bhi sajayenge. Saath hi mein कुछ रोमांटिक प्यार भरी बातें हैं जो प्यार की परिभाषा बोलते हैं वो भी आपके लिए हम शामिल करेंगे बैक टू बैक सॉन्ग्स भी आज होने जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक रोमांटिक सॉन्ग्स तो होगा ही और प्यारे रोमांटिक गानों का गुलदस्ता हम सजाएंगे इस महफिल में और भी रौनक लेकर आएंगे इन गानों से तो ये सभी कुछ आज हमारे साथ होगा रिदम एंड रोमांस में लेकिन चलो रिदम एंड रोमांस आपके लिए शुरू करते हैं अभी
8: जज्बात की नरमी मोहब्बत के राज
3: विस्पर्स ऑफ इश्क
11: वेलकम एवरीवन रिदम एंड रोमांस हम लेकर आते हैं नाइट कैफे में जिसमें बहुत सारे रोमांटिक और प्यारे गाने होते हैं बैक टू बैक सॉन्ग सुनाने का टाइम आ चुका है और सारे के सारे रोमांटिक सॉन्ग्स मैं लेकर आया हूँ इस फर्स्ट हाफ आवर में 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूज़िक आप सुने और आप बहुत ही इन्जॉय करेंगे तेरे बिना अधूरा सा लगता हूँ मैं तेरे बिना अधूरा सा लगता हूँ मैं जैसे बिना सांस के कोई गीत हूँ मैं तेरी मुस्कुराहट मेरी दुनिया बन गई तेरी मुस्कुराहट मेरी दुनिया बन गई तू मिली तो हर कमी पूरी बन गई मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और ऐसे प्यारे शेर व शायरी हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए फिलहाल 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक आपको सुनाते हैं

0: You're listening to Krish.
1: Let's go.
2: नाइट कैफे रिदम एंड रोमांस आपके लिए जारी है. बैक टू बैक सॉन्ग्स आपने सुना और कुछ प्यार भरी बातें भी आपके लिए हम लेकर आए. कुछ सवाल भी है जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप हमें ज़रूर बताएं. लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता है और कुछ लोगों को शायद ये नहीं जमता है क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर सामने हो तो ही बेहतर है, या आउट ऑफ साइट हो तो आउट ऑफ माइंड भी होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है. तो क्या आपको क्या लगता है कि दूर रहकर प्यार कितना स्ट्रांग होता है, या क्या प्यार दूर रहकर किया जा सकता है, और कितनी दूरी बर्दाश्त है, कितनी देर तक दूरी बर्दाश्त है, ये भी शायद एक और बात है. आप हमें ज़रूर बताएं अपना टेक ऑन दिस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स पर, और हमें जानना है कि आप क्या सोचते हैं. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. बहुत कुछ होने को है, इस पर भी जानकारी मैं आपको दूंगा, और खुद शेर व शायरी भी आपके लिए मैं बहुत ही जल्दी शामिल करूंगा. इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे. थर्सडे नाइट कैफे रिदम एंड रोमांस जारी है क्रिश के साथ.

0: Cafe on Hum.
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
4: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
3: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja,
0: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
1: Weekdays 6 to 10 AM.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz.
1: Night Cafe on Hum. Jazbaat ki narmi, mohabbat ki raaz.
0: Whispers of Ishq.
1: Aapka moment, Krish ka magic. Only on Hum.
4: You're listening to your number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, एक एक करके आपके लिए फेवरेट गाने वो भी लेकर आते रहेंगे। आपको बस हमें सुनते रहना है, हम के प्यारे गाने को एंजॉय करते रहना है। और विंटर के दौरान मेंटल वेलबींग के लिए कुछ टिप्स भी लाए हैं जो कल मैं आपको बता रहा था, वो कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ और इन्फॉर्मेशन रह गया है, वो भी शामिल करेंगे आपके लिए। तेरे बिना दिल को करार नहीं आता, तेरे बिना दिल को करार नहीं आता, हर पल बस तेरा ही ख्याल आता। तू जो मिले तो दुनिया मिल जाए, तू जो मिले तो दुनिया मिल जाए, वरना जीने का मज़ा नहीं आता। बहुत ही प्यारा ये शेर है, थैंक यू किसी ने हमारे पास भेजा है। तेरे ख्यालों में दिन गुजर जाता है, तेरे ख्यालों में दिन गुजर जाता है, तेरी बातों से दिल मुस्कुरा जाता है। तू हो पास तो सब कुछ अपना लगता है, तू हो पास तो सब कुछ अपना लगता है, वरना ये जहां भी सूना लगता है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं कुछ और प्यारे।

You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सामाजिक सूचनाएं भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे. 25th एनिवर्सरी ऑफ श्री राधा कृष्ण मंदिर के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका है. पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा यहाँ पर रहेंगे. ये जो इवेंट है श्री राधा कृष्ण मंदिर और ओकलैंड इंडियन एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है. 5 to 11 June के बीच ये होगा और महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर आप जा सकते हैं. 145 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस ओकलैंड आपको पहुंच जाना है. और सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है.

पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: whispers of Ishq.
1: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
2: रिदम एंड रोमांस आपके लिए जारी है. वेलकम बैक एवरीवन. नाइट कैफे में रोमांटिक ये सेगमेंट आपके लिए होता है राइट टिल मिडनाइट. ये चलता रहेगा आपका. फर्स्ट आवर में बहुत सारे रोमांटिक गानों को मैंने आपको सुनाया. सेकेंड आवर में भी आपका स्वागत है और इसमें भी रोमांटिक गाने ही होंगे. फर्स्ट आवर पर मैंने आपसे पूछा था अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. इस घंटे पर एक और सवाल लेकर आएंगे आपके लिए. इंटरेस्टिंग जो बातें हैं प्यार से लेकर टूटे हुए दिल को लेकर ब्रेकअप्स को लेकर या फिर लव एट फर्स्ट साइट हो या फर्स्ट क्रश स्टोरीज हो कन्फेसिंग लव हो या मॉडर्न डेटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल लव. ये सभी कुछ हम आपसे बातें करने जा रहे हैं जैसे ही समय हमें मिलता है. लेकिन इस घंटे पर भी एक और सवाल आपके लिए लेकर आएंगे. एक और टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए. कुछ बैक टू बैक सॉन्ग्स मैं लेकर आया हूँ. अमेजिंग लिस्ट ऑफ लव सॉन्ग्स ये है. इस बार आप सुने और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा. एंजॉय एवरीवन.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: उम्मीद करता हूँ कि 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा. अभी बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में. फर्स्ट आवर मैंने आपसे पूछा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, दूर रहकर कितना प्यार स्ट्रांग होता है, या प्यार निभा लेते हैं आप, या फिर ये टूट जाता है जल्दी. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या मायने रखता है. अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ब्रेकअप्स एंड हीलिंग के बारे में, टूटे हुए दिल को कैसे आप संभालते हो. आई एम श्योर बहुत कुछ हम सीखते हैं ब्रेकअप के बाद. अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता होगा, क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस से हम और स्ट्रांग होते हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखते भी है. तो आपने क्या सीखा है आप हमें जरूर बताएं कि ब्रेकअप और हीलिंग के दौरान क्या आपने सीखा है, अपने टूटे हुए दिल को कैसे संभाला है आपने. अगर आप एक ऐसा फेज से अभी जा रहे हैं तो आवर लव इज़ विद यू. बहुत बेस्ट विशेज आपको दे रहे हैं कि बहुत ही जल्दी इस फेज से आप बाहर भी निकल आए, लेकिन आई एम श्योर आप बहुत कुछ सीखेंगे भी इस दौरान. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. कुछ और रोमांटिक गाने आपके लिए शामिल करने जा रहे हैं, आप इन्जॉय करें. और शेर व शायरी तो आपके लिए हम शामिल करते रहेंगे, कुछ सामाजिक सूचनाएं हैं वो भी आपके लिए हम पेश करेंगे.

0: चाहे आप हम की दिनचर्या 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: डू यू नो व्हाई सो मेनी ऑफ योर नेबर्स आर इंस्टॉलिंग अ शावर डोम शावर टॉप? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
2: Showerdome.co.nz.
3: We've got your ticket to relax in paradise with the Islands on sale now with Air New Zealand. Create unforgettable memories. Hurry, sale ends midnight 4 June. Travel periods and conditions apply. Book now at Air New Zealand or with your preferred travel agent.
4: Night Cafe on Hum. Jazbaat ki narmi, mohabbat ki raaz.
5: Whispers of Ishq.
4: Aapka moment, Krish ka magic. Only on Hum.
6: Unfiltered Drive के बारे में तो आपने सुना होगा, रिज़्बे और सैंडी के साथ बहुत ही वंडरफुल इंटरव्यू होते हैं अलग लोगों के साथ. WWE में क्या होता है, क्या ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है या रियल फाइटिंग है, इस पर कुछ बातें होंगी. और इनका इंटरव्यू हुआ है WWE के फॉर्मर सुपरस्टार शंकी सिंह, एक 7-foot-tall रेसलर है ये, और हु मेड इट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन ऑफ हरियाणा टू ग्लोबल WWE स्टेज. कुछ ऐसी बातें यहाँ पर होगी जो आप सुनना चाहेंगे. द ट्रूथ अबाउट WWE, क्या वो स्क्रिप्टेड है एंड व्हाट्स रियल. ब्रूटल जर्नी ऑफ गेटिंग इनटू WWE फ्रॉम इंडिया. लाइफ बिहाइंड द सीन्स एट द परफॉर्मेंस सेंटर. रिस्क, इंजरीज और फिजिकल टोल ऑफ एंटरटेनमेंट रेसलिंग. साथ ही में इनका टाइम विद सलमान खान जब इन्होंने फिल्म भारत में काम किया इनके साथ में, और अनटोल्ड स्टोरीज़ और लॉकर रूम रियलिटीज़ और थिंग्स जो फैंस को कभी पता नहीं चलता है. इनका ट्रेनिंग अंडर द ग्रेट खाली ये कैसा रहा, टू परफॉर्मिंग ऑन ग्लोबल स्टेजेस, इस पर भी बातें होंगी. तो आप टेक्स्ट करते हैं ड्राइव 5599 पर तो ऑडियो और वीडियो एपिसोड के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा. ये वीडियो प्रोडक्शन हो रहा है बाय इंस्पायर मीडिया, बाय इंस्पायर मीडिया वर्क्स, जो मार्केटिंग, रियल एस्टेट और इवेंट वीडियोस करते हैं. आप केतन से बातें कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स. कुछ देर में ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट पर बातें करेंगे आपके लिए. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jacob.

0: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
1: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
0: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 or search PFSL T&Cs lending and credit criteria apply.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है
2: moisture और ventilation का problem लगता है
3: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है
2: oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं
4: contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111 Reliance Ventilation Systems solving ventilation problems for over 18 years.
5: They call me

0: Powers through Mass with Morning Fresh.
1: Bunnings lowest prices? Nailed.
2: Grab 30 seconds 1 litre mould off just $7.90. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
6: Time check. Hum News brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. China is doubling down over its travel bans on 4 New Zealand MPs. A cross-party group visited Taiwan and is now barred from entering China. Foreign Minister Winston Peters has expressed concern, claiming the visit was not inconsistent with their long-standing policy. Pressure's being put on the government to spend more wisely on infrastructure. A report estimates the country has lost almost $12 billion due to pausing, cancelling or delaying building projects. A number of heavy rain watches and warnings kicking in across the North Island overnight. Taranaki, north of Eltham, is set to be among the worst hit, with up to 30 mils an hour expected tomorrow. In sport, Kiwi golf star Dame Lydia Ko on the cusp of becoming the highest ever money earner in LPGA history. A strong finish at the US Open starting overnight would put her top of the list. And rugby league with Machinery House just underway, week 14 of the NRL. Another chance to see the difference Kieran Foran is making at Manly. The Sea Eagles have won 7 out of 9 under Foran, and they're hosting the Rabbitohs.
6: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
8: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Night Cafe. Just baat ki narmi, mohabbat ki raaz.
8: Whispers of Ishq.
6: Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
9: You're listening to number one, humbling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. रात 12 तक हमारा साथ रहेगा. नाइट कैफे रिदम एंड रोमांस भी जारी है आपके लिए. रोमांटिक सॉन्ग्स एक के बाद एक और आपका साथ हमें मिल रहा है. थैंक यू सो मच. कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं अबाउट द सॉन्ग सेलेक्शन. थैंक यू सो मच. एक एक करके ऐसे ही गाने आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है सुनने में. ऐसे ही गाने आपके लिए शामिल करेंगे. मोहब्बत लफ्ज़ों में बयां नहीं होती, मोहब्बत लफ्ज़ों में बयां नहीं होती, ये तो आँखों से भी छुप नहीं पाती. तू समझ ले मेरी खामोशी को, तू समझ ले मेरी खामोशी को, ये तो सच्ची मोहब्बत कहलाती. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. और भी ऐसे शेर व शायरी ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपके साथ शेयर करने के लिए. हमारा जो सवाल है आपसे या फिर आपके कमेंट्स, हमें ज़रूर आप बताना कि आप क्या सोचते हैं कि ब्रेकअप्स और साथ ही में हीलिंग के दौरान आप क्या सीखते हैं, या फिर कैसे आप टूटे हुए दिल को संभालते हो. क्या कुछ सीखा है इस दौरान, आप हमें ज़रूर बताओ ताकि हमें भी पता चले कि आप ने कैसे डील किया है और क्या सलाह मशवरा आपके तरफ से भी मिलता है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. बैक टू बैक सॉन्ग्स आपको सुनाने जा रहा हूँ. इस बार प्यारे प्यारे गाने मैं लेकर आया हूँ. आपको बस सुनना है और एंजॉय करना है.

रिदम एंड रोमांस जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। इंटरेस्टिंग खबरें भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। विंटर के दौरान किस तरह से आप अपने मेंटल हेल्थ को बनाए रख सकते हैं, इस पर भी जानकारी। स्टे सोशली कनेक्टेड, विंटर के दौरान आइसोलेशन भी होने की संभावना है, विच कैन लीड टू लोअर मूड। आप स्मॉल एफर्ट्स भी डाल सकते हैं टू स्टे इन टच, जैसे टेक्स्ट कॉल्स या फिर शॉर्ट मीटअप्स भी ज़रूरी है। ओवर कॉफ़ी, वार्म कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी के दौरान आप मिले तो और मज़ा आता है। आई मीन आई समटाइम्स प्रेफर डूइंग दैट एज वेल। यू डोंट नीड लॉन्ग सोशल इवेंट्स, ब्रीफ इंटरेक्शंस भी हेल्प कर सकता है। अगर मोटिवेशन कम हो तो सोशल कॉन्टेक्ट आप ज़रूर शेड्यूल करें इन एडवांस, ताकि इट इज़ ईजियर टू फॉलो थ्रू। ह्यूमन कनेक्शन एक मेजर बफा होता है अगेंस्ट सीजनल लो मूड, तो आप ये बरकरार रखें अपनी ज़िंदगी में। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, हमारा साथ रहेगा मिडनाइट तक। रिदम एंड रोमेंस जारी है और रोमांटिक गाने आपके लिए।

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

You're listening to number one humbling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सामाजिक सूचनाएं भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे. 25th एनिवर्सरी ऑफ श्री राधा कृष्ण मंदिर के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका है. पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा यहाँ पर रहेंगे. ये जो इवेंट है, श्री राधा कृष्ण मंदिर और ओकलैंड इंडियन एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है. 5 to 11 June के बीच ये होगा. और महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर आप जा सकते हैं. 145 न्यू नॉर्थ रोड, ईडन टेरेस, ओकलैंड आपको पहुंच जाना है. और सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है.

0: Cafe on Hum. Jazbaat ki narmi, mohabbat ki raaz.
1: Whispers of Ishq.
0: Aapka moment, Krish ka magic. Only on Hum.
2: Rhythm and Romance आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ आवर फाइनल आवर और आज आपके लिए इस घंटे पर भी रोमांटिक सॉन्ग्स आपके लिए रहेगा. काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, सामाजिक सूचना है, वो भी लेकर आएंगे. विंटर के दौरान मेंटल हेल्थ को कैसे बनाकर रखना, इस पर जानकारी. एक और टॉपिक पर हम बातें करेंगे प्यार को लेकर, और चाहे वो फर्स्ट क्रश हो या फिर लव एट फर्स्ट साइट हो, ये भी आपके लिए हम लेकर आएंगे आज. इस पर भी एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आपकी प्रतिक्रियाएं, कमेंट्स या फिर आपकी राय क्या है, वो हम जानना चाहेंगे. रिदम एंड रोमांस जारी है, मैं क्रिश आपको सुनाने जा रहा हूँ 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक. प्यारे प्यारे सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, फॉर यू टू एंजॉय. तो आप सुनते रहो, मिलते हैं इन गानों के बाद कुछ और बातों के साथ, क्रिश के साथ.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। सामाजिक सूचनाएं भी आप तक हम लेकर आते रहते हैं। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना है कि रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाउ में आयोजित किया गया है 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ। ये 13 जून को होने जा रहा है। सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है और प्रोग्राम की शुरुआत होगी सुबह 7 से लेकर 8 बजे। स्थापना पूजा होगी, फिर 8 AM to 6:30 PM चालीसा पाठ होगा विभिन्न मंडलियों द्वारा। हवन और आरती भी यहाँ पर होगी, प्रसाद और महाप्रसाद की भी प्रबंध की गई है यहाँ पर आपके लिए, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और भी जानकारी के लिए 021-0299-1219 पर आप संपर्क कर पाएंगे। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: कैफे ऑन हम। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फिजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
5: Save karo Mitre 10 Mega Westgate or Henderson mein with 25% off Pink Stuff Cleaning or Novu Wire Wardrobes or 50% off Selected Sistema. Plus spend $20, enter online and go in the draw to win $5,000. Ends June 30th, T's and C's apply. Slime.

0: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways travel deals are on now. Fly to Fiji from just $329 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations, like Canada from just $999 one way, Japan from $685, Hong Kong from $739, Samoa from $305, or Vanuatu from $365 one way. Book now at FijiAirways.com or call your local travel agent. Conditions apply.
1: Night Cafe on Hum. Jazbaat ki narmi, mohabbat ki raaz.
2: Whispers of Ishq.
3: You're listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. और विंटर के दौरान किस तरह से आप अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं मेंटल हेल्थ वाइज. वार्म बैलेंस्ड मील्स भी बहुत ही ज़रूरी होता है बॉडी और माइंड के लिए. प्रोटीन, एग्स, लेग्यूम्स और फिश आप इंक्लूड करें. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ओट्स, होल ग्रेन्स भी यूज़ करें अपने डाइट में. हेल्थी फिश जैसे नट्स, ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल करें. इससे स्टेबल एनर्जी और ब्रेन फंक्शन मेंटेन रहेगा. हेवली ऑन शुगर पर रिलाय ना करें. अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स पर भी ना रिलाय करें क्योंकि इससे एनर्जी क्रैशेज होने की संभावना है. और हाइड्रेटेड रहे जितना आप हो सकते हैं ड्यूरिंग विंटर. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ रहेगा ऑल द वे टिल मिडनाइट. कुछ ही देर तक और हम आपका साथ देंगे. तू दूर है फिर भी पास लगता है. हर सपना तेरा ही खास लगता है. दिल करता है तुझे देखते ही रहूं. दिल करता है तुझे देखते ही रहूं. तू ही मेरी जिंदगी का एहसास लगता है. एक और प्यारा गाना आपके नाम.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. हमारी मुलाकात अब होती है वीकेंड में, सैटरडे ब्रेकफास्ट शो लेकर मैं आ जाऊंगा आपके लिए. तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखें, क्रिश का बहुत सारा प्यार, गुड नाइट एवरीवन.

0: Mumbai's biggest hits.
1: मैं पहले कभी इतनी खुश नहीं रही, ना ही इतनी कंफ्यूज्ड। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। मैं जा रही हूँ, कहाँ पता नहीं, लौट कर आऊंगी पता नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।

0: Night Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दूसरी तो
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927 88 600.

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था।

0: $70,000 चाहिए थे, बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
2: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
3: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: Wow.

0: के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड।

अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
6: Media Works complaints. How can I help?
7: My kids won't shut up.
6: I'm not sure that's our problem.
7: They keep reciting lines from one of your radio ads.
6: Aww, cute.
7: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
8: What do you want, son?
9: I want me some of that real southern chicken.
7: 28 times.
6: So where are you now?
7: Eating chicken.
10: Advertise with
11: Media Works.
10: New Zealand listens to us.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का

0: कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
1: सेव करो माइटन मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन में विद 25% ऑफ पिंक स्टफ क्लीनिंग और नोवू वायर वार्डरोब्स और 50% ऑफ सिलेक्टेड सिस्टम प्लस स्पेंड $20 एंटर ऑनलाइन एंड गो इन द ड्रॉ टू विन 5 grand एंड June 30th T's and C's apply.
2: Snooze and save at the Beds RS Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds RS Manikau and Pukekohe, where dreams begin.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari good brands nahi hai.

0: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: हाँ। अच्छा
0: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह।
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन.co.nz। Night Fly.

0: भीड़भाड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: हम आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Night Flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
2: क्यों? क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.

0: शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: Moisture और ventilation का problem लगता है।
5: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: on the breakfast show with Vijay and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain, shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
7: Bunnings Barbecues will be firing up across the country for a National Sausage Sizzle fundraiser for Motor Neuron Disease Action Month on Saturday, June the 6th. All funds raised go to MND NZ for research and support for people living with MND. So come join us to show your support at your local Bunnings.
8: MediaWorks complaints. How can I help?
9: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
8: Thank you.
9: It's all I can think about.
8: What does it sound like?
9: Yeah, I'd rather not.
8: Go on, why don't you have a crack?
9: Okay, got a plumbing problem.
8: Oh, I need a bit more than that.
9: They've got your back.
8: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
9: Oh, okay.
10: There's no better plumber to give it a crack.
8: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
9: No, I want a plumber.
11: Advertise with
12: MediaWorks.
11: New Zealand listens to us.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, आज 20 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 13 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। बारिश के आसार हैं ऑलमोस्ट पूरे दिन, पर आज आफ्टरनून के बाद तो काफी तेज बारिश भी हो सकती है। 5:13 पे होगा आज का सनसेट, लेकिन 7:26 पे होगा सनराइज।

0: कैच अप।
1: किरण नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बोला आपका स्वागत करते हैं आज के इस ब्रेकफास्ट शो में, ब्रेकफास्ट कैच अप। जी हां, मेरा नाम केतन है और यस इट्स अ बिट ऑफ सरप्राइज। आई नो आज विजय पूजा नहीं है, दे विल लेट यू नो व्हाट इज द रीजन, बट यस मुझे बोला गया आने के लिए, सो आई एम हियर। काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे होम कमिंग जैसी फीलिंग आ रही है। कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पे करीबन दो हफ्तों के लिए मैं लाइव गया था सुबह वाले शो में, एंड द टाइम व्हेन विजय पूजा वाज इन इंडिया, दे वर ट्रैवलिंग ओवर देयर एंड आई वाज हैविंग गुड टाइम ओवर हियर। आई एक्चुअली हैव यू नो ऑलवेज हैव अ गुड टाइम ड्यूरिंग लंच टाइम एज वेल, बट ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेकफास्ट शो में अलग ही बात होती है। सो यस जस्ट लेट यू नो मैं अभी से लेके 10 बजे तक हूँ यहाँ पे, एंड देन आई विल बी डूइंग द लंच बॉक्स शो एज वेल। सो यस आज मैं अभी से लेके करीबन 3 बजे तक शो करने वाला हूँ। इन बिटवीन ऑफ कोर्स कशिका जी भी आएंगी बिटवीन 10 to 12, पर अभी के लिए एंजॉय करेंगे बहुत ही खूबसूरत गाना शेर खुल गए बैरी दयाल और शिल्पा राव की आवाज़ में। यस जस्ट लेट यू नो मैं क्या करता हूँ। सो यूजली इन केस अगर आपने मुझे नहीं सुना हो तो मैं मंडे टू फ्राइडे लंच बॉक्स शो करता हूँ फ्रॉम 12 to 3, एंड बाकी तो साइड में बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, बट ये साहब बने रहिए। ये गाना शेर खुल गए और मिलते हैं एक अपडेट के बारे में कि भाई इस साल में आपके लिए क्या क्या मैं लेके आऊँगा, क्या क्या ख़ास चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो यस आप बस कनेक्टेड रहिए और सुनते रहिए इस खूबसूरत ब्रेकफास्ट शो को।

0: Sunnyside Up.
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑकलैंड. मेरा नाम केतन है, आपका स्वागत करता हूँ ब्रेकफास्ट शो में. मेरा नाम केतन है, यस यस यस, ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा नहीं, आज ब्रेकफास्ट शो विद केतन होने वाला है अंटिल 10 ऑफ कोर्स. और फिर उसके बाद लंच बॉक्स शो में भी आप मेरी आवाज सुनेंगे बिटवीन 12 to 3. आवाज बहुत ही बढ़िया लग रही है सी. वैसे आप मुझे बताइए मेरी आवाज कैसी लग रही है आपको, एकदम भारी भारी लग रही होगी ना. हेलो व्हाट्सअप, एकदम जैसे अमिताभ बच्चन नहीं बात करता. हाय कितने आदमी थे, नहीं यार वो तो कोई और है, वो अमिताभ बच्चन नहीं थे, वो तो अमिताभ बच्चन उसमें विक्टिम थे. आज मेरे पास क्या है, हाय पता नहीं भाई क्या क्या है मेरे पास. एनीवेज, इस आर में आपके लिए क्या स्पेशल लेके आने वाले हैं. सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट खबर बताऊंगा रिगार्डिंग क्यों ट्रेन आखिरी मिनट पे रुकी है. इस बारे में आपको मैं लेटेस्ट खबर बताऊंगा थोड़ी देर में. उसके बाद बॉलीवुड से एक खबर लेके आया हूँ जहाँ पे क्या लगता है आपको ललित मोदी पे कौन ऐसा सुपरस्टार है या फिर न्यू कमर है जो एक्ट करने वाला है, यानी कि बोले तो उन पे बायोपिक अगर बनेगी तो कौन एक्ट करेगा. आप मुझे 5599 में बताइए, जवाब देखिए कौन सा एक्टर विल सूट या फिर विल परफॉर्म वेरी वेल ऑन ललित मोदी. जस्ट लेट यू नो ललित मोदी कौन है. ये वो हैं जिन्होंने आईपीएल का एक तरह से वो फादर भी कहते हैं, यानी कि जिसने इंट्रोड्यूस किया था आईपीएल, वो है आईपीएल बोले तो इंडियन प्रीमियर लीग जो अभी जस्ट फिनिश हुआ है, जिसे विराट कोहली की टीम ने जीता है दूसरा टाइटल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. यस उसके बारे में बात होगी, बट उससे पहले आप मुझे जवाब दे सकते हैं. और आज के दिन क्या ओपन हुआ था, ऑकलैंड का एक बहुत ही बढ़िया बैंक जो है वो ओपन हुआ था आज के दिन. तो ये कौन सा बैंक है, अगेन व्हाट इज द गेसेस, आप मुझे 5599 पे बता सकते हैं. बट स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग टू मी आज के इस ब्रेकफास्ट शो में विद केतन.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
2: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ.

0: या बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
2: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
3: दादी के हाथ की चूड़ी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.

0: You already share a group chat, now you can share a discount too. Get 50% off Spark group plans for 6 months when you sign up to an eligible pay monthly leader plan. New Spark Mobile customers only. T's and C's apply.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global Headlines.
4: वेल ग्लोबल हेडलाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत है। अभी जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि ऑकलैंड की रेल नेटवर्क में एक सीरियस नियर मिस इंसिडेंट की रिपोर्ट सामने आई है, जहां एक ट्रेन को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर रोकना पड़ा था, वरना एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इंसिडेंट तब हुआ जब ट्रेन ट्रैक पर एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन डेवलप हुई और ड्राइवर ने इमरजेंसी एक्शन लेते हुए ट्रेन को टाइम पर स्टॉप कर दिया। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि एक्सीडेंट सिर्फ सेकेंड्स और मीटर्स के डिफरेंस से हुआ था। That's scary. Well, investigators ने इस इवेंट को इम्पोर्टेंट और सेफ्टी वार्निंग माना है और रेलवे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कम्युनिकेशन सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का रिव्यू भी किया गया है। रेल सेफ्टी अथॉरिटीज का कहना है कि नियर मिस इंसिडेंट को बहुत सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि ये फ्यूचर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए वैल्यूएबल लेसन्स प्रोवाइड करते हैं। और रिपोर्ट्स ने ये भी हाईलाइट किया है कि सेफ्टी सिस्टम्स ने अल्टीमेटली काम किया है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिन्हें इम्प्रूव करने की रिकमेंडेशन दी गई है, ताकि फ्यूचर में सिमिलर सिचुएशन ना बने। जी हाँ, अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो यस, ऑकलैंड में एक ट्रेन एक्सीडेंट होने से सिर्फ कुछ पल पहले बच गए। ड्राइवर और सेफ्टी प्रोसीजर की वजह से ट्रेन टाइम पर रुक गई, लेकिन रिपोर्ट्स ने रेलवे सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत बताई। एक रिमाइंडर भी, जब भी लेवल क्रॉसिंग पर हो, सिग्नल और बैरियर्स को इग्नोर ना करें। रेल सेफ्टी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वेल यस, ये बहुत ही स्कैरी है, बहुत ही बड़ी बात भी है, सोचने वाली भी और ध्यान देने वाली भी, बिकॉज काफ़ी ऐसी जगह है यहाँ पे जो मैंने पर्सनली देखा है दैट जो क्रॉस ओवर होता है, व्हेन यू क्रॉस द रोड एंड ऑल, पीपल डोंट रियली लुक ऑन साइड्स एंड दे सिंपली जस्ट कीप ड्राइविंग। उनकी ड्राइविंग कभी कभी स्लो होती है, कभी कभी देखा मैंने स्लो भी नहीं होती है। सो दैट इज रियली स्कैरी, दैट कैन बी रियली स्कैरी एंड काफ़ी सीरियस इंसिडेंट भी हो सकता है। तो वहाँ पे जब भी आप जाएँ, मेक श्योर करें कि थोड़ा सा आप जो स्पीड है उसको स्लो करें और इधर उधर देखें कि सिग्नल इज ऑल ओके टू गो टू क्रॉस और नॉट, और हर एक चीज़ का ध्यान रखें, उसके बाद ही आगे जाए, क्योंकि आप खुद की लाइफ ही नहीं बल्कि औरों की भी लाइफ को आप रिस्क में डाल सकते हैं। सो यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता रही थी, बट आप बस बने रहिए, बिकॉज अभी लोकल न्यूज़ के बाद वो बात बताऊंगा। जल्दी से आप फ़ोन उठाइए, 5599 पे मुझे भेज दीजिए कि ललित मोदी के ऊपर अगर कोई बायोपिक बनेगी, जो सचमुच यू नेवर नो, हमें उनकी स्टोरी भी काफ़ी मालामाल वीकली तो है ही है, लेकिन साथ में कुछ चटपटी भी है खबरें। अभी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ भी आई थी दैट उन्होंने बताया था कि उन्होंने कंफर्म किया कि सुष्मिता सेन जो थी, एक एक्स बॉलीवुड एक्ट्रेस, आजकल नहीं फिल्में नहीं आती तो इसलिए मैंने एक्स बोला है, अगर कल को आ जाएगी फिर से मैं तो एक्स हटा दूंगा, बट यस वो एक्ट्रेस रह चुकी हैं और कुछ मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड ऐसा कुछ कंपटीशन भी जीती है। वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड एक्चुअली, और काफ़ी बुली भी हुआ है कि शी इज़ लाइक अ गोल्ड डिगर और समथिंग लाइक दैट, बट उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला है कि मैं उनके पैसे पे पलता था, यानी कि ललित मोदी ने कहा है कि मैं सुष्मिता सेन के पैसों पे पलता था। सो माई पॉइंट ओवर हियर इज, आप मुझे 5599 पे बताइए कि अगर उनके ऊपर बायोपिक बनती है तो कौन सा बॉलीवुड का सुपरस्टार विल परफेक्टली सूट या फिर परफेक्टली एक्ट, जो जस्टिस है वो भी करेगा। मेरे जहन में तो आंसर मुझे पता है, आप मुझे 5599 पे जल्दी से भेज दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया मुझे। यार उठाओ फोन, जल्दी से भेज दीजिए, मुझे लंच बॉक्स में ज़्यादा आते हैं इससे, अभी तक तो 4-5 आ चुके होते हैं। सो यस, विजय पूजा के चाहने वालों, जल्दी से फोन उठाइए और मुझे भेज दीजिए 5599 पे।
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
5: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आऊं,
6: मैं लाऊं अपना ए गेम।
2: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: वेलकम बैक, स्वागत करते हैं आपका आज का इस ब्रेकफास्ट शो में। वेल यस, लेट्स टॉक अबाउट बॉलीवुड की खबर, जहां से आप जानेंगे कि ललित मोदी, आप वैसे काफी मैसेज आए, थैंक यू उसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, मेजॉरिटी लोगों के जो मैसेज आए हैं वो यही कहते हैं कि ललित मोदी पे जो एक्ट कर सकते हैं, एक्चुअली मैं अभी बताऊंगा, बट फॉर्मर आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने कंफर्म किया है कि उनकी लाइफ पर बेस्ड बायोपिक ऑफिशियली डेवलपमेंट में है और फिलहाल प्रोजेक्ट स्क्रिप्टिंग और रिसर्च स्टेज में है, जहां राइटर्स और रिसर्चर्स उनकी लाइफ और आईपीएल जर्नी पर डिटेल्ड वर्क कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग रिवलेशन ये आ रहा है कि बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने खुद उन्हें अप्रोच किया है और रिपोर्टेडली लंदन जाकर उनसे मुलाकात भी की है। ललित मोदी के मुताबिक रणवीर ने उनसे कहा है कि अगर उन्हें किसी एक रियल लाइफ पर्सनालिटी का रोल करना है तो वो ललित मोदी का कैरेक्टर प्ले करना पसंद करेंगे। मोदी ने रणवीर की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ की है और कहा कि वो उन्हें स्क्रीन पर अपना रोल निभाते हुए देखना चाहेंगे। वैसे हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि रणवीर का स्केड्यूल और काफ़ी करियर जो है बिजी है, इसीलिए फाइनल कास्टिंग को लेकर अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। बायोपिक के बारे में अभी डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस या ऑफिशियल कास्ट अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन अगर फिल्म बनती है तो इसमें आईपीएल के क्रिएशन, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रोवर्सीज और ललित मोदी की ड्रामेटिक राइज एंड फॉल जर्नी को देखा जा सकता है। गॉट बी एक्साइटिंग, राइट? वैसे मुझे बताइए कितने लोग यहाँ पे हैं जो इनकी फिल्म देखना चाहेंगे जब कोई आगे। वैसे मैंने अपना जवाब नहीं बताया ना, लाइक मुझे कौन है, मुझे एक्चुअली पता है, लगता है कि ऑब्वियसली देखो रणवीर अभी बड़ा नाम बन चुका है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट आर माधवन वुड सूट परफेक्ट टू प्ले द रोल। आर माधवन इसलिए भी बिकॉज उनका जो यू नो फेशियल जो स्ट्रक्चर है, लाइक पूरा राउंड शेप है, तो वो भी काफ़ी मिलता जुलता है ललित मोदी से, ऑफकोर्स यू नो अलग फीचर से, लेकिन येस एक्टिंग के मामले में यू ऑल नो दैट क्या कमाल किया है। एक्चुअली आर माधवन हैज़ ऑलवेज बीन अंडर रेटेड एक्टर, काफ़ी फिल्में देख लो, एक से बढ़कर एक फिल्म, जिसमें से अभी लेटेस्ट जो आपने देखी है धुरंधर, दोनों पार्ट में क्या एक्टिंग करी है, राइट? बट यस, आप बने रहिए, हम और भी चटपटी खबरें लेके आएंगे अभी इस आर में। बताऊं क्या चीज लेके आऊंगा, बताए? वेल, अभी मैं लेके आ रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड के बारे में, यानी कि आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था न्यूजीलैंड की कहानी में।
1: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
2: ए, देखो हम आ गए।
3: Accurate traffic.
4: Switch to AMI car insurance.
5: It's cloudy and windy with a high of 20, and the drive times are not too bad on the motorways at the moment. 20 minutes on the northern from Constellation Drive to the city, 36 from Silverdale. On the northwestern, 22 from Massey. It's busy out of Massey and near Te Aratu. The southern, 25 from Monaco and 42 from Drury. It's slow near Manurewa and through Penrose.
4: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
6: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
7: Kyun? Kya hua?
6: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
3: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424. Save karo Mitre 10 Mega Westgate or Henderson mein with 25% off Pink Stuff Cleaning or Novu Wire Wardrobes or 50% off Selected Sistema. Plus spend $20, enter online and go in the draw to win 5 grand. Ends June 30th, T's and C's apply.
8: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
7: Breakfast Catch-Up.
0: क्या आप जानेंगे आज के दिन? Well, yes, 5 जून 1847 यानी कि 1847 को ऑकलैंड की फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो शुरुआत हो चुकी थी। ऑकलैंड सेविंग बैंक यानी कि ASB, उन्होंने ऑफिशियली अपने डोर खोले। वैसे आज जिस बैंक को हम ASB के नाम से जानते हैं उनकी शुरुआत इसी दिन हुई थी, यानी कि आज के दिन 1847। वाओ, मेरे को पता नहीं था यार ASB के फुल फॉर्म ऑकलैंड सेविंग बैंक है। वाओ, यहाँ पे बताइए कितने लोगों को पता है ऑकलैंड सेविंग बैंक का जो नाम, ये नाम कितनों को पता था यहाँ पे। वेल, उस वक्त ऑकलैंड का पहला बैंक द न्यूजीलैंड बैंकिंग कंपनी 2 साल पहले बंद हो चुका था, इसीलिए ऑकलैंड सेविंग बैंक की एस्टेब्लिशमेंट को सिटी की ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। बाकी की बैंक की इंफॉर्मेशन गवर्नर जॉर्ज ग्रे ने इंकरेजमेंट हुई थी, जिनका मानना था कि ये वर्किंग क्लास सेटलर्स और माओरी कम्युनिटीज को सेविंग्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की तरफ इंकरेज करेगा। शुरुआत बहुत सिंपल थी, बैंक हर सैटरडे इवनिंग सिर्फ 1 घंटे के लिए डिपॉजिट रिसीव करता था और पहला रिकॉर्डेड डिपॉजिट था $10 का। साल के एंड तक सिर्फ 21 अकाउंट होल्डर थे, 14 पाकिहा और साउथ माओरी, जिनका कंबाइंड सेविंग्स करीबन 166 यानी 166 डॉलर से थोड़ा सा ज्यादा था। Damn, that's, वो तब के टाइम पे इतना तो यार, दैट इज काइंड ऑफ अ रिच यार, रिच। 1848 से डिपॉजिटर्स को 5% इंटरेस्ट भी मिलना शुरू हो गया था और अगले डेकेड्स में ऑकलैंड सेविंग बैंक यानी कि ASB स्टेडली ग्रो करता रहा। ऑकलैंड के कमर्शियल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट हिस्सा भी बन चुका था। इसके फाउंडर में ऑकलैंड के कुछ प्रोमिनेंट बिजनेसमैन भी शामिल थे, जिनमें जॉन लोगन कैंपबेल का नाम भी आता है। वाओ, दैट इज सो कूल यार। उसके बाद आज ASB न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा बैंक में से एक है, सबसे बड़े बैंक एक्चुअली, लेकिन उनकी जर्नी है एक छोटे सेविंग्स इंस्टीट्यूशन के रूप में क्वीन स्ट्रीट पर शुरू हुई थी, जहां लोग अपनी मेहनत की कमाई को सेफ रखने के लिए आया करते थे। वैसे यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका अकाउंट इस बैंक में है? 12 5 double as a number.

0: बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। वेले गाना इसलिए भी मुझे फेवरेट लगता है, ऑफ कोर्स गदर 2 का तो है, और खास बात यह है कि उसमें जिसने एक्ट किया है वो वही छोटा सा नन्ना सा लड़का है जो गदर फर्स्ट पार्ट में भी था, सनी देओल और अमिशा पटेल। यस, अमिशा पटेल। सो इनका जो बेटा का जो रोल किया है छोटा सा, और नहीं नहीं वो तो भगत सिंह हो गया, हाँ बट यस एनीवेज वो जो छोटा लड़का है उसी ने रोल किया है गदर 2 में भी, और इस गाने में जो एक्ट किया है वो वही सेम लड़का है। क्या टाइम फ्लाई ना, राइट। उसके बाद ऑफकोर्स मुझे पता पड़ा ये तो इन्होंने काफ़ी ऐसे फिल्म किए, एक कोई था जो शायद शहर में आता है गांव से, पंडित जी वो पढ़ते हैं और उन्होंने भी बात बताई, वो भी अच्छी एक्टिंग थी, बहुत अच्छा एक्टर है यार ये। एनीवेज अभी बॉलीवुड की बातें हो रही है तो एक सवाल आपसे किया जाएगा, मैं यहाँ पे एक ऑडियो प्ले करने वाला हूँ, उस ऑडियो को प्ले सुन के आपको मुझे बताना है कि कौन से फिल्म का है और ये कन्वर्सेशन कौन बोल रहा है और किससे बात हो रही है। सो यस, आप मुझे बताइए। वैसे यस, आर यू गाइस रेडी? देयर यू गो, पहले वॉल्यूम कम कर देता हूँ गाने की।
1: सब ये सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है, मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू।
0: वाह वाह वाह, सो यस, ये आपने डायलॉग सुन लिया है। एक काम करता हूँ, एक बार फिर से इसको प्ले करता हूँ, जस्ट फॉर यू, जस्ट फॉर माय लिसनर, जो ये सुन के बता दें कि ये गाना सॉरी ये जो डायलॉग है कौन से फिल्म का है और किसके बीच कन्वर्सेशन हो रही है। देयर यू गो।
1: सब ये सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है, मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, कि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू।
0: सो यस, नाउ आप फोन उठाइए और मुझे 5599 पे भेज दीजिए किसका जवाब जो है वो क्या होगा, कौन सी फिल्म का है और किसके बीच ये कन्वर्सेशन चल रही है, ये भी आप मुझे फटाफट से 5599 पे अपने नाम के साथ भेज दीजिए।
2: Mornings made better.
3: Two frienda, char toast, butter jam aur ek special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Driving you home. Drive. The Drive Show with Sandy and Rusby.
0: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला,
5: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत तो
5: आए आए बताओगे यार।
4: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Hum, accurate traffic.
7: Would you trade in your house?
8: Good morning. Cloudy and windy with a high of 20 today. On the northern, it's 20 minutes from Constellation Drive to the city, 36 from Silverdale. On the northwestern, 22 minutes from Massey. It's busy near Te Aritu. On the southern, 25 from Manukau and 42 from Drury. And on the southwestern, traffic is starting to build at Puanui Road.
7: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information.
9: Fuel ke daam roz badh rahe hain aur smart drivers ab switch kar rahe hain. Future hai efficient driving ka aur Vecity Omoda Jeku ke saath ye shift aur bhi easy ho jata hai. Introducing the powerful J7 Super Hybrid System. Performance bhi, efficiency bhi aur all electric J5 EV. Zero emissions, maximum savings. आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट westcityautogroup.nz और सर्च फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
10: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
11: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
10: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
11: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
12: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune.

Well, it's, जो एक सवाल किया था थोड़ी देर पहले, एक डायलॉग आपको सुनाया था मैंने कि ये कौन सी फिल्म का है. बेसिकली वो कन्वर्सेशन हो रही है बिटवीन रणदीप हुड्डा एंड सलमान खान. जी हाँ, मुझे मैसेजेस आए हैं. एक ने लिखा है कंगना के साथ हो रही है. नहीं, कंगना नहीं, ये सुल्तान मूवी का डायलॉग है. रणदीप हुड्डा बहुत ही बढ़िया ये डायलॉग बोलते, कब बोलते मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे याद नहीं फिल्म एग्जैक्टली, बट ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है ये ताला लगाते हुए, लाइक होता ना एक जाली होती है, जाले पे बहुत सारे ताले जो है वो लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे ताला लगाते हुए हो सकता कोई अचीवमेंट इन्होंने अचीव किया कर दिया हो, उस वजह से ये ताला लगा रहे हो. सलमान खान लगा रहा होता तब ये डायलॉग बोलता है कि मैं सुल्तान असली उसी को मानता हूँ जो हारता है, बिकॉज उसे ही अहमियत पता होती है जीत की. वेल यस, दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू. बट यस, द करेक्ट आंसर इज बिटवीन रणदीप हुड्डा एंड सलमान खान फ्रॉम सुल्तान मूवी. जी हाँ, वैसे यस, और भी बातें करनी है. एक जो मम वाली बातें हैं एक पोस्टमार्टम की, तो उसकी भी एक एक झलक ले लेते हैं फटाफट से. काफ़ी सारे तरीके से लिखा गया है इसे भी. सो यस, बेबी का जन्म के बाद मूड स्विंग होना, रोना, एंग्जाइटी और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फील करना काफ़ी कॉमन है. इसे अक्सर ब्लू बेबी ब्लूज कहा जाता है. ये इसलिए भी रिलेटेबल है मेरे लिए बिकॉज ऑफ कोर्स 6 महीने का हो चुका है मेरा छोटा, लाइक you know when I become father, so it's been 6 month. Yesterday was the 6th month we celebrated. Well yes, health expert ke mutabik lagbhag 70-80% new moms baby blues experience karte hain. Ye usually delivery ke kuch din baad shuru hota hai aur 1-2 hafton mein khud theek ho jata hai. Iska main reason hormonal changes, sleep deprivation aur life mein achanak aaye bade changes mein hota hai. लेकिन अक्सर sadness, hopelessness, guilt, anxiety या daily life handle करने में काफ़ी difficulty होती है हफ्तों तक, और ज़्यादा swear भी हो जाएगा. वैसे ये postpartum depression, PPD भी कहा जा सकता है इसे, और वो उसे भी कह सकते हैं. ये एक serious mental health condition है जिसे professional support और treatment की ज़रूरत हो सकती है. वेल, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वार्निंग साइन में शामिल हो कर सकते हैं अगर आपका कॉन्स्टेंट लो मूड है, या फिर बेबी से बॉन्ड फील करने में डिफिकल्टी हो रही है, एक्सेसिव एंग्जाइटी या पैनिक मोड में रहते हैं, इंटरेस्ट लॉस इन नॉर्मल एक्टिविटीज, सिवियर एग्जॉशन बियॉन्ड नॉर्मल टायर्डनेस, थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म या हार्मिंग द बेबी. ये सारी चीज़ें टॉप पे बताई जा रही है जहाँ पे could be the reason that you are going through such situation if you are about to or you already been to this situation, so you can relate this. And yes, साथ में डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि postpartum depression weakness नहीं है और ये किसी भी new parents को affect कर सकता है. Early support, counseling और treatment से recovery के chances काफी अच्छी होती है. Well yes, ये था एक लाइफ का सेगमेंट जहाँ पे आई थॉट मे बी आई शेयर विथ यू गाइस. बट एक और मैसेज आया है अजय देवगन, निलेशनी ने लिखा है. अजय देवगन नहीं, वो तो मैंने जैसे आपको जवाब दिया था कि वो सलमान खान और रणदीप हुड्डा के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है वाइल सलमान खान वॉज लॉकिंग समथिंग. उनका जो लॉक है जिस पर सुल्तान लिखा हुआ भी है लॉक पे, और वो लॉक कर रहे हैं किसी जाली पे जहां पे ऑलरेडी काफी लॉक लगे हुए थे. सो यस, सो दैट इज द फिल्म सुल्तान, और कन्वर्सेशन हो रही है बिटवीन रणदीप हुड्डा एंड सलमान खान. वेल, इट्स टाइम टू हैव सम कॉफी. 7 भी बजने वाले हैं. आर यू अवेक और स्टिल ऑन द बेड? आप बस सुने रहिए, और अगर ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो डू लेट मी नो ब्रेकफास्ट में क्या स्पेशल होने वाला है आज आपके. मैं भी स्पेशल लेके आया हूँ, बट ऑफ कोर्स कल का खाना है, कल का लेफ्ट ओवर खाना है. इतना जल्दी मैं ना तो मेरे को खुद बनाने आता है, अभी छोटा मोटा बना लेता हूँ बट इतनी हालत नहीं थी, यूजली मैं मॉर्निंग शो करता नहीं, और साथ में ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब खुशबू एज वेल. सो मैं कल का ही लेफ्ट ओवर ले आया हूँ जो अभी थोड़ी देर में करूँगा, लेकिन अभी के लिए आई फील लाइक आई नीड कॉफ़ी यार, एंड आई थिंक यू गाइज नीड टू बी राइट. आप भी जाइए एंड देन गेट सम कॉफ़ी. आई मीन लाइक इफ यू आर एट होम प्रिपेयर सम कॉफ़ी फॉर यू, नाइस कॉफ़ी. एंड अगर आपके पास मशीन, इफ़ यू आर आउट यू कैन बाय द कॉफ़ी एंड एन्जॉय विथ मी. सो यस, आप बस बने रहिए, थोड़ी देर में ये गाना सुनिए, रब्बा मेरा रब्बा सोनू निगम की आवाज़ में.

0: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
1: Put a bloody important meeting in your calendar right now. This National Blood Donor Week, give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz to see if you can donate and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
2: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
3: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
2: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
4: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।

छह बजे से हूँ और रहने वाला हूँ 10 बजे तक। बहुत सारी बातें होने वाली, बहुत अमेजिंग अमेजिंग मॉर्निंग गाने भी चलने वाले हैं, कुछ चटपटी खबरें भी देने वाले हैं। ऑफकोर्स फर्स्ट स्टार हैज बीन रियली रियली ग्रेट एंड थैंक यू अगेन फॉर सेंडिंग ऑल द मैसेजेस। इस स्टार में भी काफी चटपटी खबरें आपके लिए आने वाली है, जैसे कि राशि आपके लिए थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। साथ में आप फट से मुझे 5599 पे ग्रीटिंग्स बर्थडे विशेज अगर आपको करने हैं किसी को तो वो भी भेजना शुरू कर दीजिए, ताकि इस हार में हम वो भी मैं विशेष दे सकूं। कुछ हेडलाइंस भी दूंगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको पता पड़ेगा कि लेटेस्ट क्या चल रहा है देश दुनिया में, और साथ में ऑफकोर्स कुछ अपडेट और भी आपके जहन में मैं डालता रहूंगा। बट यस, सभी के लिए एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना लोथिका एंड सुभलाषिनी की आवाज में, किसिक।

0: राशि वाइब्स।
1: राशि वाइब में आपका स्वागत है, जहाँ पे मैं पढ़ूंगा फटफट राशि आज के। वेल यस, मेष में कहा गया, एरिस में कहा गया है कि काम पर फोकस रहेगा रखिए, करियर में प्रोग्रेस के चांसेस हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचे, फाइनेंशियल मैटर्स में प्रैक्टिकल डिसीजंस फायदेमंद हो सकती है। ऋषभ टॉरस में कहा गया है टाइम मैनेजमेंट आज आपका स्ट्रांग पॉइंट रहेगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा संबंध समय बीत सकता है। मिथुन जिमिनी आज किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को थोड़ा सोच समझ कर कीजिए, करियर और फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी नजर आ रही है। कैंसर ने नई अपॉर्चुनिटीज और फ्रेश बिगनिंग्स के संकेत हैं, कॉन्फिडेंस जो है उसे बनाए रखिए और अपनी इंट्यूशन जो है उस पर भरोसा रखिए। सिंह लियो आज पेशेंस जरूर रखें, हर बात में जल्दी करने की बजाय प्लानिंग से काम लीजिए। कन्या वर्गो करियर में नए ऑप्शंस मिल सकते हैं, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन से फायदा हो सकता है। तुला लिब्रा मेंटल क्लैरिटी और पॉजिटिव एनर्जी का दिन है, पुराने कंफ्यूजन दूर हो सकते हैं। वृश्चिक स्कॉर्पियो इन्वेस्टमेंट और मनी मैटर्स में एक्सपर्ट एडवाइस लेना बेहतर रहेगा, इमोशनल बैलेंस बनाए रखिए। धनु स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, अच्छी कन्वर्सेशंस और नए आइडियाज आपको मोटिवेट करेंगे। मकर कैप्रिकॉन आज का दिन सुबह माना जा रहा है, शुभ माना जा रहा है, फाइनेंशियल गेन्स और गुड न्यूज के योग बन रहे हैं। कुंभ एक्वेरियस ऑफिस एनवायरनमेंट सपोर्टिव रहेगा, एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन आपकी डायरेक्शन बदल सकता है। मीन खर्चों पर नजर रखिए और हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, सेल्फ केयर आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी।
0: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
3: 80s ke retro gaane.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन socials.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
3: मुझे भी
2: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
4: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
5: Shower dome.
6: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now. With up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
7: Roadside drug testing is here. New Zealand Police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drug driving.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune.

0: वेलकम बैक। वेल यस, यहाँ पे मैं एक ऑडियो क्लिप चलाने वाला हूँ जिसे आप सुनिए और मुझे बताइए कि कौन से एक्ट्रेस की या एक्टर की आवाज है, उसे सुनेगा एंड देयर यू गो।
1: You know, when you first start your career, and it's like, and especially my job, there's no consistency in my job. You don't know when your next check is coming. You don't know, you know, you got to kind of think about the practical side of that. So you run all the time, you're hustling. And then I think, you know, you kind of reach a point where you have a little bit of credibility so you can stand and take some time. And that's where I've reached now, where I have a work-life balance, which is very important to me. 7:30, 7 o'clock, I'm done from work. I like to have a couple of hours with my family. I like to wake up early with my
0: ये थी आवाज एक ऐसे एक्ट्रेस की एक्टर की। आप मुझे जल्दी से बताइए 5599 किसकी आवाज है ये। आवाज सुन के ऑब्वियसली आपको पता पड़ जाएगा ये एक्ट्रेस ही है। बट यस, शी इज फ्रॉम बॉलीवुड एंड ऑफ कोर्स जस्ट टू गिव यू एन हिंट, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ दैट शी हैज बीन द टॉप एक्ट्रेस लिस्टर। अभी नहीं, पहले, अभी तो मेरे ख्याल से इन्होंने बॉलीवुड ही छोड़ दिया है। बट यस, वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस एज वेल, बहुत ही अच्छी एक्टिंग लगती है मुझे। इनफैक्ट इनकी एक फिल्म है जो मेरे फेवरेट एक्टर ने भी एक्ट किया है टुगेदर, एंड सडनली शी गॉट डिसअपीयर फॉर काइंड ऑफ अ रूमर्स। व्हाट रूमर्स दोज कुड बी, हैव नो आइडिया एक्चुअली। कुछ लिंकअप हो रहे थे इनके, शायद अफेयर हो रहे थे वन ऑफ द सुपरस्टार के साथ, ये सारी खबरें आ रही थी। तो यस, इसका जवाब जो है जल्दी से मुझे 5599 भेज दीजिए। I can see that people have start sending the correct answer. Well, अगर आपने नहीं भेजा है तो आप भी मुझे भेजिए 5599 पे सही आंसर के साथ और अपने नाम के साथ। ये नाम लिखेंगे तो भी पता पड़ेगा ना कि भाई हम किससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। There you go.
2: Bollywood's most wanted.
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
4: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: चलिए लेटेस्ट न्यूज हेडलाइन की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड हमारे प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन आज ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल विजिट पर हैं, जहां उनकी एनुअल बायलेटरल मीटिंग हो रही है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज के साथ। इस मीटिंग में मेन फोकस होगा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना, जिसमें ट्रेड, डिफेंस, कॉपरेशन, माइग्रेशन पॉलिसीज और रीजनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं। दोनों लीडर्स रेगुलर एनुअल मीटिंग के थ्रू अपने कंट्रीज के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज को अपडेट करते हैं, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में ग्लोबल ग्रोइंग चैलेंजेस को देखते हुए। वैसे इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बार टॉक में कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर, सप्लाई चेन स्टेबिलिटी और पैसिफिक रीजन में कॉपरेशन को लेकर भी डिटेल डिस्कशन एक्सपेक्ट की गई है। पर यस, सिंपल अगर शब्दों में कहूं तो ये मीटिंग दोनों कंट्रीज के बीच एक रूटीन बट वेरी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक चेक इन है, जिससे पॉलिसीज अलाइन होती है और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी स्ट्रांग होती है। सो यस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपने क्लोजेस्ट अलायंस को और डीपन कर रहे हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल स्टेबिलिटी दोनों इंश्योर हो सके। वेल यस, ये थी आज की पॉलिटिकल हेडलाइंस जो अभी लेटेस्ट आई है। बट यस, आप बने रहिए, और भी खबरें आएगी थोड़ी थोड़ी देर में। बट यस, द फोन लाइन इज स्टिल ऑन, आप जल्दी से मुझे 5599 पे ग्रीटिंग्स के लिए मैसेजेस भेज सकते हैं। इफ यू वुड लव टू विश एनीवन आज के बर्थडे के लिए, डजंट हैव टू बी देम इन न्यूजीलैंड, इट कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई भाई है, बहन है या बेटे हैं जो यहाँ नहीं, बाहर पढ़ने गए हैं, इफ यू वांट टू विश देम एज वेल, ऑफ कोर्स डू फील फ्री, आप मुझे 5599 पे डिटेल भेज दीजिए ताकि हम नेक्स्ट सेगमेंट पे उनको कर सके विश।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
2: ए देखो हम आ गए।
0: Accurate traffic.
3: The LifeWise Trust Big Sleep Out. Please donate now.
4: Good morning. Heading for a high of 20 with a cloudy and windy day ahead. On the northern, it's 21 from Constellation Drive, 36 from Silverdale, very slow at Derry Flat and Oniwa. On the northwestern, 28 from Massey with congested patches to just after St. Luke's. On the southern, 34 from Manukau. On the southwestern, busy patches citybound between Puanui and Mangere.
3: Support Auckland's homeless by donating at bigsleepout.org.nz.
5: Professional by ninjas has saath aapke. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।

0: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
1: This is a message on preparing for earthquakes from the Natural Hazards Commission.
2: Whoa!
3: Whoa!
4: Whoa!
3: Whoa!
1: When it comes to earthquakes, a bit of prep can make a big difference. Things like securing tall or heavy furniture or making your risky chimney safer can turn a
2: whoa
1: into a whoa. Don't wait for the whoa. Protect your whānau. Search QuakeSafe Your Place to learn more.
5: Rebel Sport has winter sorted. Layer up with deals on puffers, jackets, sweats and fleece, built to keep you warm when the temperature drops. Plus, global football fever is kicking off. Grab your fan gear and get game day ready. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
6: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile Aussie style. That doesn't mean saying, yeah, nah, hey, go on, flyman galah. It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mum without having to call your accountant first. Right now, get a 180GB yearly prepaid plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than $21. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
7: Playing Bollywood's biggest hits.
8: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
8: Birthday greetings.
10: Iska birthday bhai?
11: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
10: Happy birthday to you.
12: Well, आज कुछ बर्थडे ग्रीटिंग्स आई हैं, उन्हें विश कर लेते हैं. सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, जस्ट वांट टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू निलेश सिंह. लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम डॉटर सहाना, सन सोहेल एंड वाइफ शबाना. आल्सो विशेस फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड फ्रॉम फीजी एंड अब्रॉड. चीयर्स. वेल, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए. और भी मैसेज आते हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं. प्रनील चंद, उनकी वाइफ ने मैसेज किया है, हैप्पी बर्थडे टू माय डियरेस्ट हस्बैंड प्रनील चंद. ही इज सेलिब्रेटिंग हिज 41th बर्थडे. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द टेक्स्ट हियर. भेरू, उनका भी आज मैसेज है, हैप्पी बर्थडे टू यू टू एज वेल. हरी सिंह रनावत, इनका भी आज बर्थडे है. आप भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मनाइए. एंड साथ में कमलेश का भी आज, कमलेश प्रनील, उनका भी आज बर्थडे है. और सो यस, दैट्स ऑल द मैसेज फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस. आप अपना बर्थडे जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाएं. ऑल द विशेस फ्रॉम हम टीम एंड ऑफकोर्स जिन्होंने मैसेज किए थे उनकी तरफ से भी, एंड ऑफकोर्स एंटायर लिसनर की तरफ से भी, आप सभी को तहे दिल से जन्मदिन की मुबारक. एंजॉय दिस सॉन्ग.

0: Beautiful song, beautiful song. KK और Dominic Cerejo, I am in love, ये गाना गाया है. Amazing singer यार, amazing singer. That's the only thing which I will be definitely going to miss, क्योंकि मैं बाकी सारे celebrities से मिल जाऊं, but KK से मिलना अब कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ऑफकोर्स ये 2022 को हमें हमारा साथ जो है छोड़ के चले गए वाइल्ड परफॉर्मिंग, जो सिर्फ 53 ईयर्स ओल्ड के ही थे. या अभी इन्होंने फोर्थ डेथ एनिवर्सरी भी अभी मनाई है 31 मई को, यानी कि 5-6 दिन पहले ही उन्होंने बनाया था. एक हाई परफॉर्मेंस, हाई एनर्जी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे. लाइव कॉन्सर्ट था एक नजरुल मंचा ऑडिटोरियम यहाँ पे, और कह रहे थे कि लोग कि शायद एग्जॉस्ट नहीं था, कोई वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं था, और हीट इतनी ज़्यादा थी, एसी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. उस वजह से इनकी जो ब्लड जो थी, हार्ट बीट्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एंड देन ऑन द वे ओनली ही पास्ड अवे. सैड न्यूज़ ऑफ कोर्स, बट यस, लेट्स गो एंड चेक आउट दैट जो मैंने आपको बताया था. एक ऑडियो क्लिप मैंने आपको भेजी थी, एंड ऑफकोर्स सभी ने सही पकड़ा. जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की उनकी आवाज थी. जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा जॉनस, जो ऑफ कोर्स नॉट, शी डजंट लिव इन इंडिया, बट शी विल बी डूइंग द अंदर पार्ट ऑफ सीक्वल ऑफ क्रैश 4. जी हाँ, जो जल्द आने वाली है, जल्द तो पता नहीं लेकिन आने वाली है, उसमें ये फिर से दिखेंगी. लेकिन यस, अपार्ट फ्रॉम दैट, शी इज मोस्टली वर्किंग ऑन हॉलीवुड फिल्म ओनली. और मैंने बताया था कि काफी कॉन्ट्रोवर्सी में आ गई, तो उसके बाद से इनका पत्ता जो है कट गया था बॉलीवुड से. सारे लिंक जो थे, सारे काम जो थे, वो कट गए थे, बिकॉज वन ऑफ द सुपरस्टार के साथ रूमर्स अफेयर के कनेक्शंस आ रहे थे. सो यस, इफ यू नो व्हाट आई मीन, आप मुझे बता सकते हैं कंफर्मेशन के लिए टेक्स्ट बेस के, कि वो कौन था सुपरस्टार जिनके साथ इनके साथ चल रहा है. बट यस, उनका जो एक्सेंट था काफी इंप्रूव हो चुका है. लुक एट उस एक्सेंट से मुझे याद है कि ये क्लिप भी आपके लिए चलाता हूं, एंड आप सुनिए और बताइए कि ये किसकी आवाज, ये कौन महाशय बात कर रहे हैं यहाँ पे. नॉट दिस वन, मैं पहले चला लेता हूँ, एंड देन हियर इट.
1: With the film as it's receiving not this one, not so the female, much acclaim
0: but the male
1: jo
0: bolega uske liye.
2: Shit, what, it can't get better than this. The West accepting us, America, the mecca of filmmaking, cinema, LA. Here we are, the Globes. What else can an actor ask for? What else can I ask for being a part of RRR? You know, truly honored, truly honored.
1: Audiences have been loving this movie.
0: Well, yes, ye aapne clip dekhi. Main khud shocked tha jab mere paas ye audio clip chali, and I was like, bro, really? Amazing, amazing. And he has been in the many, many films. Of course, aapne ek RRR film bhi dekhi hai. To bataiye, ye kaun hai? Ye aapne kiski awaaz suni hai? Aap mujhe 5599 pe bhej sakte hain. Let's see, yaar, kitne log sahi pakadte hain yahan pe. But yes, uske baad aapko ek latest kuch khabar bhi batata hun jo hamare paas recorded hai. So yes, stay tuned and keep sending love and text.
3: Mornings made better.
4: Do frienda, char toast, butter jam, aur ek special chai.
3: The breakfast show with Vijay and Pooja.
5: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
6: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना.
5: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं ब्रेकफास्ट शो विद केतन। वेल यस, एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया गया है एंड आप सभी के सामने भी आ चुका है एंड मैं पर्सनली भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने खुद ने ही उसे एडिट किया है। सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट यस, आप उसे देखिए, आई एम प्रीटी श्योर काफी लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो लेट मी रिमाइंड यू, अनफिल्टर्ड ड्राइव सैंडी हिरोज में एक WWE सुपरस्टार, फॉर्मर WWE सुपरस्टार शैंकी सिंह, उनका इंटरव्यू लिया है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मसालेदार। मसालेदार क्यों, वो मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। बट सबसे खास बात, जब ये आए थे यहाँ पे हमारे स्टूडियो में अंदर जाने के लिए, उन्हें मुंडी थोड़ी नीचे करके आना पड़ा। दैट मीन्स मतलब हमारा डोर 6.5 फिट का होगा या 6.5 फुट ऑन एन एवरेज आई गेस, बट वो 6.5 से भी ऊपर है, यानी कि 7 फुट लंबे आदमी है और हरियाणा के हैं, लेकिन उन्होंने ग्लोबल सेंसेशन बन चुके हैं। जी हाँ, WWE पे उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, काफ़ी मैचेस जीते हैं, उन्होंने काफ़ी इनसाइड स्टोरी भी बताई है। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि यार WWE सचमुच होता है या ये सिर्फ जैसे फॉर एग्जाम्पल काफ़ी आजकल रील्स इतने आने लग गए हैं दैट एक किक मारते हैं तो किक लगने से पहले ही आवाज़ आ जाती है, या फिर टच भी नहीं होता लेकिन सामने वाला एक्ट करता है। तो ये सारी बातें दिखाई है, उसके बारे में इन्होंने बताया कि क्या सचमुच WWE फाइट होती है या ये सब एक स्क्रिप्टेड होता है, ये सारी बातें बताई हैं। एंड अगेन वन मोर थिंग इज, उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया जिसमें से एक काफ़ी बड़ी फिल्म थी भारत। आपने डेफिनेटली अगर भारत मूवी देखी सलमान खान की तो उसमें आपने देखा होगा उन्हें, 7 फिट के इकलौते बंदे आपको दिख ही जाएंगे, छुप नहीं सकते, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू नोटिस दिस। उन्होंने भी काम किया और उन्होंने भी बहुत ही अच्छी बातें बताई है, एज एन इनसाइड स्टोरी बताई है अबाउट सलमान खान की, वो कैसे हैं, क्या करते हैं। एंड ऑफकोर्स उन्होंने जब पहली बार देखा था शैंकी सिंह को तो क्या बोला था, ये सारी बातें आप जान सकते हैं इस पॉडकास्ट में। एंड ऑफकोर्स उनका जो कनेक्शन और उनका रिलेशन कैसा है द ग्रेट खाली से, जो खुद एक 7'3" ऐसा कुछ है शायद उनकी हाइट, तो उनके साथ कैसा रिलेशन, आप वो भी देख सकते हैं। सो यस, फुल पॉडकास्ट के लिए आप हमें ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप तक ये लिंक पहुंच जाए। साथ में आप ऑफकोर्स एनी वीडियो प्रोडक्शन से काम हो तो रियल स्टेट हो या फिर इवेंट्स वीडियोस बनाने हो, मार्केटिंग वीडियोस बनाने हो, तो यू नो हु टू कॉन्टैक्ट, यू जस्ट गो ऑनलाइन इंस्पायर मीडिया वर्क्स इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं, मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिकॉज I do run this company, this is my company, so yeah, आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हैं। एंड साथ में विजय पूजा के बिट्स एंड कन्वर्जेशन सुनने के लिए भी आप हमें BF लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए। बट डोंट गो एनीवेयर बिकॉज वी हैव सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट इन द कमिंग थोड़ी देर में। कुछ ट्रेंडिंग सोशल मीडिया क्या चल रहा है वो बताएंगे, टॉपिक ऑफ द आवर भी आने वाला है उसके बारे में बात होगी। तो यस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो आज का मेरे साथ केतन के साथ।

देखा स्नीजिंग एकदम शुरू हो गई मेरे को एकदम अचानक से फॉर नो रीजन. बट यस, एक वीडियो मैं अगर बीच में अगर पॉज होता तो समझ लेना भाई. अगेन सॉरी, ऑफ कोर्स माइक ऑन करके मैं नहीं छींक सकता इसलिए आपको सुनाई दी. बट एनीवेज, एक वीडियो देखा है मैंने, यार इतना मेरे को पर्सनली डिस्गस्टिंग लग रहा है और वो इतना वायरल हो रहा है. उस वीडियो में बेसिकली एक बंदा जो काउ फीडर होता है, सॉरी काउ फॉडर, जो गाय खाती है खेतों में जो खिलाते हैं, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे क्या क्या रीज़न क्या होता है, बट वो इंसान वो बंदा खा रहा है वो काउ फॉडर एज ए पार्ट ऑफ रिचुअल प्रैक्टिस. हो सकता है ऑफकोर्स ये उनका प्रैक्टिस हो, बट काउ फॉडर खाया जा रहा है. कैन हाउ कैन समवन ईट दैट, मतलब आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगी, आपकी बॉडी उसकी नहीं बनी है. सो ये इतना सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे. इनफैक्ट यू वोंट बिलीव बट 21 मिलियन व्यूज हो चुके हैं इस वीडियो को. माई गॉड, माई गॉड. और काफ़ी ऑफकोर्स मिक्स रिएक्शन मिले हैं. कुछ लोगों ने सही किया है, बोले कि सेलिब्रेट किया है दैट यस यू डिड वेरी वेल. कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं. बट यस, उसमें काफ़ी कुछ होता है बिकॉज अगर हेल्थ वाइज के हिसाब से देखें तो इट इज़ नॉट एट ऑल गोना बी गुड फॉर यू, बिकॉज एनिमल फॉडर जो है वो फॉर्मुलेटेड एक लाइफ स्टॉक एंड मे नॉट बी प्रिपेयर्ड, जी हाँ, प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड उनके हिसाब से, जिसके अंदर काफ़ी रिस्क होता है एक्सपोजर ऑफ कंटेमिनेंट बैक्टीरिया फंगाई और सब्सटेंसेस नॉट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ये डेफिनेटली नॉट फॉर ह्यूमन है, ये लिखा हुआ भी है. ओनली माय हेल्थ एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, उन्होंने शेयर किया है इसे और बताया है. बट दिस इज डिस्गस्टिंग है. एनीवेज, आप बस बने रहिए, ये थी अभी की ट्रेंडिंग बातें. अभी थोड़ी देर में आपके लिए लेके आने वाला हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक, क्या होगा वो आप बस सुनिए इन दो गानों के बाद. ट्रेंड पेट्रोल.

खुल के जीने का अरिजीत सिंह और शीशा तिरुपति की आवाज में आपने गाना सुना है। वैसे गाना पुराना भी, उसका रीमेक हुआ है, राइट? वेल, आजकल रीमेक्स बहुत बन रहे हैं। व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट? काफी लोगों को पसंद आ रहे हैं, काफी लोगों को नहीं आ रहे हैं। अभी ये चिनरी चिनरी, उस पर भी एक नया रीमेक बना है। क्या लगता है आपको, वो गाना कैसा लगा आपको, नया वर्जन? मुझे ऑनेस्टली मेरा फीडबैक पता क्या है, आई नो सम पीपल विल लाइक द न्यू रीमेक और सम पीपल माइट नॉट लाइक द रीमेक। एंड ऑफकोर्स ये मेरा जज नहीं है, जजमेंटल नहीं है, मैं सिर्फ अपना रिव्यू बता रहा हूँ। दैट लोगों को ऑफेंसिव फील होना बंद करना चाहिए। Reason is that I have seen many people who share the song and they just create the hateness among the community ki bhai kyun gaane ko kharab kar diya ya kyun movie ko bigad diya. Jaise for example remake banti hai, remake mein kafi aise controversy bhi hoti hai that kyun it's such a purani original hi sahi hai. Mera call yahan pe ye hai ki yaar dekho, nayi film aayi hai ya naya gaana hai, usse ye nahi hua hai ki purana jo kaam hai wo delete ho chuka hai. That purana gaana is still there. तो ऑप्शन आपके पास है, वेदर यू वॉन्ट टू डू, वेदर यू वॉन्ट टू लिसन टू द न्यू वन और यू वॉन्ट टू लिसन टू द ओल्ड वन। नो वन इज यू नो फोर्सिंग यू और नो वन इज टेलिंग एनी वन कि आप नया गाना आया है या नया नई मूवी आई है उसी को ही सुनिए। सो यस, बीइंग अ म्यूजिक लवर, मैं ये बोलूंगा कि देखो बहुत हार्डवर्क करते हैं लोग, क्रिएट करते हैं न्यू जनरेशन के लिए। उनका जो टारगेट ऑडियंस होता है वो नए जनरेशन होता है। I could be wrong in many way, but yes, ये काफ़ी trending topics भी रहता है, आए दिन आता रहता है। इनफैक्ट चुनरी जो गाना है उसमें भी मैंने देखा है काफ़ी लोग कमेंट दे रहे हैं कि क्या सोच के इन्होंने इतना गाने को छेड़ा है, क्या सोच के। मेरा कॉल ये रहेगा दैट लेट देम डू वॉट दे वॉन्ट टू डू, इट इज़ अगेन योर ऑप्शन वेदर यू वॉन्ट टू लिसन टू द न्यू वन और द ओल्ड वन। सो इन शॉर्ट मैं बोलूँगा कि रिस्पेक्ट करिए, जो भी काम क्रिएट कर रहा है उसे रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार म्यूज़िक बनाने में। एक जस्ट गिव यू नॉप ऑप थोड़ी बता, हमारा एक ओरिजिनल गाना है, ऑफकोर्स थोड़े दिनों पहले आपने बेनाम्स सुना होगा। द बेनाम्स यहाँ पे आए थे और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था आखिरी दिन ऑफ द मे, जहाँ पे म्यूज़िक मंच चल रहा था। तो उन्होंने एक रिव्यू भी दिया था, उन्होंने कहा था कि हम एक ओरिजिनल गाना बना रहे हैं उसको 6 महीने लग रहे हैं, ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि हम खुद अगर जब तक सेटिस्फाइड नहीं है वी डोंट वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज। सो वंस वी आर हैप्पी देन वी विल शेयर यू। एंड अगेन आप सुनिएगा, आप रिव्यू देगा, मैनी पीपल विल लाइक इट, मे बी मैनी पीपल वॉन्ट लाइक इट, दैट इज अगेन अप टू यू, बट हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको एंटरटेन करने का। बट यस, टॉपिक ऑफ द डे थोड़ी देर में जो बात होने वाली है वो ये है, व्हाट्स द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव डन टू सेव मनी। ये मेरा आज का टॉपिक है, व्हाट्स द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव डन टू सेव मनी। आपने ऐसी कौन सी जरूरत की है कुछ पैसा बचाने की, वियर्डेस्ट? तो यस, आप मुझे 5599 पे टेक्स्ट भेजिए। लेकिन यस, थोड़ी देर में फोन लाइन भी शुरू करने वाला हूं जहां पे आप सब मुझे जवाब देंगे। सो यस, आप बस बने रहिए, छोटे से ब्रेक के बाद मैं लेके आता हूँ फोन लाइन ऑन और आप सभी मुझे कॉल करेंगे और बताएंगे। वैसे मीनवाइल आप मुझे टेक्स्ट भी करते हैं। वैसे एक एग्जांपल देता हूँ जस्ट इन केस अगर आप दिमाग लगा रहे हैं, तो जस्ट गिव यू अ हिंट कि जैसे मैंने एक बार वाटर बॉटल जो है उसे रीफिल किया एट वर्क फॉर लाइक 3 वीक्स स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ बाइंग ड्रिंक, फेल्ट लाइक फाइनेंशियल जीनियस। ये मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, आई नो इट्स कंप्लीटली अनहाइजेनिक, बट यस ये एक मैंने एग्जांपल दिया। तो आप मुझे बताइए कि भले छोटी सेविंग करी हो तो क्या करी है, आप मुझे बताइएगा। थोड़ी देर में फोन लाइन में ऑन करने वाला हूँ। ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है। Keep calm because Punjabi swag is on. Hey, hey, maje diye, moh batti hai, pehle dino tere utte akh rakhiye, tere bina area ch, aur kudi da, na dil mangiye te na hi time.

0: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
1: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 8।
5: Joe's Supermart uses fiber for their payment systems, while staff secretly use fiber to share funny videos like the one Perry uploaded of his dog skateboarding down a street that happens to have an ad from Chorus which says, New Zealand runs on fiber.
6: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
7: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
9: What's your take?
10: What's your take के सेगमेंट में आपका स्वागत है। फोन लाइन हो चुके हैं शुरू। फोन उठाइए और मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और बताइए, what is that one weirdest thing you have done to save money? It could be more, not just one, but it could be more. आप कॉल करिए 0800-004-866 पे और बताइए कि ऐसा क्या कारनामा आपने किया है टू सेव मनी। आई मीन जोक्स पार्ट, कौन सी ऐसी चीज आपके लिए भले छोटी बचत बट आपने डेफिनेटली की है। वेल यस, कुछ मैसेजेस आए हैं मीनवाइल, हमें कॉल आता है तब तक हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मैसेज आया गौरव का। गौरव कहते हैं, बॉट रिफर्बिश्ड आइटम्स रेगुलरली। दैट इज स्मार्ट मूव यार, दैट इज एक्चुअली स्मार्ट मूव। मैं भी खुद पर्सनली काफी रिफर्बिश्ड चीजें खरीदता हूँ। जहां मुझे लगता है दैट दोज रिफर्बिश्ड आर ओके टू बाय एंड नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक जो है सामान वो मैं डेफिनेटली ब्रांड न्यू ही खरीदता हूँ। आई डोंट ट्रस्ट द एक्स ओनर कि उन्होंने कैसे ध्यान रखा होगा, क्या किया होगा एटसेट्रा, बिकॉज मैं भुगत भोगी हूँ। काफ़ी नुकसान भी हुआ है मेरे को एक दो चीज़ें खरीदने पे। एक बार हुआ था मुझे कि मैंने आईफोन लिया था मैंने रिफर्बिश्ड, और ऑफकोर्स सोशल मीडिया से मैंने किया था, दैट इज़ नॉट गुड मूव एक्चुअली, मैं उससे सीखा हूँ। और वो लेने के बाद लिटरली आई लॉस द मनी बिकॉज एज सुन एज आई रीच्ड होम आफ्टर बाइंग दैट, वो फ़ोन चालू होना ही बंद हो गया। प्लस चालू तो होना बंद हुआ, वो जो बंदे ने बेचा मेरे को उसने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया। यही की कहानी है, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लेसन एज वेल। उसके बाद से मैंने कभी कुछ नहीं खरीदा है इलेक्ट्रॉनिक सामान में, सेकेंड हैंड या थर्ड हैंड या व्हाटएवर। आई ऑलवेज बिलीव इन बाइंग द ब्रांड न्यू। बट यस, और भी मैसेज आए हैं, बट यस मैसेज तो मैं पढ़ूंगा, बट कॉल करिए मुझे 0800-004-866 पे और बताइए कि क्या ऐसी वियर्डेस्ट थिंग आपने की है टू सेव द मनी। प्रिया कहती हैं पापाकुरा से, आई यूज्ड अरे गाना क्यों बंद हो गया भाई, गाना चलना चाहिए। एक इन्होंने ईट्स करके फ्री ट्रायल अकाउंट जो है उसे यूज किया, सो मेनी टाइम्स आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ हाउ मेनी फर्स्ट ऑर्डर आई हैव प्लेस्ड। ओ तो बेसिकली इन्होंने एक जो होता है ना जो डिलीवर करते हैं आपके घर पे, कुछ भी आप खरीदो एज एन ऑनलाइन ऐप में जाके ईट्स करके है वो आपके घर तक आते, तो उन्होंने फ्री अकाउंट से काफ़ी इन्होंने ऑर्डर किए हैं अलग अलग अकाउंट से कॉल करके। क्या बात है, वेरी वेरी स्मार्ट मोड। चलिए फोन आया है, फोन भी उठा लेते हैं। हेलो,
11: मॉर्निंग केतन जी, कैसे हैं?
10: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सपना जी?
11: बस सब ठीक है, सब ठीक है।
10: nice.
11: ऐसे तो इतना मतलब मैं हाउसवाइफ हूँ तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हस्बैंड इज होल एंड सोल, वो ही सब करते हैं।
10: राइट।
11: तो मैंने जैसे कुछ चीज मुझे चाहिए थी और उसके लिए मैंने सलून बंद कर दिया था अपना कि 2-3 months आई वोंट गो टू सलून और उसके बाद मैं वो चीज दूंगी. तो दैट इज लाइक सैक्रिफाइस फॉर मी.
10: तो ये तो मतलब आपके हस्बैंड तो अमीर बन गए होंगे. आपके हस्बैंड ने तारीफ करी कि यार इतना पैसा कैसे बच रहा है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने?
11: हाँ, वो बोले बोले फर्क पड़ा है बहुत.
10: क्या बात है. फिर डेफिनेटली उन्होंने कुछ तो ट्रीट दिया
11: होगा. उन्होंने वो चीज मुझे दिला दी. एंड देन ही सेड कि नहीं, नो नीड टू, तुम जाओ अपना सलून वलून जाना, तुम कंटिन्यू रखो, मन मत किया करो. आई थिंक वो डर गए होंगे मुझे देख के.
10: नहीं नहीं
11: मैं खुद पे जोक मार के खुद ही हंसती हूँ.
10: नहीं नहीं, अच्छी, ये एक्चुअली अच्छा टैलेंट है, होना भी चाहिए. आप किसी और पे मारो, उससे पहले खुद पे मार लो. दैट इज गुड गुड टेक. बट थैंक यू सो मच सपना, यू हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू, बाय बाय. हेलो, हाय परविंदर जी.
9: हेलो, कैसे हैं आप?
10: एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं?
9: मैं भी ठीक हूँ. अभी जैसे पिछले कॉलर ने बोला, मैं भी बहुत टाइम से सैलून नहीं गई हूँ क्योंकि $100 तो ऐसे निकल ही जाता है आराम से.
10: राइट,
9: मिनिमम. और उसके बाद मैं बहुत सालों से सोच रही हूँ कि मैं लेजर करवा लूँ.
10: राइट,
9: लेजर हेयर रिमूवर. क्योंकि मैं बहुत ऐसे मेडिसिन खाए हैं जिससे मेरा हार्मोनल इफेक्ट हुआ है और मेरी हेयर ग्रोथ बहुत हो गई है फेशियल. तो मैं बहुत सालों से सोचती हूँ मैं जाऊंगी पर जब मैं प्राइस सुनती हूँ कि इतना सेटिंग होगा तो आराम से 500 तक का खर्चा हो जाएगा, तो मैं एवरी ईयर वो प्लान पोस्टपोन कर देती हूँ. तो आई सेव 500.
10: वाओ, इतना खर्चा होता है? आई मीन ऑब्वियसली मैं कभी गया नहीं हूं, तो आई हैव नो आईडिया.
9: डिपेंड करता है कि कितने सिटिंग, बट मुझे बोला है कि अराउंड 10 सिटिंग्स तो मिनिमम देने पड़ेंगे. तो अगर $50 या $40 भी है तो देखो 400-500 तो यही हो गया.
10: राइट, दैट्स अ बिग मनी टू सेव यार. एक्चुअली गुड ऑन यू, गुड ऑन यू. बट थैंक यू.
9: शकल का भूत बना हुआ है
10: वो. एक्चुअली जैसा अभी पिछले कॉलर ने बताया ना, दैट जोक खुद पे ही मार लेने चाहिए. सो दैट इज गुड इनफ यार. But thank you so much, Parvinder ji, aapke call ke liye, and you also have a wonderful day.
9: Have a good day.
10: Yeah, you too. Bye. Well, ये थे दो कॉलर. आप भी कॉल करें, कोई लड़का नहीं यहाँ पे जो मुझे कॉल करेगा और बताएगा भाई उसने क्या सेव किया है, वो भी तो बताए. हेलो, गुड मॉर्निंग.
12: गुड मॉर्निंग केतन, कैसे हैं?
10: एकदम बढ़िया मंदीप जी, क्या हाल है आपके?
12: बहुत बढ़िया. तो सुबह सुबह उठ के अच्छा लग रहा है आज.
10: क्या बात है. थैंक यू. बताए क्या सेविंग्स आपने की है वियर्डेस्ट तरीके से?
12: भाई मैं तो कुछ खर्चता ही नहीं हूँ.
10: अच्छा?
12: बीवी और बच्चे हैं खर्चने के लिए. तो मैं ना शॉपिंग करता हूँ, ना मैं डाइन आउट करता हूँ. कभी बहुत ज्यादा तलब होती है डाइन आउट करने की तो बर्गर किंग से खुश हो जाता हूँ.
10: अरे वाह, क्या बात है.
12: जब बच्चे जाते हैं खर्चने के लिए बहुत सारा बैलेंस आउट हो जाता है, तो मैं उसी में खुश हो जाता हूँ.
10: बट एनीथिंग यू ट्राई टू कंट्रोल, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, ताकि यू नो, नो, वेट, ऐसा कुछ करते हो आप?
12: कोशिश होती है बट हो नहीं पाती भाई.
10: राइट.
12: तेरे तुम्हारे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं. अभी बेटा बड़ा होगा, फिर वाइफ शॉपिंग जाएगी साथ में, फिर नंबर 2 भी आएगा.
10: अभी तो डिमांड सिर्फ दूध की है, तो अभी तो सिर्फ डिमांड दूध की है, तो धीरे धीरे पता पड़ेगा.
12: नॉट वेरी फार ऑफ. तो डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती.
10: हो सकता है कल को विजय पूजा में मुझे ही कॉल करके पूछे भाई तुमने क्या वियर्ड थिंग करी है टू सेव मनी, तब मे भी हो सकता है मेरे पास आंसर.
12: प्रोबेबली.
10: बट कूल, थैंक यू सो मच मंदीप भाई आपके कॉल के लिए. यू ऑल्सो हैव अ वंडरफुल डे
12: एंड गुड टू हियर दिस मॉर्निंग टू एंड टू यू. बाय.
10: या, बाय बाय. वेल, थैंक यू सो मच. टाइम के चलते हम ज़्यादा कॉल तो नहीं ले पाएंगे. आई नो पीपल आर कॉलिंग मी, बट थैंक यू फॉर फ्यू मोर मैसेजेस. मैं उन्हें पढ़ूंगा थोड़ी देर में. तब तक एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना तुझको. बहुत ही प्यारा गाना है, वन ऑफ माई फेवरेट टुडे, अरिजीत सिंह और सुनिधि जी चौहान की आवाज में.
7: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
13: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ. मैं लाऊं अपना ए गेम.
7: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Welcome back. You are listening to Breakfast Show with Ketan. Well, चलिए जो एक सवाल किया था थोड़ी देर पहले कि what's the weirdest thing you have done to save money, उसमें कुछ मैसेजेस आए हैं, वो मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे. प्रिया का ये तो पढ़ लिया था मैंने. देव का पढ़ते हैं. I drove around with my fuel light on for 2 days just to delay filling up. Not my proudest moment. हैं? ओके वो जो ब्लिंक आता है कार के डैशबोर्ड में. ओह नाउ आई गॉट इट. मतलब वो चालू था उसके बावजूद उन्होंने 2 दिन तक गाड़ी चलाई टू डिले फिलिंग अप. वो तो डिपेंड करता है ना कितना आपने चलाई होगी. चलिए एक और कॉल आ रहा है. लेट्स टॉक टू देम एज वेल. हेलो
1: हेलो हेलो. गुड मॉर्निंग केतन.
0: गुड मॉर्निंग. किससे बात हो रही है?
1: गौरव दिस साइड.
0: हाय गौरव, बताइए.
1: तो वीरेस्ट थिंग तो यार मेरे को पता नहीं, वो एक वाइज डिसीजन था जब मैंने दिया था. मैंने एक्चुअली एक टीवी यूनिट खरीदा था, डिस्प्ले यूनिट.
0: राइट.
1: डिस्प्ले यूनिट तो पता है ना, जो शोरूम में बाहर लगा देते हैं.
0: हाँ.
1: तो मैंने खरीद लिया था बिकॉज वो मेरे को पड़ रहा था लाइक अबाउट 80% ऑफ पर.
0: 80%
1: तो मैंने वो खरीद लिया. यप, इन इंडिया. तो वो पड़ा था 75,000 का था, पर मेरे को पड़ा वो ऑलमोस्ट लाइक 23 समथिंग का और 21 का, मेरे को याद नहीं. पर हाँ, बहुत सस्ता था विद 6 मंथ वारंटी.
0: वाओ.
1: तो मैंने तब तो खरीद लिया कि भाई 6 महीने की वारंटी है. जनरली टीवी पे 1 साल की वारंटी मिलती थी, 6 महीने की तो मेरे को मिल ही रही है ऑलमोस्ट 20% पे सिर्फ. तो मैंने खरीद लिया और तब मैंने सोचा कि क्या ही होगा. लेकिन जब 6 महीने हो गए और उसके बाद शायद 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था और वो टीवी खराब.
0: वो
1: और जब मैं उसे रिपेयर करवाने के लिए गया था तो उसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ रही थी 45,000 समथिंग. उसकी स्क्रीन ही खराब हो गई थी.
0: तो मतलब वो 80% जो डिस्काउंट था वो डिस्प्ले भी डिस्काउंट के साथ ही मिला आपको.
1: हाँ. और फिर जब मैं रिपेयर पे गया, 45,000 का रिपेयर हो रहा था, फिर मैंने वो टीवी 3,000 में बेचा. इंडियन रुपीज में.
0: ये तो मतलब स्मार्ट मूव के चक्कर में आपका नुकसान और ज्यादा हो गया.
1: फिर तब से मैंने कान पकड़े भाई, डिस्प्ले यूनिट नहीं खरीदना.
0: हाँ. नहीं बट थैंक यू यार शेयरिंग शेयर करने के लिए. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मेरे को. इंटरेस्टिंग चीज लगी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया. बट कूल. थैंक यू गौरव आपके कॉल के लिए. एंड यू आल्सो हैव अ वंडरफुल डे. वंडरफुल डे. बाय. वेल यस, अभी फटाफट से और भी मैसेजेस पढ़ लेते हैं बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट राउंड. अंजलि कहती है, आई वेटेड फॉर वन ऑफ द सुपरमार्केट स्पेशल्स सो लॉन्ग आई फॉरगॉट दैट आई ओरिजिनली नीडेड. ये होता है मेरे साथ भी. आप इतना किसी चीज़ के लिए वेट करते हो कि आप भूल ही जाते हो भाई लेना क्या था. करण कहते हैं, टर्नड ऑफ वाईफाई एट होम टू अवॉइड डेटा यूसेज देन यूज्ड मोर मोबाइल डेटा इंस्टेड. ये तो फिर की हो गई. नेहा कहती हैं, एट इंस्टेंट नूडल्स फॉर वीक स्ट्रेट टू बजट बेटर. हाँ भाई वो ठीक है, बजट ठीक है भाई, हेल्थ का ध्यान रखो. नूडल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ फॉर दैट लॉन्ग. पता है ना मैदा पचने में टाइम लगता है. विक्रम कहते हैं, वॕकड 40 मिनट्स टू सेव $4 बस फेयर एंड रिग्रेटेड एवरी स्टेप्स. यार ये चीज़ तो सही है. लाइक यू नो, आप वॉक किए तो दैट इज गुड फॉर हेल्थ, राइट? आपने $4 तो चलो बचाए हैं, बट यू जस्ट इमेजिन यार आपकी हेल्थ कितनी इंप्रूव हो गई होगी. आई नो थकान हो गई होगी, बट 40 मिनट्स वॉक करना इज नॉट अ कप ऑफ टी नाउ डेज. श्रेया कहती है, आखिरी मैसेज है, स्प्लिट शैम्पू विद वाटर टू मेक इट लास्ट लॉन्गर. इट वॉज बेसिकली साइंस एट दैट पॉइंट. ये एक्चुअली अभी भी यूज होता है, अभी भी हम यूज करते हैं. इनफैक्ट मेरे घर पर अभी भी है. लाइक यू नो, विल जस्ट ड्रॉप अ लिटिल सोप एंड वी पुट द वॉटर अच्छी क्वांटिटी में, ताकि क्या वो अच्छे से यूज़ हो. बट सही है यार, लाइक हर इंसान ये वाला ट्रिक तो अपनाते ही है. बट थैंक यू अगेन ऑल द मैसेजेस जो आपने भेजे. आप बस बने रहिए, वी विल बी ब्रिंगिंग डेफिनेटली मोर अपडेट्स. बट अभी के लिए एंजॉय करो
2: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
3: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ.
4: हम Accurate traffic.
5: 15% off airport parking.
6: Good morning. Cloudy and windy with a high of 20 today. On the northern, it's 25 from Constellation Drive, 36 from Silverdale after an accident near Pine Valley Road and Dairy Flat Highway slowed things down. On the northwestern, it's 25 from Massey. On the southern, it's 35 from Monaco, 45 from Drury. On the southwestern, it's busy city bound at Puanui and it's 25 to the airport.
5: 15% off Auckland airport parking. Book now using promo code EARLYBIRD. Conditions apply.
7: TradeDepot.co.nz. Trade Depot now helps people in Auckland save hundreds on hardware. Double power points, $7. Clear silicone sealant, $4. Painter masking tape, $2. Stainless steel flexi hoses, $4. Save hundreds on hardware, tools, plumbing, electrical and paint supplies. Only at Trade Depot in Onehunga or shop online.
8: TradeDepot.co.nz. Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Cool. Getting to work? Easy. Coffee with friends? Just go. The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
9: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. 1 New Zealand. Let's get connected.
10: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
11: Nissan Big Deals ends June 22nd. Up to 5K savings and accessories on select new Navara models. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
2: Non-stop Bollywood.
12: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
2: हम playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
0: Well, yes, एक बहुत ही बढ़िया थिएटर एक्ट होने वाला है. इंडियन इंक थिएटर कंपनी आप सभी के लिए लेके आए हैं बलून डॉग, अवार्ड विनिंग परफॉर्मर, जिसमें जेकब राजन खुद एक्ट कर रहे हैं. एक्चुअली रिटन बाय जेकब राजन एंड जस्टिन लेविस, डायरेक्ट बाय जस्टिन लेविस. और आप ये MNZM रिटर्न ऑन द स्टेज फॉर द वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ बलून डॉग. बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन हुआ है, इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर के बीलव्ड स्टोरी काबुली वाला पे. Well, set in 21st century, the beautiful tender tale follows the unexpected friendship between 5 साल की बच्ची और lonely migrant worker. बहुत ही बढ़िया एक्ट है ये, बहुत ही बढ़िया, आपको डेफिनेटली देखना चाहिए ये. क्यू थिएटर इन ऑकलैंड 3 तारीख से शुरू हो चुका है, 20 जून तक ये चलने वाला है. आप जल्दी से वहाँ पे जाइए बाय बाइंग द टिकट. iticket.co.nz पे जाइए और टिकट खरीद लीजिए. एंड येस ऑफकोर्स, अगर डबल पास जीतना है तो आप मुझे अभी के अभी BD यानी कि बलून डॉग का इनिशियल है BD, उसे लिख के मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाए और जीत सकें एक डबल पास. वाह, आज के दिन एक्चुअली काफी कुछ होने वाला है. सो यस, जल्दी से मुझे भेज दीजिए.
14: लेट्स गो
2: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट.
14: 1 2 3 4

What a song, Sajida Vishal Mishra और अशीष कौर की आवाज में आपने गाना सुना है। बढ़िया से एक लेटेस्ट खबर आई है, लेटेस्ट अपडेट है कीवी सेवर मेंबर्स के मिस आउट होने की, यानी कि क्या वो चीज मिस कर रहे हैं। कीवी सेवर न्यूजीलैंड के रिटायरमेंट सेविंग स्कीम्स हैं, जिसमें एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये चीज़ काफ़ी लोगों को नहीं पता है, और गवर्नमेंट भी ईयरली कंट्रीब्यूशन देती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी मेंबर्स फुल बेनिफिट क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ मिस आउट कर रहे हैं लोग? वेल, मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर अटक जाना, काफ़ी लोग डिफॉल्ट 3 से 3.5% कंट्रीब्यूशन रेट पर ही रेट करते हैं, जबकि हायर कंट्रीब्यूशन से लॉन्ग टर्म सेविंग्स काफ़ी बढ़ सकती है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन लिमिट मिस होना, गवर्नमेंट को एनुअल टॉप अप लिमिटेड होना है, अगर लोग फुल कंट्रीब्यूशन नहीं करते तो फ्री मनी छूट जाता है। रॉन्ग फंड सिलेक्शन, बहुत लोग कंजर्वेटिव फंड्स में रह जाते हैं जहां रिटर्न स्लो होते हैं, स्पेशली यंग मेंबर्स की ग्रोथ फंड्स चूज करने का जो बेनिफिट होता है वो मिल सकता है। एंड आखिरी पॉइंट है अर्ली विड्रॉल इम्पैक्ट, फर्स्ट होम या हार्डशिप विड्रॉल से लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स का ग्रोथ जो है वो रिड्यूस भी हो जाता है। कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो कीवी सेवर न्यूजीलैंड का लार्जेस्ट रिटायरमेंट सेविंग पूल है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करते हैं और मिलियंस ऑफ मेंबर्स इसमें इनरोल होते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग स्कीम को सेट एंड फॉरगेट बना देते हैं, जबकि रेगुलर रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप करते हैं या नहीं? मैं तो डेफिनेटली करता हूँ कीवी सेवर को ऑलमोस्ट हर महीने एक बार चेक करने का।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: Beat fuel prices with AT.
3: Good morning. Heading for a high of 20. It's a cloudy and windy day on the northern. The run from Constellation Drive is taking 27 minutes to the city. 35 from Silverdale with an accident near Pine Valley Road and Dairy Flat Highway crossing, slowing things down. On the northwestern, 21 from Massey with congested patches from St Luke's. On the southern, it's 34 from Monaco.
2: Beat pump prices by taking public transport. Tag on with any smart card and go.
4: Save karo Mitre 10 Mega Westgate or Henderson May with 25% off pink stuff cleaning or Novu wire wardrobes or 50% off selected Sistema. Plus spend $20, enter online and go in the draw to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
5: At Bunnings, you can keep the cold air out for less with an adored fabric draft stopper, just $10.95. It doesn't cost a lot to winterproof your home. Shop online or in-store. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
6: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है। क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें। गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट auckland emergency management.govt.nz/floods।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, 19 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 13 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 100% चांस है बारिश के। आज सनसेट होगा 5:13 पे, लेकिन ये 16.4 mm हो सकती है। आफ्टरनून के बाद तो बहुत ही ज्यादा 40% थंडरस्टॉर्म भी है।
0: Breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune. What's going on?
1: क्या नमस्ते, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के ऑफकोर्स ब्रेकफास्ट शो में। मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुनेंगे 10 बजे, उसके बाद लंच बॉक्स शो में भी आप मुझे सुनेंगे। यानी कि आज के दिन तो यार मज़े ही मज़े, लाइक फुल ऑन हम बात करेंगे। बट यस, काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑफकोर्स एक वियर्ड थिंग जो है वो, उस पर थोड़ी बात करता हूँ मैं। एक रियल लाइफ बिज़ेर खबर ये है कि रशिया के कर्स्क रीजनल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने एक 50 साल के आदमी के दिमाग और आंख के पास से 5 इंच लंबा लकड़ी का टुकड़ा सेफली निकाल लिया है। ये अजीब जो किस्सा है वो इस तरह से हुआ कि 2024 में यूरी नाम के ये आदमी अपने गार्डन में काम कर रहे थे और उन्होंने कोई प्रोटेक्टिव आई गियर या आई वियर नहीं पहना था, और काम करते वक्त

तो उनकी जो लेफ्ट आंख में तेज दर्द हुआ, पर उसे लगा कि कोई छोटा मोटा टिंका लगा होगा, यानी कि हो सकता है किसी छोटे मोटे कीड़े ने काटा होगा या फिर एक हल्की सी जो होती है। दर्द जल्दी ठीक हो गया तो वो इस बात को बिल्कुल ही भूल गया। उन्हें कब पता पड़ा? हाल ही में जब उनकी आंखें की रोशनी कम होने लगी और दर्द बढ़ने लगा तो वो हॉस्पिटल गए। सीटी स्कैन देखकर डॉक्टर के होश ही उड़ गए कि एक पूरी की पूरी लकड़ी की टीनी जो होती है उसकी आई सॉकेट को फाड़ती हुई स्कल के अंदर तक घुस चुकी है। सबसे हैरानी बात है, जो कि एक मिरेकल भी है, कि ये बिना किसी ब्रेन सर्जरी के डॉक्टर ने उस लकड़ी को नाक के रास्ते यानी कि नेसल पैसेज से सेफली बाहर निकाल दिया और उनकी जान भी बच गई। एंड देन ऑफ कोर्स नाउ ही इज एबल टू सी प्रॉपरली। ट्रीटमेंट चल रहा है फिर भी, बट यस एटलीस्ट ही इज नो अंडर पेन। एंड उनका जो आँखों का जो था कि वो धीरे धीरे कम होती जाती रोशनी, वो भी अब नॉर्मल होने लग गया धीरे। बट सच अ वियर्ड राइट, बट ग्रेट न्यूज एज वेल कि वो बच गए।

0: say mere oof.
1: What's going on?
2: What's up?
1: What's up, Auckland?
3: चलिए कम्युनिटी की बारे में बात कर लेते हैं। ग्रैंड कीर्तन संध्या आज होने वाली है वैदिक सेंटर पापाटोटो में 7:30 बजे के बाद। आप अभी भी टिकट ले सकते हैं जय श्री स्मार्ट शर्ली रोड पापाटोटो में जाके, जहां पे रोनल सिंह, रोनू और जयने सेवक आ रहे हैं यहां पे परफॉर्म करने। उसके बाद एक ब्लड डोनेशन का जो कम्युनिटी इवेंट हो रहा है वो भी आप जाके सपोर्ट कर सकते हैं उन्हें। muskancaretrust.org.nz पे जाके डोनेशन भी कर सकते हैं। बट यस, ये हो रहा है 20 जून को इंटरनेशनल सिकल सेल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन ड्राइव मनुकाओ न्यूजीलैंड ब्लड सेंटर पे। आप जाइए और अपना कीमती ब्लड जो है उन्हें डोनेट कर सकते हैं। ग्लो रेड डोनेट ब्लड शेयर होप। उसके बाद ब्राह्मण सभा न्यूजीलैंड आप सभी भक्तों को इनवाइट करते हैं अधिकार मास कथा एंड यज्ञ, जो कि 7 जून को होने वाला है रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू में। आप सुबह 9:30 बजे वहां पे पहुंच जाइए। महाप्रसाद एंड प्रसाद विल बी सर्व्ड एज वेल आफ्टर द पूजा। उसके बाद श्री भगवत कथा भी हो रही है 5 तारीख यानी आज से शुरू हो चुकी है। 11 जून तक 9:30 बजे से शुरू हो गई है। आप पहुँच जाइए श्री राधा कृष्ण मंदिर एंड ऑकलैंड इंडियन एसोसिएशन, यहाँ पे ये चीज़ हो रही, तो आप डेफिनेटली पधारिए। और महात्मा गांधी सेंटर में एक्चुअली हो रहा है राधा कृष्ण मंदिर, यस। उसके बाद दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट भी आप सभी भक्तों को इनवाइट करते हैं 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ के लिए, जो कि 13 जून को सेलिब्रेट की जाएगी। पाठ पढ़ा जाएगा 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाओ में, जहां पे सुबह 7 बजे से स्थापना पूजा के साथ साथ चालीसा पाठ और वेरियस मंडलीज वहां पे होने वाली, फॉलोड बाय हवन एंड आरती शांति। प्रसाद एंड महाप्रसाद विल बी सर्व्ड थ्रू आउट द डे।
1: मॉर्निंग्स मेड बेटर।
4: दो फ्रेंडा, 4 टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय।
1: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
5: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rusby, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: हाँ। अच्छा
0: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह,
1: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
4: Breakfast show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. What's going on?
5: Welcome back. You are listening to Breakfast Show with Ketan. अभी बात करेंगे और भी चीजों की, but yes, सबसे पहले आपको remind कर देता हूँ that Roa app आप download कर लीजिए, बहुत ही खूबसूरत app है, आप download कर लीजिए और completely free है। आप वहाँ से काफी podcast हो गए, कुछ यू नो म्यूजिक स्टेशन है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत तरह तरह की चीजें हम वहाँ पे डालते रहते हैं। सो यस, आप वो करेंगे तो बहुत सारी अपडेट जो है आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी लोग कंप्लेन भी करते हैं फ्रीक्वेंसी को लेके, तो उसके लिए भी तोड़ यही है कि आप रोवा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू आप हमें कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। सो डजंट नीड टू बी जस्ट इन ऑकलैंड और नियर बाय, इवन इफ यू आर लीविंग यू कैन स्टिल लिसन टू अस थ्रू आउट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जी हाँ, अगर आप इंडिया जा रहे हैं, फिजी जा रहे हैं, या पाकिस्तान, बांग्लादेश या एनी अदर कंट्री यू आर ट्रैवलिंग टू, और घूमने भी अगर जा रहे हैं बट स्टिल यू वांट टू लिसन टू अस, यू कैन डेफिनेटली लिसन टू अस थ्रू रोवा ऐप। सो यस, आज ही मेक श्योर करें दैट यू डाउनलोड इट। और वहाँ पर तरह तरह की कॉम्पिटिशन भी आती रहती है, बिकॉज रिसेंटली वी हैड दिस चर्डल गेम खेला जा रहा था, काफ़ी लोगों ने पैसा जीता है वहाँ से। जी हाँ, $100 ईच डे वहाँ पे अवार्ड विनिंग ऐसा कैश था। बट यस, आपके पास भी ऐसे और मौके आएंगे, बट उसके लिए आपको रोवा ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आज ही। एंड जस्ट टू लेट यू नो वन क्लेरिफिकेशन, कि काफ़ी लोगों को लगता है यार डेटा बहुत जाएगा ये सब है, बट लेट मी गिव यू अ लिटल ब्रीफ अबाउट दैट, कि आप जब एक 20 सेकेंड का जो स्टोरी डालते हैं अपने सोशल मीडिया पे, उससे क्या होता है दैट जो जितना डेटा यूज होता है उसमें इज इक्वेलेंट टू लिसनिंग टू रोवा ऐप फॉर एन आर। जी हाँ, तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है, डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वो छोड़ के ये करें, बट आई एम जस्ट गिविंग एन अपडेट कि कितना डेटा यूज होता है। सो दैट इज काइंड ऑफ नथिंग, राइट? बट यस, आप बने रहिए। एक सवाल है मेरा यहाँ पे, सवाल ये है व्हाट इज, ये एक्चुअली मैंने लंच बॉक्स में भी पूछा था और यहाँ पे भी पूछूंगा मैं, व्हाट इज द फनीएस्ट ऑटो करेक्ट फेल यू हैव एवर सेंट। ये इसका जवाब आप मुझे 5599 में भेजिए। लेट्स फाइंड आउट यार, ये काफी फनी टॉपिक है और काफी मुझे अच्छे रिस्पांस भी आते हैं लंच बॉक्स शो में। तो यस, इट्स योर टाइम नाउ, आप जल्दी से मुझे 5599 पे भेज दीजिए इसका जवाब, कि क्या फनीएस्ट ऑटो करेक्ट फेल आपके साथ हुआ है, दैट यू वांट टू राइट डाउन समथिंग, यू वांट टू सेंड समथिंग, बट एक्सीडेंटली वो कुछ और हो गया एंड देन इट बिकम वियर्ड सिचुएशन। तो यस, आप मुझे 5599 पे इसका जवाब भेज दीजिए।
4: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
6: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
7: मैं लाऊं अपना ए गेम।
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

स्वागत करते हैं आज के ब्रेकफास्ट शो विद केतन में। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक एक है जवानी तो इश्क होना है एक फिल्म रिलीज हुई है आज इंडिया में होने वाली है एक्चुअली आज के दिन, जिसमें कास्ट अगर बताएं तो वरुण धवन है और साथ में पूजा हेगड़े भी है और मृणाल ठाकुर भी है। आप ऑब्वियसली टीजर यहाँ पे देख रहे हैं तो उसका रिव्यू मैं यहाँ पे बता देता हूँ फटाफट से। फिल्म को एक ब्रिजी कलरफुल और अनअपोलॉजिटिकली मसाला एंटरटेनर कहा गया है जो डेविड धवन स्टाइल कॉमेडी को परफेक्टली कैरी करती है। रेटिंग जो है वो 3.5 मिली है आउट ऑफ 5। ओवरऑल रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव एंटरटेनर ये बताया गया है। स्टोरी वाइब्स है, फिल्म एक ऐसे मैन के अराउंड घूमती है जिसका लव लाइफ, मैरिज और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एक कैओटिक कॉमेडी में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें रोमांस, कन्फ्यूजन और ड्रामा सब मिक्स होता है। वैसे यस, काफी लाइट हार्टेड कॉमेडी टाइमिंग है, मास ऑडियंस अपील है, कलरफुल प्रेजेंटेशन एंड म्यूजिक, ओल्ड स्कूल बॉलीवुड एंटरटेनमेंट फील है। वीक पॉइंट भी है इसमें कुछ, जैसे कि फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगता है, हो सकता है एक्चुअली, लगता नहीं है। स्टोरी में नोवेल्टी लिमिटेड है, कुछ जोक्स इनकंसिस्टेंट हैं, बट यस इसका जो टेक अवे है फाइनल वो है फिल्म का मेन गोल डीप स्टोरी टेलिंग नहीं है बल्कि ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन करना है, हंसाना और स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस देना है। सो यस दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो। आप नजदीकी सिनेमाघरों में जाइए और मूवी को देखिए क्योंकि नॉट बैड यार, गुड रेटिंग मिली इनको 3.5 आउट ऑफ 5 यानी कि 7 स्टार आउट ऑफ 10। तो डेफिनेटली आप सिनेमाघरों में जाइए और इस मूवी को एंजॉय करिए। ब्रेकफास्ट शो

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
4: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
5: Bunnings Barbecues will be firing up across the country for a National Sausage Sizzle fundraiser for Motor Neuron Disease Action Month on Saturday, June the 6th. All funds raised go to MNDNZ for research and support for people living with MND. So come join us to show your support at your local Bunnings.

0: If you're in the loop with ANZ, you now earn cash back with your Visa debit. So if you spend on things like food,
1: noodles,
0: or fashion,
1: gorgeous,
0: or even a shiny new appliance,
1: shiny,
0: money loops back. Get in the loop for cashback shaped around you. Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
2: Trade Depot now helps people in Auckland save hundreds on hardware. Double power points, $7. Clear silicone sealant, $4. Painter masking tape, $2. Stainless steel flexi hoses, $4. Save hundreds on hardware, tools, plumbing, electrical and paint supplies. Only at Trade Depot in Onehunga or shop online. TradeDepot.co.nz.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 और विजिट legalassociates.co.nz
6: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. What's going on?
8: Well, yes, फटाफट से कुछ न्यूज पढ़ लेते हैं उसके बाद मैसेज भी पढ़ लेंगे न्यूज में एजुकेशन कॉस्ट का एक बड़ा इशू फिर से स्पॉटलाइट में आ गया है एसीटी पार्टी ने स्कूल यूनिफॉर्म कॉस्ट को टारगेट किया है और उन्होंने इसे आउट ऑफ कंट्रोल या ऑट्रेजियस प्राइस टैग्स बताया है पार्टी का कहना है कि न्यूजीलैंड में पेरेंट्स को बच्चों के कंपलसरी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है जो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर के टाइम पर और बर्डन बढ़ता जा रहा है ACT यानी कि एक्ट का आर्ग्यूमेंट है कि स्कूल यूनिफॉर्म का सिस्टम रिफॉर्म की जरूरत में है ताकि फैमिलीज को अननेसेसरी ब्रांडेड या एक्सपेंसिव आइटम्स पर फोर्स ना किया जाए उनका फोकस है कि यूनिफॉर्म को अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल बनाया जाए कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि न्यूजीलैंड में यूनिफॉर्म्स को कॉस्ट कभी कभी हंड्रेड से लेके $1,000 तक जा सकती है कभी कभी उससे ऊपर भी और कई केसेस में सिर्फ स्पेसिफिक सप्लायर से ही आपको परचेज करना पड़ता है जिससे कंपटीशन कम हो जाता है और प्राइस हाई रहती है क्रिटिक्स का कहना है कि यूनिफॉर्म का जो मेन पर्पज़ है वो इक्वालिटी और डिसिप्लिन है लेकिन अगर वही चीज़ फाइनेंशियल बैरियर बन रही है तो एजुकेशन एक्सेस इम्पैक्ट हो सकता है गवर्नमेंट साइड पर पहले भी डिस्कशन होते आ रहे हैं और यूनिफॉर्म रूल्स को सिंप्लीफाई भी किया जा रहा है जैसे ब्रांडेड आइटम्स को लिमिट करना या अल्टरनेटिव सप्लायर्स को अलाउ करना जी हाँ वैसे यस इफ यू आर आल्सो गोइंग थ्रू इफ यू हैव एनी रिव्यू ऑन दिस डू लेट अस नो 5599 पे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बट यस सिंपल शब्दों में ACT एक्ट पार्टी ये कह रही है कि यूनिफॉर्म जो है स्कूल की वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस सिस्टम को चेंज करके पेरेंट्स को फाइनेंशियल रिलीफ देना चाहिए स्पेशली कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के टाइम पर जी हाँ बट यस एट द सेम टाइम लेट्स रीड आउट सम मैसेजेस जो मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था What's the funniest autocorrect fail you have ever sent? उसमें सबसे पहला जवाब आया है रवि भाई का अरे ये तो यही hopefully he is the same रवि भाई जो मुझे लंच बॉक्स में भी मैसेज करते हैं उन्होंने लिखा है आई मेंट टू टेक्स्ट आई विल बी देयर इन 5 minutes ऑटो करेक्ट सेंट आई विल बी देयर इन 5 muffins एंड माई फ्रेंड स्टिल डोंट लेट इट गो दे ऑलवेज आस्क मी ये सही है चलते चलते पे खर्चा लग गया इसकी कहावत क्या है चलते चलते तो खर्चा हो जाता है उसकी कुछ कहावत भी है राइट प्रिया कहती है आई ट्राइड सेइंग आई एम ऑन माय वे बट इट बिकेम आई एम अनियन माय वे ooh now I'm officially a vegetable apparently that's so cool देव भाई लिखते हैं आई रोट कॉल मी लेटर एंड इट चेंज टू क्राई मी लेटर ऑनेस्टली फेल्ट इमोशनली एक्यूरेट दो दैट इज सो क्यूट अंजलि कहती है कहाँ क्या मैसेज ये रहा हाँ अंजलि कहती है सेंट गुड नाइट टू माय बॉस बट इट बिकेम गुड नाइट अच्छा के लग गया के आगे लग दिया ओके फिर कुछ अगर रिस्पॉन्ड आया बॉस की तरफ से तो मुझे बताइए 5599 पे करण कहते हैं आई एम बिजी he was supposed to send, but it sent I'm Biscuit. And must be calling calling you every time whenever they are having the, or they want to have it. Karan bhai, thank you. Neha kehti hai, wrote see you soon, but it became see you spoon. Still used as nickname. Definitely. Abhi to samne wala hopefully chida nahi ho. Aakhri message Vikram bhai ka, wo kehte hai, texted I'm coming, but it became I'm coming. Oh, okay. मतलब वो जो मसाला वाला होता है वो बन गया था. बट थैंक यू सो मच यार, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही क्रिएटिव रिस्पॉन्स के लिए. आप बस बने रहिए और भी बहुत सारे. लेकिन ये जो गाना है ना, मो मो के धागे, पेपो का गाना है, आप इंजॉय करिए. हम थोड़ी देर में मिलते हैं कुछ और चटपटी खबरों के साथ.

0: Well, दो बातें तो अब हो चुकी खत्म, बट yes, आज का दिन, आज का समय बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही एंजॉय किया आज मैंने, एंड आई होप टू सी यू ऑल अगेन वेरी वेरी सून. बट आप कहीं मत जाइए, अभी कशिका जी आने वाली है फॉर ऑफकोर्स माई टाइम विद कशिका गए, वो आप शो अटेंड करिए और उसके बाद अगेन आई विल बी बैक फॉर द लंच बॉक्स शो 12 से 3 के लिए. सो यस, डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू अस विद अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग. अभी जो गाना है वो धड़क धड़क धड़क धड़क धुआं उड़ाए रे, उदित नारायण की आवाज में और सुनिधि चौहान की आवाज में. जस्ट सी हेलो, सुनिधि चौहान ने इतने सालों से इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हमें. इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट गाना है तुझको, बहुत ही प्यारा यार. अरिजीत सिंह इज, आई डोंट नो, लाइक यू नो, नेक्स्ट अब पता नहीं हमें हम कब सुनेंगे. सारे जो है उनकी रिटायरमेंट से पहले का सॉन्ग्स है जो उन्होंने किए हैं. ऑफकोर्स हम उनकी आवाज़ सुनेंगे, बट मूवीज़ में अब उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी. इनफैक्ट जो रिकॉर्ड हो चुके हैं वो ही सुनाई देगी. तो जो आपको सुनाई देगा अभी आने वाले दिनों में, तो ये सारे प्री रिकॉर्डेड एज एन लाइक रिकॉर्ड हो चुके हैं, बट आने वाले टाइम पे शायद आपको, शायद हाँ शायद ही आपको बॉलीवुड में उनके गाने मिलेंगे. बट उनके गाने जो है उनके चैनल पे वो डालते रहेंगे, वो नॉन कमर्शियल गाने तो करते रहेंगे जहाँ पे आप तक नए नए गाने, एंड ऑफकोर्स लाइव इवेंट में भी आपको सुनाई देते रहेंगे. बट यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई एम गोना से गुडबाय टू यू फॉर फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो, एंड आई विल सी यू ड्यूरिंग द लंच बॉक्स. अब तो मेरा भी ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका है, सो यस यू ऑल्सो हैव इट, बट यस आई विल सी यू ड्यूरिंग द लंच टाइम शो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू.
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं. ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे. और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा.

0: Morning, I'm Bridget Hasty with the latest at 10. Organisations are being urged to understand the risks when choosing new tech. It follows a reported spam attack on the Heart Foundation's fundraising website. Guerrilla Tech CEO Paul Spain says external platforms are often being used without knowing the risks they pose.
1: And unfortunately, especially in small organisations, a lot of autonomy is given to staff to just go and select and choose and turn on a new technology at the drop of a hat.
0: A Māori health organisation wants safe sleeping habits discussed around dinner tables this month. Hapai Te Hauora has launched a campaign to remind families of the risks faced by babies at bedtime. Spokesperson Faye Selby-Law says videos are being shared across social media.
2: Some of them are led by our tamariki, our children, because it's important that they know the messages, but often our children are the best people to carry messages.
0: Tough new penalties are now in force for the recreational use of nitrous oxide. From today, anyone convicted of supplying NANGs could get up to 2 years prison and a $500,000 fine. Simple possession will earn a $500 fine. Police say the new penalties will support enforcement and improve road safety. To sport, women's tennis number 114 Maya Falinska is in disbelief after becoming the first qualifier in the professional era to reach the French Open final.
3: I feel like I'm in the bubble, I would say. I don't know what's going on.
0: And a major blow for the Southern Steel and Netball's ANZ Premiership. Captain Kimiora Poi has been ruled out of the rest of the season with a calf injury.
4: Sports News. Brought to you by Sona Sensar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
5: मौसम की तरफ हम देखें थी हाइज ऑफ 20 ओवरनाइट टेम्परेचर ऑफ 13 आज का फॉरकास्ट है और उसके बाद रेंज जो है दोपहर के समय हैवी होती चली जाएंगी. इट फील्स लाइक 18 डिग्रीज राइट नाउ. 5:13 पर सनसेट बताया गया है.
4: Playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
6: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai
4: My Time with Kashika.
5: कहते हैं ना कि कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर बहाना. तो भाई मैं आपको कायर तो नहीं कहना चाहती हूँ, बट यही कहना चाहती हूँ कि आप सब समझदार हैं और आप जानते हैं कि भाई ये वीकेंड आ गया है और ऐसे में वीकेंड जब आ जाता है अपने लिए टाइम निकालना तो आपको बहुत ही समझदारी का काम लगता होगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर आपको एक्सक्यूजेस बनाएंगे तो डेफिनेटली यू नो विच कैटेगरी यू विल फॉल इनटू. गुड मॉर्निंग, मैं काशिका आपका साथ निभाने के लिए आ चुकी हूँ स्टूडियोज में आपकी रिमाइंडर क्लॉक बनकर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट आप अपने लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. भैया आपसे इम्पॉर्टेंट तो कुछ नहीं, अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं है, कि नहीं? कशिश फूड्स की ओर से माय टाइम लेकर मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के बीच में आप और हम मिलकर एक साथ ये अपना टाइम गुजारते हैं. और जब ये बातें करती ही हूँ मैं आपके साथ तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कोशिश करती हूँ लेकर आऊँ जिनसे आपको फ़ायदा हो, जिनसे आपके लिए आगे चलकर बहुत अच्छा चले. तो ऐसे में क्या कर रहे हो, क्या प्लान है, क्या बनाया है प्लान, चलो आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ. एंड थोड़ी देर बाद आपके लिए कुछ अच्छी प्यारी प्यारी बातें. लेकिन याद रहे ऑफिस शाउट आउट की तैयारी में आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो मुझे इंतजार है 5599 पे आपको टेक्स्ट करना है. हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स, आप सुन रहे हैं 104.2 FM के जरिए या रोवा ऐप के जरिए. तो याद दिला देती हूँ रोवा ऐप के जरिए आपको ढेर सारे म्यूजिक स्टेशन हमारे मिलेंगे और ये म्यूजिक स्टेशन रोवा के म्यूजिक स्टेशन हैं. उन सब में पता है नंबर वन कौन सा है? उसमें से हम रिवाइंड नंबर वन पोजिशन पे है, फॉलोड बाय जुकबॉक्स 80s. तो चलो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बजाऊं क्या? अच्छा बजा ही देती हूँ.
4: बचाओ क्या?

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: एक्सपर्ट्स अड्डा में मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मैं कह सकती हूँ कि हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे उसके साथ रिलेट कर पाते हैं। कहते हैं कि तीन तरह के लोग होते हैं जिन्हें आपको अपनी लाइफ में से हटा देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीस, ग्रोथ और स्ट्रेंथ आपके लिए लेकर आते हैं आपकी जिंदगी में। बाकी कुछ लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी गंवाने में आपको पता नहीं कहां तक ले जाते हैं। सो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक अच्छी एसोसिएशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप शेपअप करते हैं अपने सोच को, अपने फील को और अपने एक्ट को, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। हर एक कोई नहीं आपको मिलेगा जो आपको स्माइल करता हुआ मिलेगा जब आप खुश होते हैं या आपकी कोई सक्सेस होती है, बट जो स्माइल करते हैं तो ये समझ लीजिए आपकी उनके साथ दिल का कोई ना कोई कनेक्शन है और आप किस तरह से आपकी वेलबींग में वो आपको मदद कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए एक ऐसी प्रोफाइल रखते हैं, उनसे आपको दूर रहना है। आई एक्सप्लेन। कुछ सीजनल लोग होते हैं जो हमेशा तब आते हैं जब कोई फेवर चाहिए होता है, कोई कॉन्टैक्ट, कोई पैसों की ज़रूरत है या इमोशनल सपोर्ट, कुछ क्राइसिस में है, तो फिर उसके बाद जैसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है वो भाग जाते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि ये आपकी लाइफ में जब आते हैं और आते जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, तो दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंडशिप विथ कन्वीनियंस, ये कह सकते हैं। ये पैटर्न आप नोट करेंगे एंड आई प्रेफर दैट इस तरह के लोग आप उनसे दूर ही रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े हेल्थी फ्रेंड्स जो होते हैं, आपको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, नो मैटर कितनी भी छोटी सेलिब्रेशन हो, चाहे वो कॉफ़ी के लिए हो या फिर एक चाय के प्याले के साथ हो। लेकिन एक सेकंड टाइप के लोग होते हैं, जिस तरह से आपका सक्सेस आता है वो एक डसने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं, दे आर नॉट गुड इनफ, ऑफ कोर्स वी नो दैट, ये इनकरेज नहीं करते हैं आपको और हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को कम करने की, घटाने की कोशिश करते हैं। ऑन द सर्फेस बड़े मोटिवेटेड लगेंगे, अरे भाई क्या बात है, यू डू दिस, यू डू वेरी गुड, ये रैप अप कर देते हैं और फिर बाद में उस चीज़ को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। दिस इज नॉट सपोर्ट, दिस इज देयर इनसिक्योरिटी इन डिसगाइज। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में कभी कुछ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। हमेशा माफ कीजिएगा, आपको कभी कभी ऐसा डाउट होने लगता है, क्या मैंने ये बात सही करी थी या नहीं की थी, और वो इस तरह के एक आपको असमंजस में छोड़ देते हैं। लेकिन इन लोगों से डिस्टेंस बनाना बेटर है रादर देन बिल्ड अ हेल्थियर रिलेशनशिप। यू नो, वो ऐसे लोग होते हैं जो आपको हर समय जब आपको पूछते हैं तो आपको पता है कि वो आपके दोस्त हैं, लेकिन हाँ, वक्त आ गया रोने के लिए, कंधा चाहिए, पहुँच गए भाई। अरे जैसे ही आपको देखा कि अरे आपको कुछ मान सम्मान हो रहा है आपका, तो अरे मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, अरे मुझे क्यों नहीं मिल रहा ये अवार्ड, मुझे ये क्यों नहीं हो रहा। इफ़ दैट इज़ द फीलिंग, और आपको अगर लगता है कि आपको पता है कि ऐसा कौन रिएक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल होता है, हर कोई मिस्टेक्स करता ही करता है, लेकिन समबडी हु एक्चुअली बिहेव्स द वे जो आपको हर्ट करेगा इज द रियल कैरेक्टर इन अनदर वे। सो उसमें ये होता है, दोज पीपल हु नेवर से सॉरी, नेवर सेल्फ रिस्पेक्ट, ये हमेशा फ्लिप बैक कर जाते हैं और आप पे ब्लेम डालने के लिए। अगर वो मिस्टेक करते हैं या इट्स या हर्ट करते हैं, दैट्स फाइन, पर आप उस चीज़ को करने लग जाते हैं ना, तो वह उस पर रिएक्ट करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में से हटा देना चाहिए, यू विल फील लाइटर। इस तरह के लोगों को हटाने से आपके लाइफ में बहुत अच्छी सूदिंग लाइफ हो जाएगी। दिस इज द लॉयल्टी टू यू। इस तरह के लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दीजिए। ऐसे लोग आपको स्कोर देते हैं, आपके मिस्टेक्स को काउंट करते रहते हैं। ये पेन अपना कम कर सकते हैं आप, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आप कंट्रोल कीजिए। ऐसे लोगों के साथ बह मत जाइए इनके प्रवाह में, हमेशा ये आपके आसपास रहते हैं लेकिन ये आपको सिखा देते हैं कि आप कितने यू नो इम्पोर्टेंट, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में ये मदद कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि ऐसे लोगों को मैं ना एंटरटेन करती हूँ, ना उनके बिहेवियर को पास लाने देती हूँ। ऑफ कोर्स दे विल ट्राई टू मेक रूम फॉर द रिलेशनशिप, बट यू एग्जैक्टली नो वे टू ड्रॉ द लाइन, दैट्स अबाउट इट। इसका मतलब ये नहीं कि दैट यू हैव टू हेट दैट पर्सन या किसी को कर्स करना है, नहीं। यू नीड टू रिलीज दोस एंग्जाइटीज विद इन यू, और एक क्लैरिटी और एक कंपैशन के साथ अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो। कमिंग अप नेक्स्ट, आपके लिए भाई ऑफिस शाउट आउट, जल्दी बताओ कहाँ से सुन रहे हो।
0: माय Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
4: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
3: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे

0: Factor.
1: Office shout out.
2: ऐसा है ऑकलैंड वालों, देखो आप लोग पीछे रह गए हो क्योंकि मेरे पास आ चुका है एश फ्रॉम सुशील्स मसल शेफ कैफे टीम फ्रॉम वेलिंगटन. वेरी हैप्पी रेनी एंड समझदारी वाली गुड मॉर्निंग काशिका जी. थैंक यू, आप सुन रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा ये तो चलो वेलिंगटन से सुन रहे हैं, आपको पता है न्यू प्लिमथ से भी हमें कोई सुन रहा है एंड दैट इज रचना सिंह. थैंक यू सो मच, आप मुझे न्यू प्लिमथ से सुन रहे हैं. भाई मज़ा आ जाता है जब इस तरह से आप लोग इंटरैक्ट करते हैं, आप लोग आगे आके बात करते हैं, पता चलता है कि भाई कहीं ना कहीं से हमें सुन रहे हैं. तो अगला गाना रचना सिंह जी न्यू प्लिमथ से आप मुझे सुन रही हैं, आपको मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ. आप गाना सुनिए, गाना बहुत खूबसूरत है और फिर उस फीलिंग्स के साथ आप झूमिए.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

मैं तो समझती हूँ माहौल बनाने के लिए हमारे पास ऑकलैंड से ज्यादा बाहर के लोग जो हैं वो हैं। अब भाई आप बताइए, लवप्रीत सिंह जी कैसे हो? आप इन्वरकागल से मुझे सुन रहे हैं तो भाई बिग बिग थैंक यू टू यू। तो लवप्रीत जी, लवप्रीत सिंह जी इन्वरकागल से, ये अगला गाना आपके लिए। और साथ साथ ऐश फ्रॉम सुशील मसल शेफ कैफे फ्रॉम वेलिंगटन, ये भी आपके लिए, दोनों के लिए।

ईट बेटर लिव बेटर भाई, हम इन वक्त आगल में लवप्रीत सिंह जी के पास, रचना जी के पास न्यू प्लिमथ में, एंड एश जो है वेलिंगटन में, इनके पास तो गए हैं अपनी डेडिकेशंस लेकर. और साथ साथ अब मैं आपको लेके चलती हूँ डनीडन. अब डनीडन के एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे मार्लो पार्क, इफ़ यू हैव बीन देयर, इट्स ऑल्सो नोन एज द डायनासोर पार्क एट सेंट किल्डा. अब ये एक प्री हिस्टोरिक फिक्सचर है जो बच्चों को 1969 से बहुत भाता है. सो इट्स मोर देन हाफ अ सेंचुरी ओल्ड और इसका फ्यूचर कुछ पता नहीं है. लेकिन कहा ये जा रहा है कुछ डिज़ाइंस जो हैं फॉर द मल्टी मिलियन डॉलर पार्क जो है उसको अपग्रेड करने का प्लान है. लेकिन क्या उसमें स्लाइड जो है, जो ये पर्टिकुलर डायनासोर का स्लाइड है, क्या ये स्लाइड रहेगा? इट्स 57 ईयर्स ओल्ड एंड वेरी वेरी पॉपुलर. उसके लिए क्यू लगती है, लगभग 300 बच्चे लाइन में लग जाते हैं जब वीकेंड होता है. तो यहाँ पे कमाल होता है. आई हैव सीन इट फ्रॉम फार, क्योंकि मैंने इतने बच्चे देखे तो बहुत अच्छा लगा है. एंड व्हेन आई एम सीइंग द फोटोग्राफ, एक्चुअली उसी समय ध्यान आया कि हाँ ये वही जगह है. तो हो सकता है ये इनका जो नया कॉन्सेप्ट है, प्लान जो है, उस पर उसके लिए एक एक्चुअली कमेंट आया. एंड जो कमेंट आया फेसबुक के ऊपर, उस पर लगभग 800 कमेंट्स आ चुके हैं फेसबुक के ऊपर कि कम्युनिटी रियली वॉन्ट्स टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू द डायनासोर स्लाइड. सो अगर आप भी चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं. ड्रीम डायरी कमिंग अप नेक्स्ट. कोई ड्रीम अगर आपको परेशान कर रहा है, बताओ.

0: life better. Dream Diary.
1: So, Dream Diary में मेरे पास बड़ी अनोखी सी बात आई है और उसमें उन्होंने कहा है टेक्स्ट करके कि I dreamt of someone drowning in the water. अब इफ यू सी कि किसी को आप देख रहे हैं वो कोई ड्राउन हो रहा है तो इट सिंबलाइजेज इमोशनल ओवरवेल्म और एक उनकी हेल्पलेसनेस या फीलिंग फ्लडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज. पानी हमेशा एक रिप्रेजेंट करता है आपके अनकॉन्शियस माइंड को या आपके डीप इमोशंस को और किस तरह से आप हैविली उस जिनके बारे में आपने सोचा उनके साथ वो रिलेशनशिप में है तो वो आप उनके लिए ड्रीम करते हैं. अब ये जो आप ड्रीम कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं. एंड इफ़ यू हैव रेस्क्यूड दैट पर्सन तो प्रॉब्ली सजेस्ट करता है कि दे हैव ओवरकम द करेंट ऑब्स्टिकल्स. अगर आप उन्हें नहीं बचा पाते क्योंकि खाली एक लाइनर में लिखा है तो यू मे फील के यू नो यू आर नॉट एबल टू असिस्ट दैट पर्सन हुम यू नो इज स्ट्रगलिंग. आपकी सबकॉन्शियस इंडिकेट करती है कि एक रिलेशनशिप में आपने एक बाउंड्री जो है वो आपने ड्रॉ की हुई है इसी वजह से शायद आप उनको सेव नहीं कर पा रहे. एंड इफ इट्स समबडी हु इज़ वेरी डियर एंड नियर एंड डियर टू यू दिस पॉइंट इज मे बी इट्स अ फेयर ऑफ लूजिंग देम या रिफ्लेक्ट करता है कोई सिचुएशन है ओवरली जो उनके ऊपर उनके वेलबींग पर यू नो हर्ट कर रही है. सो आई डोंट नो इफ आई हैव बीन लिटिल बिट एबल टू रीच टू वेयर योर ड्रीम वॉज टू इंटरप्रेट इट. सो चलो अब मंडे के दिन बात करेंगे ड्रीम के बारे में. दिल से दिल तक.

थ्रोबैक में मैं जो गाना आपके लिए लेकर आ रही हूँ, दरअसल इस पर्टिकुलर सॉन्ग को जब लिखा जा रहा था तो जावेद अख्तर के माइंड में सिर्फ और सिर्फ माधुरी दीक्षित थी, और उन्होंने माधुरी दीक्षित को माइंड में रखकर इस गाने को लिखा था. नाउ जब माधुरी दीक्षित जी को एक प्रॉब्लम हो गई कि उनके स्केड्यूल इतने ज़्यादा बिखर गए थे, इतने ज़्यादा वो बिज़ी हो गई थी उन दिनों में, तो अनफॉर्चुनेटली वो ये फिल्म नहीं कर पाई. विदू विनोद चोपड़ा जो थे, इन्होंने कहा ये तुम फिल्म नहीं कर पा रही हो, लेट मी गिव इट अ शॉट. तो उन्होंने मनीषा कोइराला को बुलाया और कहा कि मनीषा तुम क्या इसके ऑडिशन में आ सकती हो. तो मनीषा ने सेकेंड टाइम ऑडिशन दिया, मनीषा कोइराला ने, और फाइनली शी डिड जस्टिस टू रज्जो. और ये गाना कमाल है, 1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म का ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है. एंड ऑफ कोर्स आर डी बर्मन साहब की ये लास्ट कॉम्पोजिशंस, लास्ट म्यूजिक डायरेक्शन में से एक कॉम्पोजिशन थी जो आज तक हम लोग जब भी किसी लड़की को देखते हैं तो यही कहते हैं.

0: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप भी तो नहीं।
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
6: Kyun? Kya hua?
5: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne hi documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
7: किवी किड्स आर एक्टिव किड्स, क्रिएटिव किड्स, स्पोर्टी किड्स। आर यू अ वेबिक्स किड?
8: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay-monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
9: At Big Save, we work hard every day to keep our furniture and bed prices low, so you can always get New Zealand's best value furniture and beds. And today, you can save big. Save big on lounge suites. Lounge suites now from $19.99. Save big on sofas. Sofas from $6.99. Save big on beds. Get the snow bed. Queen, king or super king, only $9.99. Save big on recliners.

0: Namaskar and a very, very good morning to you people. How are you? 5 June ka din hai, Friday. Yay, it's Friday. Yay, keh sakti hoon. वीकेंड का मोड शुरू हो चुका है और ऐसे में आप सबका साथ निभा रही हूँ मैं कशिका 12 बजे तक. और कशिश फूड्स को बिग थैंक यू टू यू जिनके सौजन्य से आपके लिए 10 से 12 बजे के बीच में मंडे टू फ्राइडे माय टाइम लेकर मैं कशिका आ जाती हूँ और आपका साथ निभाने लग जाती हूँ. वैसे जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि सीवियर थंडरस्टॉर्म का एक वॉच है 3 से 8 बजे तक आज का, जहाँ हवाएं भी तेज़ हो सकती हैं और हो सकता है आज बारिश भी 25 to 40 मिलीमीटर्स के हिसाब से भी पड़ सकती है. सो ये डाउनपोर्स जो है विदाउट थंडरस्टॉर्म पड़ सकते हैं, फ्लैश फ्लडिंग के भी चांसेस हो सकते हैं. सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग. बी मतलब कभी विजिबिलिटी पुअर हो जाती है ना ड्राइविंग के टाइम पे, उस समय बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है. लेकिन अपना ध्यान रखने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं, उनमें से कुछ एक बात मैं ज़रूर लेकर आने वाली हूँ. अरे भाई, 6-word स्टोरी का भी वक्त आ गया है, तो बताइए 6-word स्टोरी को आप मेरे साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए जल्दी जल्दी. मैं भी पहले ही रिमाइंडर दे रही हूँ और एक मौका दे रही हूँ आपको. बहुत ही खूबसूरत एक कुछ होने वाला है और वो जो हब ऐसा चीज़ ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये कुछ एक ऐसी कहानी है जो हम दोहराते रहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाली हूँ. चलो, यहाँ तक तो जब हम पहुँच ही चुके हैं तो रेस्क्यू मी, रिसाइकिल मी, इसमें के बारे में भी बात करेंगे. और प्रॉपर्टी मार्केट आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, चलो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ. स्टे ट्यून्ड, कीप हमिंग ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट. 702 AM के जरिए तो नहीं सुनते अब आप हमको, लेकिन 104.2 FM के जरिए जरूर सुनते हैं और रोवा के जरिए तो आज देख ही लिया, इनवकागल, न्यू प्लिमथ और वेलिंगटन से लोग हमें सुन रहे हैं. हेलो ऑकलैंड, आर यू हियर?
1: बचाओ क्या,

0: जब विंटर आने लगता है ना, तो हमारे जो घर के अंदर जो गार्डन्स वगैरह होते हैं उनमें इश्यूज होने लग जाती हैं, और जब ये इश्यूज होने लग जाते हैं और जो प्लांट्स होते हैं हमारे जो घर में हमारे पेड़ होते हैं उनमें क्या क्या करना चाहिए? आइडियली जो चीज़ें होती हैं उनमें प्रूनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, किस तरह से आप काट छाट करते हैं, छोटे छोटे यू नो आप इनको काट देते हैं और फिर आप इनकरेज करते हैं नई ग्रोथ हो, खासतौर पे जैसे रोजेज वगैरह होते हैं. हमेशा क्लीन रखें और शार्प टूल्स रखें टू कट एनी काइंड ऑफ एन एंगल जस्ट अबव द बड. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ख़ासतौर पे प्रून कीजिए डेसिड्यूस फ्रूट ट्रीज जिनके पत्तियाँ भी गिरने लग जाती हैं, झड़ने लग जाते हैं, जैसे एप्पल्स हैं, पेयर्स हैं, पीचेस हैं. और ख़ास तौर पे आपको अपनी जो कंपोजिट होता है ना, या कि आप घर में जो आपकी क्यारी होती है या जो भी आपका, उसमें आपको सॉइल की हेल्थ को देखना है और मल्चिंग को भी देखना है, किस तरह से आपके प्लांट्स जो हैं दे गेट इंसुलेटेड रूट्स, साथ साथ उसके अंदर मॉइस्चर रिटेन हो जाता है. विंटर इज़ द टाइम जहाँ पे फंगल डिजीज़ जो है प्लांट्स में आने लगती है. सो जो डेड फोलियाज है, जो प्लांट्स में से पत्ते जो गिर चुके हैं, और इन सब जगहों पे आपको स्प्रे करना होता है. और फ्रूट ट्रीज़ जो है, रोज़ेस जो है, और कुछ फंगस जो होता है वो डेवलप करता है, उसके बाद आपके प्लांट्स मरने शुरू हो जाते हैं. विंटर टाइम में यू कैन हैव ब्रोकली, कैबेज, सिल्वर बीट, पालक, ब्रॉड बीन्स और विंटर अनियंस. और जब मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो पैंसीज हैं, वायोलास हैं, इस तरह के प्लांट्स जो हैं ज़रूर ब्लूम करना शुरू कर देते हैं, आपके ग्लूमी डेज को खूबसूरत बनाने में ये मदद करते हैं. विंटर एक ऐसा मंथ है जहाँ पर वेटेस्ट सीज़न होता है हमारी कंट्री के अंदर, है ना. और ऐसे में आपको इंश्योर करना है जो आपके गार्डन के बेड्स हैं वहाँ पे इक्वली ड्रेनेज हो, ये ना हो कि पानी इकट्ठा होता चला जा रहा है, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए आपके प्लांट्स के अंदर. एंड इससे क्या होगा, जो रूट्स हैं ना प्लांट्स की वो रॉट होनी शुरू हो जाती है. अपना वाटरिंग का स्केड्यूल जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा. आप सुबह जिस समय ड्राई डे है सुबह के समय प्लांट यू नो प्लांट्स में पानी दे सकते हैं, या जस्ट बिफोर शाम होने लग जाती है. बी वेरी वेरी केयरफुल. और कूलर रीजन्स में, जैसे कि साउथ आइलैंड से हमें कितने लोग सुन रहे हैं इस समय, तो आपको बता दें कि ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव प्लांट्स जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है. कुछ फ्रॉस्ट क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ पॉट्स जो हैं उनको प्रॉब्ली ट्रॉपिकल एरिया में, यानी कि शेल्टर्ड एरियाज़ में या इनडोर्स के पास में, जो कि अपने गार्डन इंडोर बना रखा है उसमें लगाएं तो बेहतर रहेगा.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 80।
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: सन टूर्स के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800-4SUN-TOURS, दैट्स 0800-478686। लिमिटेड स्पेसेस।

0: Here's five ways to beat rising fuel prices. Your hop card, credit card, debit card, smartphone, or smartwatch. Because you can tag on to buses, trains, and most ferries with any of them. Just turn up, tag on, and save when you ride with Auckland Transport.
1: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid-morning Maza.
1: Six-word story.
3: तो आपकी सिक्स वर्ड स्टोरी में बहुत इम्प्रेस्ड हूँ एंड एक्चुअली देखा जाए तो आपने लिखा है वो कप प्लेड हम ऑन रोवा. वाह क्या बात है. वो कप प्लेड हम ऑन रोवा, इसका मतलब पता नहीं कहाँ से सुन रहे हैं, जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं तो वो भी टेक्स्ट कर दीजिए. इट विल बी ग्रेट इफ़ यू कैन डू दैट. वैसे मैं अगर रोवा की बात करती हूँ तो हमारे पॉडकास्ट के बारे में भी आपको बता देती हूँ. हमारी जो ड्राइव शो की टीम है यानी कि सैंडी और रुस्बे, इन्होंने अनफिल्टर्ड में बहुत सारे ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो बहुत कमाल की होती हैं, अलग अलग आर्टिस्ट को लेकर आते हैं. और कल तो इन्होंने रेडियो अवार्ड्स में हैट्रिक कर ली, जहाँ थर्ड टाइम कंसेक्यूटिवली इनका बेस्ट पॉडकास्ट इन यू नो इंडियन लैंग्वेज में देखो ये आया है. तो क्या कमाल. आई कैन से बिग कंग्रेचुलेशंस. अगर आप लोगों ने नहीं सुने ये पॉडकास्ट तो ड्राइव लिख के भेजिए, और जब आप ड्राइव लिख के भेजते हैं तो आपको इनके पॉडकास्ट की डिटेल्स भी मिल जाते हैं. सो बेस्ट एशियन पॉडकास्ट ऑफ 2026 के विजेता हैं नाना ददन सैंडी एंड रुस्बे अनफिल्टर्ड ड्राइव. और साथ में ड्राइव शो में आप इनको सुनिएगा आज जब ये बातें करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कल रात के.
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: तो एक बात जो मैंने आपसे कहा था ना, हंसने हंसाने का मौसम शुरू हो चुका है। और जब ये हंसने हंसाने के मौसम के बारे में बात करती हूँ, तो इंडियन इंक थिएटर कंपनी आपके लिए लेकर आ रहे हैं बलून डॉग। अब ये बलून डॉग जो है, ये देखा जाए तो एक खूबसूरत सी प्यारी रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी है, काबुलीवाला। बहुत लोगों ने इसे सुनी होगी। और इसका एक वर्जन जो है, इसे लिखा है जेकब राजन एंड जस्टिन लुई ने, और इसे डायरेक्ट जस्टिन लुई ने किया है। ये कह सकती हूँ कि जेकब राजन जो है, ये स्टेज पर आए हैं फॉर द वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ बलून डॉग। और उसके बाद मुझे पता है ये कहाँ कहाँ जाएंगे। ये अवार्ड विनिंग परफॉर्मर हैं, और ये किस तरह से इसको डिपिक्ट करने वाले हैं, जहाँ पे ये 21st सेंचुरी में आकर ये इतनी पुरानी कहानी एक नए मोड़ के साथ एक नए अंदाज से प्रेजेंट की जाएगी, जहाँ एक प्यार दिखाया गया, यानी दोस्ती दिखाई गई 5 साल के बच्चे में और एक लोनली माइग्रेंट वर्कर में। वो काबुली वाला था ना, याद है किस तरह से वो उनकी फैमिली की वो आंखें खोलती हैं, किस तरह से पूरी दुनिया के बारे में वो बताने की कोशिश करती हैं, उस प्यार को दिखाने की कोशिश करती हैं। सो ये थिएट्रिकल मैजिक जो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो बलून डॉग एक पावरफुल सेलिब्रेशन है, जहाँ पे करेज, कनेक्शन, और एक्चुअली में देखा जाए तो इट्स कल्चर, क्लास एंड सर्कमस्टांसिस टुगेदर। दिस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग एट क्यू थिएटर। 3 जून से स्टार्ट हुआ, 20 जून तक ये चलने वाला है। आप अगर इसके पास जीतना चाहते हैं तो BD लिख के भेजिए और आपका नाम हम ड्रॉ में ऐड करेंगे। आज ये ड्रॉ होने वाला है, सो इंश्योर यू वुड बाय देयर टिकट्स फ्रॉम iticket.co.nz।
1: आर यू रेडी? चैटबस्टर्स
2: थोड़ा सा हॉल बना दे।

0: Ashish Foods. Eat better, live better.
1: Eat better, live better. लेकिन एक बात बता देती हूँ, एक रियल एस्टेट एजेंट है स्मॉल टाउन रूरल न्यूजीलैंड में. उन्होंने क्या किया, टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ व्यूज उन्होंने इकट्ठे कर लिए इंटरनेशनल बायर्स से भी और लोकल लोगों से भी, जहाँ उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का सहारा लिया. और उसके बाद उन्होंने टिकटॉक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए इस तरह से कमाल की एक अपनी जो कहते हैं AI गिमिक्स के साथ उन्होंने फीचर किया खुद को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, दैट उनकी प्रॉपर्टीज़ बिकनी शुरू हो गई. एंड इन्होंने बहुत तरह के कमेंट्स भी मिलने शुरू हुए. बट शी वाज सो फैसिनेटेड दैट शी वाज ट्राइंग टू सॉर्ट आउट कि ये 40,000 व्यूज़, 100,000 व्यूज़ वो कैसे मैनेज करेंगी, इतने फॉलोअर्स. उनको लगा कि क्या हो रहा है, इनका बिजनेस ट्रांसलेट हो गया फ्रॉम स्ट्रेट अवे. पांच लोग थे शायद उनको पहले फॉलो करते, फिर 5,000 लोग फॉलो करने लग गए. इस तरह से उनको जेन्युइन बायर्स, जेन्युइन बिजनेस जो हैं वो भी मिलने शुरू हो गए, विच वर्क्स आउट वेरी वेल. अगर आप लोगों को भी लगता है कि इट वर्क्ड फॉर यू, वेरी गुड. नाउ इज इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आज है द ग्रैंड कीर्तन संध्या फीचर करने वाले, इसमें रोनल सिंह रोनू और जैनिश सेवक. दिस इज हैपनिंग आज शाम को एट द वैदिक सेंटर पापाटोटो, 7:30 बजे आपके लिए डोर्स खोल जाएंगे. $20 की टिकट्स है. आओ नाउ एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द सेकेंड लॉट ऑफ टिकट्स, क्योंकि पहला लॉट ऑलरेडी बिक चुका था, बट पब्लिक डिमांड पर ये टिकट्स और ऐड कर दी गई हैं. तो चाहिए फटाफट JS फ्रेश मार्ट शर्ली रोड पापाटोटो जाके टिकट्स खरीद लीजिए. इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहती हूँ अबाउट श्रीमद् भागवत कथा, और ये आज से शुरू होगी 11 जून तक. आज सुबह 9:30 से 1 बजे तक, दोपहर में जो है यानी कि न्यूजीलैंड के शाम 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक होने वाले हैं. तो डेफिनेटली कोशिश कीजिएगा, हर रोज़ यहाँ पर पहुँच सकते हैं महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्णा मंदिर में, और ये बिल्कुल फ्री का एक इवेंट है. इसके अलावा आपके लिए अगले हफ्ते जो होने वाला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ. एक्चुअली अगले हफ्ते तो नहीं होने वाला है, ये 7 जून को यानी कि संडे को होने वाला, अधिक मास की कथा और यज्ञ जो है ब्राह्मण समाज जो है ये लेकर आने वाले हैं मैनकाओ में एट द रामकृष्णा मंदिर. और सुबह 9:30 बजे से ये शुरू होगा, 12:30 बजे तक प्रसाद और महाप्रसाद का आयोजन भी किया जा रहा है. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट 108 अखंड हनुमान चालीसा के पाठ ये करने वाले हैं, और 13 जून के दिन. तो सुबह 7 बजे से शुरू होगी जहाँ स्थापना की जाएगी, और फिर बाकी बहुत सारी मंडलियाँ आके ये हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है. क्या है दिव्य इसका एक प्रस्तुति होगी, तो बहुत मज़ा आएगा इसे देखने के लिए. एंड आप भी पहुंच सकते हैं रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लॉ एवेन्यू मैनकाओ में. तो चलो यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन अब आते हैं बात करते हैं अबाउट रेस्क्यू मी रिसाइकल मी थोड़ी देर.
2: 80s के रेट्रो गाने

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Bunnings Barbecues will be firing up across the country for a National Sausage Sizzle fundraiser for Motor Neuron Disease Action Month on Saturday, June the 6th. All funds raised go to MND-NZ for research and support for people living with MND. So come join us to show your support at your local Bunnings.
2: Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just $289. Heat pump dryer just $599. All-in-one washing machine and dryer $799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
3: It's boarding time with Instant Kiwi. But where will you land? Hamilton or Hamilton Island? You never know. For your chance to win a mystery holiday for two, get a $5 cross-world ticket at your local Lotto NZ store and enter online. R18 T's and C's apply.
4: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile Aussie style. That doesn't mean saying, yeah, nah, hey, go on, flyman galah. It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mum without having to call your accountant first. Right now, get a 180GB yearly prepaid plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than $21. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
5: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
6: Mid-morning Maza. Rescue me, recycle me.
7: रेस्क्यू में रिसाइकल में एक बात बताऊं आपको क्या हो सकता है. कई बार हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमें लगता है प्लांट्स इन्हें प्लांट्स बना सकते हैं. होता क्या है कि कभी कभी हमारे हर्ब्स जो होते हैं, ये हमें लगता है कि अब हमारा इस्तेमाल हो गया, इनको फेंक देना चाहिए. ऐसा मत कीजिए. उसकी जो स्टेम्स होती हैं ना, हरा धनिया का होता है जैसे स्टेम वगैरह होती है, उसको अगर आप पानी के अंदर डुबो दीजिएगा ना, और फिर उसको बाद में एक छोटे से पॉट में आप ऐड कर देंगे, उसमें दोबारा से वो हरा धनिया, वो पुदीना, वो सब उगना शुरू हो जाता है. एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि मैंने घर पे इसी चीज़ को ट्राई किया है. इसी तरह से ग्रीन अनियन जो होते हैं, इनकी जो रूट्स होते हैं, आप इन्हें अगर थोड़े से पानी में अगर आप डाल के रख दीजिएगा, अब बाद में आप नोट करेंगे इसमें से ग्रीन जो शूट्स हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी. भाई इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, अगर हम प्लान करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए. आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इसे ट्राई करते होंगे. एक छोटा सा हादसा हुआ है, जो बहुत बड़ा हादसा मैं मान सकती हूँ. एक फार्मेसी ने बाय एरर एक चीज़ ऑफर करी. एक डोज थी ऑफ फॉस्फेट 13 टाइम्स हायर देन द प्रिस्क्राइब्ड वन. उससे क्या हुआ, अ 2 मंथ ओल्ड बेबी बेलामेयर, इनकी यू नो जो डेथ हो गई थी. एंड दिस हैड हैपन्ड एक्चुअली लास्ट ईयर. एंड उन्होंने उनको पानी में डाल के दिया, वो ओवरडोज से जो बच्चा था वो उसकी जान तो चली ही गई थी. लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया, लेकिन ये ओवरडोज एक्चुअली डिड नॉट वर्क आउट वेल. नाउ RNZ ने इसको रिलीज़ किया है कि बच्चों का जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको ब्लेम नहीं किया गया, बट दे वर वेरी वेरी पर्टिकुलर दैट इस तरह से फार्मेसीज जो होती हैं दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड नॉट केयरलेस.
8: It's Valentine's Day. Groove.

तो चलिए भाई इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार 4445। आई विल जस्ट प्ले योर रिक्वेस्ट इन अ बिट, लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ, बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ दैट आपको अपना ख्याल रखना है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में एक बात कही थी, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर बहाना। अभी कोई बहाना वहाना नहीं चलने वाला, एंड मेक श्योर अपना ख्याल ज़रूर रखना। और इसी के साथ साथ ये कहना चाहती हूँ अभी के लिए चलती हूँ, मंडे की सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। सो डू लुक आफ्टर योरसेल्फ्स। देखिए केतन आपके साथ ब्रेकफास्ट शो में थे और क्या इनका जुनून है कि ये वापस आ रहे हैं आपके लिए लंच बॉक्स में, तो इनका साथ ज़रूर दीजिएगा, इनको चीयरअप कीजिएगा। इट्स समटाइम्स यू नो वेरी डिफ़िकल्ट दैट आप सुबह सुबह यू नो आप रहते हैं, फिर आप उसके बाद दोबारा से आप यू नो वापस हाजिर हो जाते हैं। इट्स नॉट ईजी, एस्पेशली नॉट ईजी फॉर पीपल लाइक अस हु वर्क फॉर रेडियो 24/7। हम लोगों को कभी भी आवाज़ दी जा सकती है। लुक आफ्टर योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट वीकेंड। दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ, बाय।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.
2: Save karo Mitre 10 Mega Westgate or Henderson May with 25% off Pink Stuff Cleaning or Novu Wire Wardrobes or 50% off Selected Sistema. Plus spend $20, enter online and go in the draw to win 5 grand. Ends June 30th, T's and C's apply.
3: Stretch your budget further at Mitre 10. Clean up with a Bosch 15-litre wet and dry vacuum cleaner, now just $129. And score 20% off Cordtech work lights. T's and C's apply. Grab these great deals and more at Mitre 10.
4: Baad kisi waqt bhi aa sakti hai. Kya aap tayar hain? Baarish shuru hone ka intezaar na kare. Gutteron ko saaf rakhe. Khuli cheezon ko baandh le. Apne parivar ki suraksha ke liye emergency plan tayar rakhe. अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.govt.nz/floods।
5: हम टाइम चेक।
6: टाइम हो चुका है दिन के ठीक 12।
5: हम न्यूज़ ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
7: Good afternoon, Bridget here with the latest at midday. Concern is being raised over the implications of Air Chatham pulling services out of Kapiti Airport. It comes after the company cancelled a key route to Auckland. Local MP Tim Costley says it could stifle economic progress.
8: This is a region of real growth potential here on the Kapiti coast, and having flights in and out making